आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित

0: अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमेरिकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार, आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, आदर्श अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनेंगे आप श्री रामचरितमानस गान भाग 186। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनोषा जैन की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनेगा हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 से। चित्रलोक ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता महिपाल पर।

सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिएगा थैलेसीमिया की बीमारी, डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत, प्रस्तुतकर्ता अनिता पटेल। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से आपको कार्यक्रम सुनवाएंगे रंग तरंग। दिन में 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे से।

सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से। सखी सहेली ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 3 बजे से। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेलुलॉयड के सितारे। इसके अंतर्गत अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनवाएंगे तराने नए पुराने। और शाम में झरोखा सुनेगा 6:30 से।

शाम 6:35 से संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता, शाम 7 से आपको सुनवाएंगे जयमाला, शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस सुनिएगा, रात 8 से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा विश्व प्रेमी सम्मेलन, लेखन मदन मोहन खन्ना का, निर्देशन दीनानाथ का। चित्रलोक ये कार्यक्रम सुन सकेंगे रात 8:15 से, आपके लिए रात 9 से। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10 से, आलेख एवं सर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, रात 10:30 से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरितमानस गान भाग 186।

भरत अपनी माता कैकेयी के कठोर आचरण से क्षुब्ध होकर आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। पति समेत पूरे कुल का सर्वनाश कर डालने वाली माता की कोख से जन्म लेना उनके लिए घनघोर पातक सिद्ध हुआ है। पश्चाताप की ज्वाला शांत नहीं होती। मन में ये धारणा पुष्ट होती जा रही है कि उनसे बड़ा पापी इस जगत में कोई नहीं है। शत्रुघ्न भी माता की कुटिलता सुनकर जल रहे हैं, किंतु उनका वश नहीं चलता कि क्या करें, कि तभी कुबड़ी मंथरा भांति भांति के सुंदर वस्त्रों और आभूषण से लदी फदी उनके सामने आ गई। शत्रुघ्न का क्रोध अपनी सीमा पार कर गया, मानो आग को आहुति मिल गई हो। उन्होंने उसके कुबड़ पर जोर से एक लात मारी। चीखती चिल्लाती मंथरा जो धरती पर गिरी तो कुबड़ फूट गया। शत्रुघ्न ने झूठा पकड़ उसे घसीटना शुरू किया कि तभी भरत ने उन्हें शांत करते हुए मंथरा को उनकी पकड़ से छुड़ा दिया। पश्चाताप और ग्लानि की आग को शीतल करने के लिए तब दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे। शोक और संताप से कौशल्या का शरीर सूख गया है। लगता है जैसे सोने की कल्पलता को पाला मार गया हो। भरत और शत्रुघ्न को देख उन्हें हृदय से लगाने को वो दौड़ी, किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ी। भरत उनके चरण पकड़ विलाप करने लगे। कभी तो वो माता कौशल्या से दिवंगत पिता वनवासी राम लक्ष्मण तथा सीता के दर्शन करा देने की विनती करते हैं, तो कभी माता कैकेयी की करतूत पर सिर धुनते हैं।

0: चरिता में आज से हम आरंभ कर रहे हैं भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि हैं श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, आधुनिक जीवन के कोलाहल में मन अक्सर ही विचलित हो जाता है। मन के इस विचलित प्रकाश को जब आध्यात्म के शीशे से गुजारा जाता है तब भक्ति के विविध रंग उपस्थित हो जाते हैं। संगीत सरिता का प्रवाह आज से कुछ दिनों तक भक्ति के सागर में समाहित होगा। इन कड़ियों में भक्ति के अनेक भावों, भक्ति के अनेक रंगों से हम परिचित होंगे। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है उन्हें, जिनके गाए भजन सुनकर हमारी सुबह होती है, जिनकी गाई भक्ति रचनाएं सुनकर हम सबका बचपन समृद्ध हुआ, जिनके भजन के सुरों से हम अलौकिक संसार में पहुंच जाते हैं। तो हमारे भीतर भक्ति समर्पण और जीवन दर्शन की लौ जलाने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री अनूप जलोटा जी। अनूप जी श्याम चौरासी घराने के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा के सुपुत्र हैं। पिछले कई दशकों से अपनी गायकी के माध्यम से श्रोताओं पर रस वर्षा कर रहे हैं। भक्ति संगीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद अनूप जलोटा जी का। स्वागत है अनूप जी आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: अब हम तबला वादक आशीष झा जी का स्वागत कर रहे हैं।
3: नमस्कार।
1: हारमोनियम वादक अजय जोगलकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद ममता जी।
1: श्रोताओं, जैसा कि श्रृंखला का नाम है ऐसी लागी लगन, आज हम इसी भजन से शुरुआत कर रहे हैं। अनूप जी, ऐसी लागी लगन जो भजन है हम सबके मन में है और जबान पे है, जब भी भजन का जिक्र होता है तो शायद हम ये भजन सबसे पहले गुनगुनाते हैं।
2: ऐसी लागी लगन की प्रसिद्धि कुछ इस प्रकार की है कि मैं कभी कहीं एयरपोर्ट पे घूम रहा हूँ या कहीं किसी शॉपिंग सेंटर में हूँ तो कोई व्यक्ति मेरे पास से गुजरता है, मुझे देखता है और ऐसी लागी लगन गुनगुनाता हुआ निकल जाता है
1: जी।
2: वो ये बताना चाहता है कि मैंने आपको पहचान लिया
1: जी।
2: तो मेरे नाम के साथ और मेरी उपस्थिति के साथ

ऐसी लागी लगन कुछ इस तरह जुड़ गया। ये गाना कैसे बना इसकी बड़ी सुंदर कहानी है कि 1977 में मैं न्यू जर्सी अमेरिका में एक अपने मित्र के घर लंच खा रहा था। उनकी पत्नी भी थोड़ा गाना गाती थी, तो उन्होंने जब मैं खा रहा था खाना तो एक छोटी सी बुक मेरे हाथ में दी कि देखिए इसमें कुछ भजन लिखे हैं, और मैं वो लेफ्ट हैंड से वो एक एक पेज पढ़ता जा रहा था, राइट हैंड से खाना खा रहा था, और एक पेज पे मेरी नजर टिक गई और उस पे लिखा हुआ था ऐसी लागी लगन, इंदिरा देवी का लिखा हुआ है भजन है। और मैं इसको पढ़ता रहा 3-4 बार खाना खाते खाते, और बाद में जब खाना खत्म हो गया तो मैंने उनसे कहा कि जरा हारमोनियम लाइए, और मैंने उनको वो गाना गा के सुना दिया। मतलब खाना खाते खाते उसकी ट्यून बन चुकी थी। तो वो एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण रहा होगा कि उसी क्षण में उस गाने की रचना हुई, जिस रचना से मुझे सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। और मैं चाहूंगा कि वो भजन मैं आपको यहीं गा के सुना दूं। हमारे साथ आशीष जी अजय जी बैठे हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के महान कलाकार हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज विविध भारती में आप दोनों हमारे साथ संगत कर रहे हैं।

0: वाह क्या बात है, हम तो भक्ति भाव में बिल्कुल खो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए होंगे हमारे श्रोता भी। अब अनूप जी, हम चाहते हैं कि मीराबाई की एक भक्ति रचना का जिक्र हो तो कैसा रहेगा?
1: जरूर, मीराबाई ने तो ऐसे सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं और उसमें प्रेम तो है लेकिन उसके साथ समर्पण भावना इतनी बड़ी है जो आज तक लोग सीखते हैं।

लोगों ने मीराबाई से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है। तो अगर गोविंद मोल लिया है, खरीदा है, तो उसका कोई मूल्य होगा, हमको भी बता दो, हम भी खरीद लाते हैं। तो मीराबाई बता रही हैं भक्तों को कि आप भी गोविंद को खरीद सकते हैं और उसका मूल्य क्या है ये बता रही हैं।

0: क्या बात है अनूप जी। वैसे तो सच कहा जाए तो अनूप जलोटा को जरूरत ही नहीं है कि अपने तालीम के बारे में बताएं या घराने के बारे में बताएं, लेकिन संगीत की एक परंपरा रही है अपने घराने के बारे में चर्चा करना। तो हम चाहते हैं, शाम 84 आपका घराना रहा है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें।
1: तालीम की तो बात यह है कि अभी सीख रहा हूँ और सीखता ही रहूंगा। पंजाब का प्रसिद्ध घराना है शाम 84 घराना, जहाँ के बहुत प्रसिद्ध गायक हुए सलामत अली नजाकत अली खान साहब, जो पाकिस्तान चले गए वहां रहे, लेकिन हिंदुस्तान में मास्टर रतन यहीं पे रहे हदियाबाद पंजाब में। उन्होंने लोगों को सिखाया, उसमें मेरे पिताजी ने उनसे सीखा और मैंने अपने पिताजी से सीखा। तो शाम 84 घराने की जो विशेषता है वो इसकी स्पष्टता है, इसकी क्लियरिटी है, कि शब्दों की बहुत क्लियरिटी होती है। जो भी भजन या ख्याल हम गाते हैं उसमें एक एक शब्द इतना साफ होता है कि आप उसको भी समझ सकते हैं कि क्या बात कही जा रही है
0: जी।
1: राग तो समझ में आई जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ में आ जाएगा कि कहा क्या जा रहा है। यहाँ तक कि सरगम भी इतनी स्पष्ट होती है, इतनी साफ होती है कि उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो शाम 84 घराने की ये जो खूबियां हैं ये हमने अपने गाने में उतारी और अपने लाइट म्यूजिक में भी उतारी, जो भजन गजल में गाता हूँ उसमें भी उतारी, जिससे कि इसकी सुंदरता बढ़ जाती है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस आंख बंद करके बिना कुछ पूछे सुनते जाएं आपके भजन और आपकी बातों को। लेकिन वक्त का जो दरिया है बहने लगता है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, और अब वक्त हो चला है इजाजत लेने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी आपका धन्यवाद और अजय जी आपका धन्यवाद। हम कल मिलते हैं अगली कड़ी के साथ।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं श्री अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में स्वर्ण सुंदरी फिल्म के गाने के साथ। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है आदि नारायण राव ने।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।

0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा और एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूलिए बिसे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में दो उस्ताद फिल्म से कमर जलालावदी हैं। गीतकार और संगीतकार हैं ओपी नैयर।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुबारक बेगम, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में बारादरी फिल्म से खुमार बाराबंकवी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं शौकत दहलवी नाशाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। युगल गीतों के इस कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। शागिर्द फिल्म के गाने के साथ गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में नाइट इन लंदन फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।

0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फर्ज फिल्म का गाना। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में हमराज फिल्म से। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

इस गाने के साथ ही आज का हम हैं राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: लो में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय

0: मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
8: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल

0: हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी टी20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
3: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई टी20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। हालांकि आईसीसी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की

0: छह दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत आइए करते हैं राहत फतेह अली खान की गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है सुल्तान। सुल्तान फिल्म के इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है विशाल शेखर ने।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और लीजिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं रस्तम फिल्म से। आवाजें आतिफ असलम और

फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और लीजिए अगला गीत आप तक पहुंचाते हैं बागी फिल्म से। आवाजें अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की। इस गीत के बोल लिखे हैं संजीव चतुर्वेदी ने, धुन बनाई है अमाल मलिक ने।

फिल्म संगीत का अगला और आखिरी गीत लीजिए सुनिए तमाशा फिल्म से। आवाज मोहित चौहान की है, धुन बनाई है AR रहमान ने और बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

तमाशा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार।

0: जय हो, शुभ हो माय डियर रेडियो लवर्स। सुन रहे हैं आप शुभ वाणी, लाभ वाणी, मधुर वाणी, आप सबकी फेवरेट वाणी आकाशवाणी। तो चलिए कुछ अच्छा विचारते हैं। कहते हैं कि धैर्य अनुशासनस्य महत्तमम रूपम अस्ति, यानी कि धैर्य अनुशासन का सबसे बड़ा रूप है। बोले तो पेशेंस इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन।
1: दोस्तों, ज्येष्ठ माह की तपती धूप है, सूती मलमल के कपड़े में बंधा हर शख्स का रूप है। सूरज की किरणों से तपती है धरती, पर उन्हीं सूरज की किरणों से निखरा धोरों का रूप है। जी हाँ दोस्तों, जब हर बात का हर जगह अपना एक अलग प्रभाव होता है, जहाँ सूर्य देवता का प्रचंड रूप हम इंसानों को छाते या सूती कपड़े की ओट लेने पर मजबूर कर देता है, वहीं वो प्रचंड रूप जब हमारे रेगिस्तान की बालू मिट्टी का सानिध्य पाता है तो वो मिट्टी जो है सोने की तरह चमक उठती है। लेकिन हमारे चेहरे की चमक तो उस समय होती है जब घड़ी बजाती है 8:30, यानी आपसे मिलने का नियत समय। तो बस घड़ी 8:30 बजा चुकी है और हम अपनी पूरी टीम के साथ हाजिर हैं नित नई जानकारियों और सुरीले नगमों से सजा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार लेकर। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए करवाते हैं अपनी टीम से आपका परिचय।

0: श्रोताओं, ट्रांसमीटर पर है विक्रम सिंह भाटी और नरेंद्र सिंह राठौड़। टेक्निकली हमारा साथ कंट्रोल रूम से दे रहे हैं सुनील जयपाल और प्रकाश पवार। कार्यक्रम की प्रस्तुति है संजय व्यास की। और इसी के साथ संयोजन है राजेश लामरोड़ का। और इस पूरी टीम के साथ प्राइमरी चैनल पर कंसोल पर एओडी है निशिका बोराना, यानी कि आज के प्रोग्राम को म्यूजिकल बनाएंगे, म्यूजिकल ट्रैक बजाकर निशिका। और वहीं एफएम कंसोल पर है एओडी कविता सांखला। और इसी के साथ आप सबका साथ दे रहे हैं आप ही के जैसे दो रेडियो लवर्स न्यू नूतन सोनी, और साथ में है
1: मैं लीना माथुर। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार। और इसी के साथ निशिका इशारा कर रही है कि वो हमें एक म्यूजिकल ट्रैक सुनाएंगी।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
4: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

दोस्तों, आज है 12 मई का दिन। 12 मई यानी कि आपणायत और रिश्तों के प्रतीक हमारी सूर्य नगरी, हमारा जोधपुर, जहां प्यार और जहां का खान पान विश्व प्रसिद्ध है। आज हमारी राव जोधा की नगरी जोधपुर का स्थापना दिवस है। जी हां, राव जोधा जी ने 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना की थी। आज हम आपको गाने तो नए नवेले सुनवाएंगे ही, पर उनमें थोड़ा सा टच होगा हमारे प्यार का, हमारे अपनायत का, और बात करेंगे हम आज सिर्फ हमारे जोधपुर के बारे में। तो चलिए, जोधपुर के स्थापना दिवस के मौके पर आपकी नजर करते हैं ये नगमा।

जी हाँ श्रोताओं, केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, यानी ये हमारे शहर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि शहर और यहाँ बसने वाले लोग सिर्फ अपने रिश्तों को ही नहीं बल्कि आने वाले पर्यटकों का भी बाहें फैलाकर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करते हैं कि केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश। दोस्तों, हमारे इस समृद्ध शहर जोधपुर का इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। भारत के राजसी राज्य में राजस्थान में थार रेगिस्तान के हृदय में बसा जोधपुर शहर, जो कि ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, यह शहर इतिहास, संस्कृति और स्थापत्य कला की भव्यता से परिपूर्ण है। श्रोताओं,

जोधपुर के राष्ट्रीय किले, जीवंत बाजार और नीले पुते घर उसको एक अलग ही पहचान दिलाते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: घूमर हमारा पारंपरिक नृत्य। राजपूती पोशाकों में सज धज कर महिलाएं जब घूमर

करती हैं तो वो नज़ारा देखते ही बनता है। और जोधपुर के पहनावे की अगर हम बात करें तो शालीनता जोधपुर के श्रृंगार का सबसे बड़ा जेवर है। यहाँ श्रृंगार सिर्फ महिलाएं नहीं करती, पुरुष भी श्रृंगार करते हैं। धोती, अंगरखा, पगड़ी और मूछों के बल और पैरों की मोजड़ियाँ पुरुष को एक जेंटल पर्सन बनाती हैं। महिलाओं की राजपूती पोशाक, चूड़ा, बोर, उनके पारंपरिक गहने और लाज का जेवर धारण कर महिलाएं किसी मिस वर्ल्ड के से कम नहीं लगती। हमारा सिर्फ जीवन ही नहीं, हमारे कपड़े भी रंगीन होते हैं। जी हाँ, यहाँ चटक रंगों से के कपड़ों से सजता है हमारा मारवाड़। यहाँ का हाथी दांत का सामान, कांच की चूड़ियाँ, बंधेज, रंगे हुए कपड़े, लाख का सामान, नमदे, चमड़े, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जोधपुर की एक अलग पहचान बनाते हैं।

0: श्रोताओं, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसका सबसे बड़ा आकर्षण है मेहरानगढ़ किला। जी हाँ, गढ़ मेहरान। जोधपुर का विशाल किला, जो कि एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित है, जिसके आठ द्वार है श्रोताओं, जो किले के बाहर की तरफ खुलते हैं, और नया शहर किले के बाहर स्थित है। और यहाँ के जो पर्यटन स्थल है, जसवंत थड़ा, उम्मीद भवन, वाह बहुत ही सुंदर, मंडोर गार्डन, ये हमारे यहाँ की मुख्य ऐतिहासिक धरोहर है श्रोताओं और पर्यटन स्थल है। जोधपुर प्रसिद्ध है अपने स्थापत्य कला के लिए, और स्पेशली यहाँ का प्रसिद्ध छित्तर का पत्थर घरों की इमारतों को एक अलग ही समृद्ध रूप देता है। ये
1: और अब हमारे जोधपुर की सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, हमारे यहाँ का खान पान। सूर्य नगरी, ब्लू सिटी, समृद्ध शहर, और इन सब के अलावा एक और पहचान हमारे यहाँ की है, और वो है खावन खंडों का शहर। भाई, हमारा खान पान इतना रिच और इतना टेस्टी है, इतना स्वाद से भरपूर है कि कोई भी इंसान खाने पीने का शौकीन बन ही जाता है। मावे की कचौरी, मिर्ची बड़ा, माखन या लस्सी, मावे के लड्डू, घेवर, ये नूतन के मुंह में यहाँ पे ही पानी आ रहा है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अभी तो मैं और भी बहुत बातें बोलने वाली हूँ नूतन। कैर सांगरी, गट्टे की सब्जी, और न जाने कितने व्यंजन, उनको बनाने का तरीका, और उनको बनाने के बाद उनमें अपने प्यार का तड़का लगाकर जब घर की महिलाएं परोसती हैं, तो वो उस खाने का स्वाद जो है कई गुना बढ़ा देता है। तो है ना हमारा जोधपुर सबसे अच्छा, सबसे अलग, समृद्ध और अपनायत का शहर। हमारे शहर के स्थापना दिवस की आज हम यहाँ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। देखिए आज अपने सजे धजे शहर को, और गर्व कीजिए कि हम जोधपुर में रहते हैं।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में कल एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि संघर्ष की इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार 80 परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: वहीं रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को इस महीने जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री कल गुवाहाटी में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने उद्यमशीलता की बदौलत देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है। राजस्थान के विकास में उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने वाले राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका में दायर दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। चार शहरों में दिन का पारा 45, वहीं चार शहरों में रात का पारा 30 डिग्री के पार मापा गया। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

0: हमारे संवाददाता ने बताया कि चलचलाती धूप और झुलसाने वाली लू के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
1: जिले में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चलचलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। पंखे और कूलर भी असर साबित हो रही हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रही हैं। इस बीच लू और ताप घात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: राजधानी जयपुर में भी गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं और दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अगले 4-5 दिन हीट वेव और गर्म रातें दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं आंधी चलने और गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। कल हनुमानगढ़ में हल्की बरसात हुई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ कल रात कोटा पहुंची। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेकर मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जे किरण अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती राठौड़ ने कहा कि शुरुआती जांच में प्रोटोकॉल के उल्लंघन की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि जयपुर से आई 5 विशेषज्ञों की टीम मामले की गहन जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
2: देखिए, अभी तो केवल अंदर जो आईसीयू की जो स्थिति है उसको देखा है। जो पेशेंट्स 4 एडमिटेड हैं, उसमें से एक तो काफी ठीक है, 3 अभी भी थोड़े से अंडर ऑब्जर्वेशन है। उनको अभी टाइम लगेगा ठीक होने में, पर जैसे टेक्निकली डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उनके पैरामीटर्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे पूरे टाइम, और जो सारा मॉनिटर कर रहे हैं और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि होपफुली बहुत जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाएंगे।
0: डीग जिले के परमदरा गांव में कल 3 सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने 33 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के 21 गांवों की कृषि भूमि को सीधा फायदा मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। ये दिन नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मरीजों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाने में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस साल की थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती है रखी गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ये सेवा और संवेदना का पर्याय है। इनकी सेवा भाव से असंख्य लोगों के जीवन में आशा का संचार होता है। नर्सिंग दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। कोटपुतली बहरोड के शाहजहांपुर में नर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश में चल रहे ग्राम रथ अभियान के तहत जिला प्रभारी मंत्री रात्रि चौपाल में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कल कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर पहुंचे। उन्होंने रामपुरा खुर्द में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उधर उदयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई की। वहीं चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने जैसलमेर जिले में 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की है। श्री खेवसर ने कल जिले की गोमट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान ये ऐलान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नर्सिंग कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें सेवा और संवेदना का पर्याय बताया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

0: समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, आज है 12 मई का दिन। 12 मई साल का 132वां दिन है और इस 132वें दिन का इतिहास भी हर दिन के इतिहास की तरह कुछ खास है। तो चलिए बात करते हैं आज के दिन के इतिहास की।
1: बिल्कुल श्रोताओं, 12 मई 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे, और बात करें 1820 की तो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। और इन्हीं को याद करते हुए हम आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं।
0: बारह मई 1784 का दिन जब पेरिस समझौता प्रभावी हुआ, और वहीं 12 मई 1847 का दिन जब विलियम क्लेटन ने ऑडोमीटर का आविष्कार किया।
1: चलते हैं 12 मई 1937 की तरफ। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज सिक्स्थ का राज्याभिषेक हुआ था, और 1999 में रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपनिश कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, और अमेरिकी वित्त मंत्री रॉबर्ट रूबिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दोस्तों,
0: बारह मई 1965 का दिन था जब इजरायल और पश्चिम जर्मनी ने राजनयिक संबंध शुरू करने के लिए पत्रों का आदान प्रदान किया। और वहीं 12 मई 1993 की बात करें तो हिंदी के जाने माने कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन हुआ।
1: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं और बात करते हैं 2002 की। तो मिस्र, सीरिया और सऊदी अरब ने पश्चिम एशिया मामले में शांति समझौते की इच्छा जताई, और 2008 में चीन में आए भीषण भूकंप से हजारों लोग मारे गए। और बात करें 2010 की तो बिहार के चर्चित बथानी टोला नरसंहार मामले में भोजपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने 3 दोषियों को फांसी और 20 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

0: मित्रों का क्या कभी आपने नोट किया है कि हम प्लांटिंग करते हैं लेकिन कभी-कभी क्या होता है हम उनको प्रॉपर पानी नहीं दे पाते हैं उनका उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस ये जो हर साल आज ही के दिन 12 मई को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है पौधों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना यानी कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम प्लांटिंग करें तो उन पौधों का ख्याल भी रखें उन्हें लगा के भूल ही ना जाएं और ये दिवस जो है भूखमरी को खत्म करने यानी कि आपको पता ही है कि पौधे जो है हमारे कहीं ना कहीं भोजन भी होते हैं उसको गरीबी कम करने जैव विविधता की रक्षा करने और इसी के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत जरूरी है
1: तो सही इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमेशा एक थीम के साथ मनाए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस की 2026 की जो थीम है वो है खाद्य सुरक्षा के लिए पादप जैव सुरक्षा ये थीम इस बात पर जोर देती है कि फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाकर वैश्विक खाद्य आपूर्ति परिस्थिति की तंत्र और कृषि आजीविका को सुरक्षित रखा जाए
0: और ये दिवस जो है 2022 में पहली बार मनाया गया था ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्वस्थ पौधे न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव जीवन और खाद्य सुरक्षा के लिए भी कितने महत्वपूर्ण हैं

دوستو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کی خاص بات کے بارے میں. تو آج کی خاص بات یہ ہے کہ آکاش وانی اپنے گورومئی 90 ورش پورن ہونے کے اپلکش میں اپنے الگ الگ کیندروں پر کئی کارکرم آیوجت کر رہا ہے. کہیں میراتھون ہوا ہے, کہیں واکیتھون, تو کہیں کسی کیندر پر سنگیت سندھیا کا آیوجن بھی کیا جا رہا ہے. جی ہاں, شبھ وانی, لابھ وانی, آکاش وانی. आकाशवाणी का ये 90 वर्षों का इतिहास बहुत ही गरिमामयी, विश्वसनीय और प्रामाणिक रहा है. 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर आज एक वॉकेथॉन का आयोजन सवेरे किया गया. इस कार्यक्रम के तहत आकाशवाणी से मटकी चौराहा और मटकी चौराहे से पुनः आकाशवाणी केंद्र तक पदचालन यानी कि वॉकेथॉन का सफल आयोजन किया गया. इस मौके पर आकाशवाणी जोधपुर के अभियांत्रिकी विभाग के उप महानिदेशक श्री राजेंद्र नाहर, कार्यक्रम प्रमुख रामनिवास चोयल, संजय व्यास, मनीष सोलंकी और राजेश लामरोड सहित आकाशवाणी के कई पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे. इसके साथ ही जोधपुर के अनेक लोगों ने, खासकर आकाशवाणी के नियमित श्रोताओं ने और युवाओं ने उत्साह के साथ इस वॉकेथॉन में भाग लिया. तो सबसे पहले 90 वर्ष पूर्ण करने पर आकाशवाणी को बधाई. और ये थी हमारी आज की खास बात. आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ.

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रा सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
3: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
6: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: दोस्तों, अभी तक हमने गर्मी पर बहुत बातें की अपने काम की बात सेगमेंट में। गर्मी का मौसम ही ऐसा है श्रोताओं कि उसके आने से पहले ही उसके प्रकोप से घबराहट होने लगती है।
1: लेकिन नूतन, यहाँ ये गर्मी का जो मौसम आता है ना, ये एक और सौगात अपने साथ लाता है। और वो सौगात बेसिकली प्यारी तो बहुत होती है, लेकिन एक बात बता दूं, घबराहट उसमें भी बहुत ज्यादा होती है। और वो सौगात है बच्चों की गर्मी की छुट्टियां, और वो अब शुरू हो गई है। और बच्चे पूरे दिन घर में ही रहने वाले हैं, घर में ही धमाल और उधम करने वाले हैं। ये छुट्टियां बहुत लंबी हैं, और छुट्टियां हैं तो बच्चों को बिजी रखना, बच्चों को ऐसे काम देना जिसमें उनकी क्रिएटिविटी उनकी बढ़े, बहुत जरूरी है। वरना तुम सोचो, एक बार इमेजिन करो ये चीज कि जो बच्चे 24 घंटे घर में रहेंगे, वो बच्चे एक समय पर अपने मम्मी डैडी के सर पे बैठे हुए नजर आते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत जरूरी है उनको एंटरटेन करना। मतलब हमको जो है, हम माओ का, हम पेरेंट्स का काम है 1.5 महीने तक अपने बच्चों को एंटरटेन करना, घर में रख के उनको उनको क्रिएटिव बनाना। और उसके साथ साथ उनको ऐसी जगहों पर, सिर्फ क्रिएटिविटी हम घर में नहीं कर सकते ना, हमें बाहर जाके इन छुट्टियों में बच्चों को सिखाना भी है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को घुमाने भी कहीं लेकर जाएं,
0: और इसके लिए वो सुपर एक्साइटेड भी होते
1: हैं।
0: हाँ,
1: छुट्टियों में, छुट्टियां होती ही सबसे पहले यही बात होती है, हम कहाँ जाएंगे,
0: बिल्कुल,
1: है ना? तो ये जो चीज होती है, ये बच्चों को एक बच्चों का थॉट प्रोसेस जो होता है, उनकी थिंकिंग को वर्सेटाइल करने के लिए भी जरूरी है कि हम उन्हें ऐसी जगहों पर ले जाएं और हमारे देश के बारे में, हमारे सभ्यता संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में उनको बताएं, है ना? तो आज के काम की बात सेगमेंट में हम यही बात करेंगे कि जब हम बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: है ना?
0: तो सबसे पहले तो जगह का चुनाव, हम सोचते हैं कि कौन सी जगह ले जाया जाए, तो उसमें बात ध्यान में रखनी होती है कि मौसम की अनुकूलता जरूर देखें।
1: हाँ बिल्कुल, मौसम ऐसा होना चाहिए वहां, ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो। और इसके साथ साथ जब हम मौसम को देखते हुए उस जगह का चुनाव करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहला काम होता है पैकिंग करना। तो अपने कपड़े भी हम बच्चों के उसी तरीके से रखें कि अगर हम कोई ठंडी जगह चूज करते हैं तो थोड़ा सा उनके वुलन्स भी रखें, और अगर हम कोई ऐसी जगह चूज करते हैं जो कि जहां गर्मी रहती हो, मतलब सर्दी का ना हो, तो उस हिसाब से थोड़े हल्के कपड़े हम पैक करें बच्चों के।
0: बिल्कुल। और लगेज को जो हम बहुत ज्यादा हैवी भी ना रखें, ताकि हम अच्छे से ट्रेवल कर पाए इजीली।
1: हाँ, इसमें एक ये भी पॉइंट होता है ना कि अगर हम हल्का हल्का लगेज बनाएंगे तो हम बच्चों को जिम्मेदारी देंगे कि ये छोटा सा बैग है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
0: और आजकल तो बड़े क्यूट क्यूट बैग्स भी आते हैं बच्चों
1: बहुत
0: के
1: सुंदर
0: लिए।
1: बच्चों के बहुत सुंदर बैग्स आते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अपनी इस पैकिंग में हमको एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स भी डालना होगा। उसमें हमें बच्चों की बेसिक दवाइयां, कुछ बैंडेड्स, ये सब चीजें कुछ ऐसी भी डालनी पड़ेंगी कि ड्यूरिंग ट्रैवल अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें वहां डॉक्टर अवेलेबल हो नहीं हो तो हम घर से चलते समय ही अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपने उस फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ दवाइयां डालें।

0: इसके साथ एक और चीज जो ऐसा लगता है कि आजकल हम सबसे चिपकी हुई ही रहती है और वो होता है हमारा मोबाइल फोन। तो उसके लिए चार्जर जरूर साथ में रखें दोस्तों, और हो सके तो पावर बैंक भी रखें।
1: ये तो बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि ये चीज हमसे चिपकी हुई है, तो ये फोन और पावर बैंक पूरा चार्ज रखें। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो न आप न आपके बच्चे फोन ना देखें। बच्चों को रास्ते की चीजों के बारे में बताएं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है बच्चों को ये बताना कि दुनिया किस तरीके की है।
0: और सबसे जरूरी बात कि हम आजकल मोबाइल में कैप्चर करने में लगे रहते हैं। वो जो लाइव हमें दिख रहा होता है, शायद हम उस दृश्य का आनंद लेना छूट जाता है।
1: तो ये जरूरी है कि बच्चों को दिखाएं कि मतलब, मुझे अपने बचपन का समय याद आता है जब ट्रेन चलती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था देखो पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो ये एक बच्चों की जो जिजीविषा है, ये इसको समझें और बच्चों को बताएं कि प्रकृति किस तरीके से हमारा साथ देती है ना। और एक और बात ये है कि जब हम चाहे एरोप्लेन से ट्रेवल करें, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे अपनी खुद की गाड़ी से, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि बच्चों को कहीं पर भी अकेला ना छोड़ें। सफर शुरू करने से पहले बच्चों को अच्छे तरीके से अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और एड्रेस अच्छे तरीके से बच्चों को याद करवाएं, और हो सके तो एक कागज में लिखकर उनकी ड्रेस में डाल दें, है ना, ताकि बच्चे कहीं पर भी किसी तरीके की कोई मिस हैपनिंग ना हो बच्चों के साथ।
0: हाँ, और इसी के साथ जो बच्चों का फेवरेट होता है जंक फूड, उसके बचाए जो है उनको बेसिक और हल्का खाना खिलाएं सफर के दौरान, ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़े और उनका सफर भी जो है खराब ना हो। ये हमारी मतलब एक तरह से कह सकते हैं बड़ों की जिम्मेदारी
1: है
0: कि उनको कैसा खाना खिलाना है, कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है।
1: उसके और लिए जरूरी है कि हम घर से छोटे छोटे स्नैक्स जो है बना करके बच्चों के लिए पैक कर लें।
0: हाँ, और पानी भी जो है उनको पिलाते रहे हैं।
1: बिल्कुल। अगर हम अपनी कार से सफर कर रहे हैं तो बच्चों को ट्रैफिक रूल्स बताएं, उन्हें ये बताएं कि सीट बेल्ट पहनना कितना जरूरी है और बिना सीट बेल्ट पहने क्या मिस हैपनिंग हो सकती है, इस बात को भी बच्चों को बताएं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है गाड़ी चलाते समय बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताने का।
0: और सफर के दौरान जो हमारा घर होता है यानी कि होटल्स और नई जगह पर बच्चों को खास तौर पे बालकनी हो गई, उसकी रेलिंग हो गई, उसकी फिसलन से उनको बचाएं, और हो सके तो लिफ्ट से थोड़ा सा दूर रखें उनको।
1: ये लिफ्ट से सबसे ज्यादा ध्यान रखना बच्चों के लिए जरूरी है। यहाँ पर यह भी एक बात है कि जहाँ हम गए हैं वहाँ बहुत से लोग हमें मिलेंगे, दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बच्चों को ये बात समझा के रखें कि किसी भी अजनबी से दोस्ती ना करें, उनसे दूर रहें, उनके साथ कहीं पर भी जाने की जिद ना करें।
0: बिल्कुल। और जिस जगह आप गए हैं वहाँ का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व जरूर बच्चों को बताएं।
1: और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम बच्चों को दें वो ये कि बच्चे जो है जहाँ गए हैं अपनी जर्नी को डे वन से लगा करके जब तक वो लौट कर आए हैं, उस पूरे जर्नी को एक अपनी स्क्रैप बुक के अंदर बहुत सुंदर तरीके से पिक्चर्स लगा कर कि वो कहाँ गए हैं उसको एक डायरी के अंदर वो लिखें, ताकि उन्हें ये बाद में जब उन्हें पता चले कि हम उन्हें वहां लेकर गए थे तो वो स्क्रैप बुक उन्हें याद दिलाए कि वो कहाँ गए थे और उनकी जर्नी कैसी रही। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को, ये सिर्फ एंटरटेनिंग टूर नहीं होते हैं, ये एजुकेशनल टूर होते हैं बच्चों के लिए।
0: इससे बच्चे लिखना भी सीखेंगे और यादों को संजोना भी सीखेंगे।
1: यादों को संजोना सीखेंगे, उन्हें हम बताएंगे कि जहां जहां आप गए हो उसके बारे में 4 से 6 लाइन आप लिखो, उसकी फोटो लगाओ और एक अपना एल्बम तैयार करो, है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो है हमारी आज की काम की बात, अगर बच्चे स्पेशली सुन रहे हैं तो आज से माओं के लिए ये उनके कान खाना बच्चे शुरू कर देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो माओं की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले उन्हें ट्रैवलिंग के लिए तैयार करें, उन्हें समझाएं कि ये टूर सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है, एजुकेशनल है, उन्हें स्कूल में जाकर के भी बताना होगा कि वो कहाँ गए, इस बात का ख्याल रखें।

0: श्रोताओं बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, आओ जाने खेल। श्रोताओं आज हम बात करेंगे ऐसे खेल की जो तेजी, टीम वर्क और उत्साह से भरपूर है। जी हाँ, शूट बॉल। शूट बॉल एक ऐसा खेल है जिसमें खिलाड़ी गेंद को नेट के ऊपर से दूसरी टीम के एरिया में फेंकते हैं। ये खेल देखने में जितना सरल लगता है, खेलने में उतना ही रोमांचक भी होता है। शूट बॉल खास तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इसमें शारीरिक फुर्ती के साथ साथ बच्चों को सामूहिक भावना भी उनमें विकसित की जाती है।
1: शूटिंग बॉल की अगर बात करें तो ये भारत का एक लोकप्रिय पारंपरिक वॉलीबॉल शैली का ही खेल है जिसे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। इस खेल में सात सात खिलाड़ियों की दो टीमें आमतौर पर 30x60 फीट के कोर्ट पर एक ऊंचे नेट के ऊपर से गेंद को तेजी से स्मैश यानी कि शूट करके पॉइंट्स बनाती है। वैसे तो ये वॉलीबॉल का ही एक रूपांतरण है जिसमें गेंद को नेट के ऊपर से जोर से शूट करना होता है, इसीलिए इसको शूटिंग बॉल कहते हैं। सात खिलाड़ियों की टीम में तीन खिलाड़ी पीछे की तरफ, तीन बीच में और एक खिलाड़ी आगे नेट के सामने होता है जिसे नेटमैन कहते हैं। नेट के सामने

0: खड़ा खिलाड़ी यानी कि नेटमैन अगर गेंद को पकड़ने में चूक जाता है तो डिफेंडर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें गेंद को एक ही बार में नेट के पार भेजना होता है। वॉलीबॉल की तरह इस बार इसमें तीन चांस नहीं मिलते। इस मैच में आमतौर पर 15 से 21 अंकों के सेट होते हैं।
1: बिल्कुल, और खेल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है गेंद को इस तरह से दूसरी टीम के क्षेत्र में फेंकना होता है कि सामने वाली टीम उसे पकड़ ना सके। हर सफल अंक टीम के उत्साह को और बढ़ा देता है। दोस्तों, ये खेल केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। शूट बॉल खेलने से शरीर चुस्त होता है, हाथों और पैरों का संतुलन बेहतर होता है और इसके साथ साथ मानसिक एकाग्रता तो बढ़ती ही है। इसके साथ ही ये खेल हमें टीम वर्क, अनुशासन और हार जीत को समान भाव से स्वीकार करने की सीख भी देता है।
0: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ये खेल बहुत लोकप्रिय है। शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका राष्ट्रीय शासी निकाय है जिसको 1985 में मान्यता मिली थी और अब ये खेल फिट इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी मान्यता प्राप्त है।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आज के टाइम में जब बच्चे मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में बहुत ज़्यादा समय बिताने लगे हैं ऐसे में शूट बॉल जैसे खेल उन्हें मैदान से जोड़ने का काम करते हैं। खेल हमें केवल शारीरिक रूप से मजबूत ही नहीं बनाते बल्कि जीवन में संघर्ष करना और आगे बढ़ना भी सिखाता है। और एक बहुत ही सुंदर लाइन्स याद आती है कि खेल वही नहीं जो जीत दिलाए, खेल वो है जो जीवन जीना सिखाए।

0: चलिए दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के जन्म दिवस के बारे में। तो आज हम जन्मदिन की बधाई देते हैं भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन को। 12 मई 1945 में केरल में जन्मे कोनप्पुकतिल गोपीनाथन बालकृष्णन देश के 37वें मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले दलित और मलयाली व्यक्ति हैं। और उसके साथ आज 12 मई के दिन हम याद करते हैं आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्मदाता मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। उनका भी आज जयंती दिवस है।
1: इसी के साथ आज हैप्पी वाला बर्थडे है ऋषि सुनक का, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता है। दोस्तों, वे अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे और अक्टूबर 2022 से कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता के रूप में कार्यरत है। इसी के साथ हम याद कर रहे हैं घनश्याम नायक को, जिनकी क्या जयंती है। वे एक भारतीय मूल के फिल्म और टेलीविजन अभिनेता थे। वे कई टेलीविजन धारावाहिकों के साथ साथ फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं और खासतौर से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नटवर लाल प्रभा शंकर उंधई वाला उर्फ नट्टू काका की भूमिका के लिए उन्हें जाना जाता है। इसी के साथ कृष्णचंद्र भट्टाचार्य जी की आज जयंती है, जो कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक दार्शनिक थे। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में समापन गीत की ओर।

0: तो दोस्तों हमारी तरफ से भी सायोनारा, हम आपसे फिर मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे नियत समय पर अपने प्रोग्राम नमस्कार के साथ, लेकिन फिलहाल अनुमति दीजिए लीना माथुर
1: और नूतन सोनी को
0: नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के ठीक 10 बजे है। प्रस्तुत है प्रोग्राम ओपन शो।

0: Program Open Show.
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टांके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर प्रोग्राम ओपन शो लेकर के हाजिर हैं। और इस प्रोग्राम से ठीक पहले नमस्कार प्रोग्राम में जो समापन गीत था वो सायोनारा था, विदाई का गीत था। जब हम विदा होते हैं तो जापानी भाषा में सायोनारा कहते हैं। और एक ऐसी जगह जो हमें तुरंत याद आती है जब बात विदाई की हो, हॉस्पिटल वो जगह है जहाँ जीवन का प्रयाण होता है तो जीवन का आगमन भी होता है, यानी आशा और हमारी हताशाओं का एक संबल या सहारा बनता है हॉस्पिटल। और आज जो हमारे मेहमान हैं वो अस्पताल और अस्पताल प्रशासन से और चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई जोधपुर की एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है जो हमारे स्टूडियो में आज ओपन शो के मेहमान के तौर पर आई हैं। दोस्तों, मैं संजय व्यास हूँ, मेरे साथ मेरे साथी राजेश लामरोड और हमारी होस्ट कविता सांकला, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का दिन इसलिए भी खास है कि आज सुबह 6:30 बजे से आकाशवाणी जोधपुर की तरफ से आकाशवाणी के 90 वर्षों के गरिमामय इतिहास के उपलक्ष में हमने एक पैदल चालन रखा था, एक समारोह रखा था, वॉकाथॉन नाम दिया था। और जो जोधपुर आकाशवाणी केंद्र से मटकी चौराहे तक और लौट करके वापस आकाशवाणी जोधपुर पर सभी प्रतिभागी आए थे और बहुत सारे प्रतिभागियों ने बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया था, तो हम लौट करके अपने आप को और ज़्यादा फिट महसूस करने लगे। जब हेल्थ के नज़रिए से हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो आज के दिन का हासिल ये रहा कि हम इसको हर दिन की अपनी आदत में शामिल क्यों न कर लें, यानी घूमना फिरना, दौड़ना, पैदल चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिल चलाना, जिम जाना या फिर व्यायाम। अगर हमारे जीवन में जिस तरह से हम भोजन को शामिल करते हैं हमारी रोज़ की दिनचर्या में, उसी तरह से व्यायाम भी अगर हमारी रोज़ाना की दिनचर्या में शामिल हो जाए तो हम स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि स्वस्थ नागरिक यानी स्वस्थ देश, स्वस्थ राष्ट्र। और इसी बात पर हम आज अपने मेहमान का हार्दिक स्वागत करेंगे। आज ओपन शो के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार आसेरी। आप वाइस चांसलर हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और अगर थोड़ा पहले जाएं तो आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक रहे हैं एमडीएम हॉस्पिटल के आप, और 9 अक्टूबर 2023 से आप कुलगुरु हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के। ये एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इस पर हम बात भी करेंगे। और साथ ही आप मेंबर हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। तो डॉक्टर महेंद्र कुमार आसेरी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, बहुत धन्यवाद आने के लिए।
6: नमस्कार।
5: आप हमारे जो पुराने श्रोता हैं उनके लिए बहुत सुपरिचित वार्ताकार हैं आकाशवाणी के, आप हमारे लिए एक नया नहीं है, हमारे परिवार के ही एक सदस्य के तौर पे आप आते रहे हैं पहले भी, तो हमारे पुराने श्रोता जानते हैं। और जो नए श्रोता अभी जुड़े हैं, जो हमारे रिलेटिवली यंग जो हमारे लिसनर्स हैं, वो आपको और एक घंटे में थोड़ा सा नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी जैसे मैंने जिक्र किया हमारे तमाम दोस्तों के साथ कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के आप कुलगुरु हैं, वाइस चांसलर हैं, और चूंकि आपका चिकित्सा प्रशासन में बहुत लंबा अनुभव है तो ये अनुभव आप काम में ले रहे हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और साथ ही आप मेंबर हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में जानना चाहूँगा कि जैसे MCI एक संस्था है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन, तो ये दोनों क्या अलग अलग प्रकार से काम करती है?
6: जी नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पुराना नाम है।
5: अच्छा अच्छा, उसी का ये नया नाम है।
6: नया नाम जिसे नीति आयोग हुआ उसी तरह।
5: अच्छा अच्छा, जी जी, योजना आयोग का नाम नीति आयोग हुआ,
6: प्रशासनिक बदलाव करके इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल का नाम दिया गया।
5: लेकिन केवल नाम नहीं बदला होगा, कुछ अधिकारों में भी बढ़ोतरी हुई होगी, कुछ इसका दायरा भी बढ़ा होगा।
6: जी हाँ, दायरा बढ़ा है, कुछ प्रशासन से राज

0: नेताओं से, उनको भी लिए, कुछ और जो अलग अलग स्टेट है भारत के उनसे भी मेंबर बढ़े हैं।
1: जी, मूलतः काम जैसे आम तौर पर आदमी ये समझता है कि जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुलते हैं तो उसका पूरा बारीकी के साथ, कड़ाई के साथ निरीक्षण करके और वो सारे मानदंड पूरा करते हैं, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान की जो पढ़ाई है वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो वो सारे काम, ये मूलतः इसी तरह के काम होते हैं
0: बिल्कुल,
1: इसमें।
0: नेशनल मेडिकल काउंसिल ये तो देखते हैं, कोई भी नया मेडिकल कॉलेज खुलता है या कोई नया मेडिकल खोल लेता है तो उसकी 5 साल तक लगातार वो इंस्पेक्शन करते हैं। और मैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का, तो साइमल्टेनियसली यूनिवर्सिटी भी मेडिकल कॉलेज खुलती है तो उसी बारीकी से उनका इंस्पेक्शन करता है। इसके अलावा नई नीतियाँ बनाना, एग्जाम आयोजित करना, सिलेबस बनाना, रिजल्ट, ये सभी काम NMC करते हैं। जो भारत में, पूरे राष्ट्र में जो भी हमारी चिकित्सा की नियम नीति बनती है, खासतौर से मेडिकल एजुकेशन के लिए, तो ये मेडिकल
1: जी
0: काउंसिल का काम है।
1: जी
0: इसमें प्रत्येक स्टेट से एक एक सदस्य होते हैं।
1: यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो है वो, चूंकि भारत में जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनको तो गवर्न करता ही है, लेकिन जैसे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ के आते हैं, विदेशों से पढ़ के आते हैं, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी अपनी नीतियाँ रहती होंगी जिनके अंतर्गत वो पढ़ाई करते हैं, तो वो जब लौट के आते हैं तो उनको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो
0: जी
1: अब उसी तरह का एग्ज़ाम नेशनल मेडिकल कमीशन आयोजित करवाता है।
0: जी हाँ, उसको नेशनल एग्जिट टेस्ट कहते हैं।
1: ओके
0: वो चाहे भारत में पढ़ा हो या भारत से बाहर पढ़ा हो, अगर उसको भारत में प्रैक्टिस करनी है, उस एग्जाम को क्लियर करना अनिवार्य है।
1: जी, यानी अगर भारत के किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है तब भी उसको वो एग्ज़ाम क्लियर करना ही है।
0: हाँ जी, इंटर्नशिप से पहले या बाद में वो एग्जाम क्लियर करते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये एक मन में था कि भाई जो बाहर से पढ़ के आते हैं उन्हीं को क्लियर करना होता है, क्लियर सबको करना होगा।
0: जी, सभी को।
1: बिल्कुल, तो सर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अभी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसकी खूब सारी चर्चाएं सुनने में आई है, इसके वाइस चांसलर हैं आप, इसका दायरा किस तरह का है? जोधपुर में जैसे डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज है, इसी प्रकार जो सरकारी क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर, बीकानेर में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है, कोटा में है, इस तरह से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल आते हैं,
0: जी
1: तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने आप में किस तरह से अलग है और इसका दायरा, प्रशासनिक दायरा किस तरह का रहेगा?
0: जी हाँ, मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ।
1: जी
0: कुछ समय पहले, 2023 से पहले, राजस्थान में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, RUHS, जो जयपुर में थी। उसके अधीन करीब 600 कॉलेज थे। मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर में सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं आते, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, ये नर्सिंग कॉलेज, ये सभी आते हैं। तो राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा थी, तो लोगों की एक डिमांड थी कि एक और विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए ताकि कार्य का बंटवारा हो सके, क्योंकि जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है और अलग है इसकी पृष्ठभूमि। तो ये सोचते हुए कि जोधपुर में एक मारवाड़ विश्वविद्यालय स्थापना की, 2023 में बजट घोषणा हुई और 23 सितंबर 2023 को विधिवत इसका शिलान्यास किया गया। बजट इसका राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया। उसके बाद इसकी ये हुई कि कार्यक्षेत्र क्या होगा, तो एक कमेटी बनाई गई थी हाई लेवल में, जिसमें मैं, RUHS के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी थी, कि किस तरह से विभाजन किया जाए। तो हमने दो तरीके सोची, एक जो जोधपुर के आसपास क्षेत्र मारवाड़ से जुड़े हुए हैं, तो हमने सोचा एक जोधपुर संभाग लिया जाए और दूसरा बीकानेर संभाग लिया जाए। तीसरा, न्यायिक दृष्टि से, जैसे जो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन है राजस्थान हाई कोर्ट के जोधपुर ब्रांच में, उन शहरों को लिया जाए, उसके अंदर उदयपुर संभाग आया। तो ये तीन संभाग लिए गए, बाकी के संभाग उधर है। तो करीब करीब आधा राजस्थान मारवाड़ विश्वविद्यालय के अधीन रहेगा और बाकी जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर इत्यादि RUHS के अधीन रहेंगे। तो इस क्षेत्र में आने वाले, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, सभी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे। और ये एक चरणबद्ध तरीके से होगा। अभी जैसे 2025 में, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय नया था, प्रशासनिक पद भी कम थे, स्टाफ की शॉर्टेज भी थी, तो धीरे धीरे बढ़ना था, तो ये निर्णय लिया गया कि इसके फेज वाइज किया जाए। तो 2025-26 में हमारे पास जोधपुर डिस्ट्रिक्ट था ओनली, और हमारे अधीन करीब 40 कॉलेज थे। 2026-27 में जो अब चल रहा है उसके अंदर जोधपुर संभाग ले लिया गया है, जिसके अंदर जोधपुर के अलावा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर, यहाँ आने वाले सभी मेडिकल से रिलेटेड
1: मेडिकल
0: कॉलेज
1: कॉलेज
0: करीब 83 कॉलेज हो जाएंगे। इसी तरह अगली बार बीकानेर

0: होंगे तो ये 160 की लगभग संख्या हो जाएगी, और जब उदयपुर जुड़ जाएगा तो करीब 200 से अधिक कॉलेजेस होंगे जिसके अधीन मेडिकल, डेंटल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ और पैरामेडिकल कोर्सेज होंगे।
1: बिल्कुल, ये चरणबद्ध तरीके से होगा, और जब उदयपुर यानी जो
0: हाँ
1: आखिर में जुड़ेगा तो वो इसका जो गठन है वो पूर्ण हो जाएगा।
0: जी
1: ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसमें इसका अपना हॉस्पिटल और इसका अपना भी कुछ इस तरह का होगा जिसमें शिक्षा को लेकर के, मेडिकल की शिक्षा को लेकर के काम होंगे?
0: जी बिल्कुल। इसका डेवलपमेंट के भी 3 फेज है। पहले फेज में प्रशासनिक ढांचे का निर्माण, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, रेजिडेंस, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम इत्यादि है, जो इसका बजट करीब 98 करोड़ का है। दूसरे फेज में एक्चुअल में हमें एक बोरावा से जो राजस्थान मंडोर के थोड़ा आगे है वहाँ 100 बीघा जमीन अलॉट हुई है, उसमें ये कार्य चल रहा है। तो पहले फेज का करीब 70% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि प्रथम फेज का जुलाई 2027 में विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा। सेकेंड फेज में इसमें एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेगी जिसका भी बजट करीब 300 करोड़ रुपए है। 500 बेड का एक आधुनिक चिकित्सालय होगा जहां पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, सुपर स्पेशलिटी होगी और जो गंभीर बीमारियों का इलाज भी होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, हॉस्पिटल निर्माण में 3-4-5 वर्ष का समय लगता है। तो ये सेकेंड फेज में 2027 से शुरू होगा, फर्स्ट फेज 2027 में समाप्त हो जाएगा
1: जी
0: और तीसरे फेज में 100 करोड़ और हैं जिसमें 2030 में उसको हॉस्पिटल को इक्विपमेंट इत्यादि मिलेंगे और वो विधिवत पूर्ण रूप से काम करना शुरू करेगा।
1: जी डॉक्टर आसरी, ये अपने आप में चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से जोधपुर या मारवाड़ संभाग के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है ये, कि जिसमें मारवाड़ संभाग में जो चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई है, शिक्षा है और इसका जो प्रशासन है वो एक बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से काम करने लग जाएगा। अब हमारे जो दोस्त हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे जो मेहमान आते हैं वो थोड़ा सा अपनी बातचीत के बीच में एक हल्का फुल्का विराम जो है वो एक गीत के नज़रिए से देने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ गाने चुन के लाए हैं?
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल। तो आपका पहला कौन सा पसंदीदा
0: पहला
1: गाना है
0: गाना
1: जो
0: जो
1: आप?
0: मेरी और पत्नी को भी पसंद है, एक
1: जी
0: तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: बिल्कुल, सुनते हैं आपकी पसंद और उसके बाद लौट के हाजिर होते हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है ओपन शो।

0: गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: किसे?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
5: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
5: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
5: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
5: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
5: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
9: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
8: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
10: स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में। आज हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार आसेरी, कुलगुरु मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर। और ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सर आपने जो गाना सुनाया, ये तो गाना बहुत स्लो, जिसे कहते हैं ना आराम से बैठ के सुनने का है, और ऐसा लगता है कि दुनिया स्लो मोशन में चल रही है, लेकिन असल में दुनिया बहुत तेज़ी से भाग रही होती है। तो इस तरह के गाने आपको पसंद आते हैं, लेकिन जो बाहर सीन होता है वो बहुत भागम भाग वाला होता है
11: जी।
10: तो ये कोई खास आपकी इस तरह की पसंद का कोई कारण, या बहुत अरसे से आप इसी तरह के गाने पसंद करते रहे?
11: हाँ, वैसे मैं नए पुराने सभी गाने सुनता हूँ, लेकिन बचपन से किशोर, लता, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी जी, आशा भोसले, इनके गाने सुन के ही हम बड़े हुए हैं। जब हम पढ़ते थे तो अक्सर टेलीविज़न तो था नहीं, हमारे घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर होता था, और 99% वो सुनता ही रहता था। तो ये गाने हमारे दिल और दिमाग में पूरी तरह बसे हुए हैं, कहीं भी एक लाइन आए तो हमें वो पूरा गाना याद आ जाता है, बोल भी याद हो जाते हैं।
10: बिल्कुल, ये जैसे गाने लिखने वाले लोग थे या जिनकी म्यूजिक रचना करने वाले लोग थे, संगीत रचना जिन्होंने की है, ये एक आर्ट का काम है
11: जी।
10: और आप विज्ञान के आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आर्ट और साइंस है वो कन्वर्ज करती है आगे जाके? जैसे आप सर्जरी में, आप सर्जरी के हैं, तो आपको लगता है कि सर्जरी भी अल्टीमेटली जो है वो साइंस से ज्यादा जो है व्यक्तिगत तौर पर एक तरह की आर्ट ही हो जाती है?
11: मैं कहूंगा एक साइंटिफिक आर्ट है,
10: साइंटिफिक आर्ट
11: हम
10: है।
11: जब किसी का, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, किसी की हड्डी टूट जाती है, बिखर जाती है, उसको जोड़ के पुनः उसी शेप में लाना किसी आर्ट से कम नहीं है, और वो भी एक जिंदा इंसान में। आप दीवार में या जो नॉन लिविंग पे चाकू या चलाना या उसके ऊपर पेच कसना इतना मुश्किल नहीं है, जब आप शरीर, दिल धड़क रहा हो, खून बह रहा हो, उसके बीच में उन सब को, साइंस को ध्यान रखते हो, उसको शेप देना एक अपने आप में बहुत बड़ी आर्ट है।
10: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही। और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, तो ये किस तरह से अलग होगी जो बाकी विश्वविद्यालय हैं इस तरह के, जो चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय, उनसे किस तरह की अलग होगी? क्योंकि जो आजकल के ज़माने की डिमांड्स हैं वो अलग तरह की हैं
11: जी।
10: अब जो टर्शरी केयर है उससे और ज़्यादा लोगों को चाहिए
11: जी,
10: तो उनकी सुविधा के लिए किस तरह की योजनाएं आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे?
11: जब मुझे इसका चार्ज

0: दिया गया था एज ए फाउंडर वाइस चांसलर, तो मैंने सोचा कि इसको क्या किया जाए। यूजुअली जो डेजर्ट में होते हैं लोग उसमें सोचते हैं ये अच्छी नहीं है। हमने कहा ये जो रेगिस्तान में यूनिवर्सिटी है हमारे लिए एक ताकत होगी, यहाँ एक अलग तरह का अनुसंधान करेंगे, ये हम इसको ताकत की आपदा में जैसे अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो हमने कहा इस रेगिस्तान में जो ये विश्वविद्यालय बन रहा है ये अपने आप में एक अद्वितीय होगा, हम एक रोल मॉडल बनाएंगे जो दूसरे विश्वविद्यालयों में रहे, हम नाक एक्रेडिटेशन पे जाएंगे और भी बहुत कुछ करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा गाँव में प्राथमिक चिकित्सा होती है, छोटे शहरों में सेकेंडरी केयर होती है, मेडिकल कॉलेज में टर्शरी होती है, और हम चाहेंगे ये उससे ऊपर क्वार्टरनरी केयर चिकित्सा मिले, जिसके लिए कई बार ऐसी गंभीर बीमारियां होती है कि उन्हें शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा विदेशों से भी इंजेक्शन मंगाते हैं जो करोड़ों रुपए के होते हैं। हम चाहेंगे कि विश्वविद्यालय में ऐसा एक अनुसंधान क्षेत्र भी स्थापित हो और इस तरह की गंभीर और असाध्य रोगों को भी चिकित्सा पश्चिमी राजस्थान में मिले, इसके लिए हमने चर्चा भी की और भी हमने कई नवाचार किए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रोजेक्ट दिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हमने प्रोजेक्ट की, उन्होंने भी इसे अप्रिशिएट किया और हमने एक नवाचार किया। अभी आपने देखा होगा मेडिकल कॉलेज छोटे छोटे शहरों में है और राजस्थान में हिंदी भाषा ज़्यादा चलती है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कम है। तो पिछले साल से हमने मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन होंगे यह निर्णय लिया है कि कोई छात्र जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो वो अपना मेडिकल कॉलेज में प्रश्नों के उत्तर हिंदी में भी दे सकता है ताकि वो समझा सके।
1: जैसे MBBS कोई कर रहा है
0: हाँ,
1: तो वो अगर पूछा गया सवाल अंग्रेजी में है लेकिन वो उत्तर हिंदी में दे सकता है।
0: प्रश्न पत्र अब हमारे विश्वविद्यालय के आने वाले कॉलेजों में हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी होंगे, ये छात्र पहले लिख देगा, वो हिंदी में देना चाहे तो वो हिंदी में भी जवाब।
1: बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है जो मेडिकल साइंस की है वो अंग्रेजी में होती है, मान लीजिए उसका उसको पता है लेकिन वो सिंटैक्स या जो वाक्य रचना है वो ठीक तरह से नहीं बना पा रहा है, तो उसको छूट होगी कि हिंदी में लिखते हुए टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में लिख सके?
0: हमने कोई भी टेक्निकल टर्म चेंज नहीं, जैसे हार्ट को हार्ट लिखे, हृदय लिखे, लंग्स को लंग्स लिखे, बोन्स को बोन लिखे, जो आर्टरी को अगर वो लिखेगा धमनी तो मुश्किल होगा पढ़ने वाले के लिए, दूसरों टेक्निकल वर्ड चेंज नहीं करेंगे लेकिन वो समझा सकेगा वो क्या कहना चाहता था। पहले जैसे उसको अगर हिंदी माध्यम से तो उसको सेंटेंस बनाना पड़ता था, कई बार जो बोलता था या सोचता था वो लिख नहीं पाता था, अर्थ का अनर्थ हो जाता था। इससे उसको सुविधा होगी कि अपना जवाब हिंदी में भी दे सके। ये राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश और कुछ और स्टेट में भी
1: चल रहा है
0: तो और अच्छे परिणाम है।
1: बिल्कुल, और हिंदी अब इतनी सक्षम भाषा बन चुकी है, हम देख रहे हैं कि जैसे IPL के मैचेस चल रहे हैं तो भोजपुरी और हरियाणवी से लेकर तमाम तरह की भाषाओं में उनकी कमेंट्री एक साथ चल रही है। तो हिंदी की जो ताकत है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन अब उसको जरूरत है कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में या मेडिकल साइंस के फील्ड में किस तरह से अप्लाई करें। ये काम आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम,
0: ये बेहतर तरीके से अपना सकेगा। और NMC ने भी कहा है कि उन्हें अगर सिलेबस चेंज नहीं होगा, हिंदी और भी कई भाषाएं उन्होंने अप्रूव की है जिसमें छात्र चाहे पढ़ सकता है।
1: बिल्कुल सर, जो सिलेबस है ये क्या वर्ल्ड ओवर मेडिकल साइंस का सिलेबस लगभग एक जैसा ही होता है?
0: हाँ, तकरीबन जैसे पूरे भारत में NMC बनाती है सिलेबस, और मेडिकल कॉलेज में आवर्स के हिसाब से, जैसे एक एनाटॉमी है तो उसमें कितने घंटे पढ़ाई हुई, आप अमेरिका जाए या इंडिया जाए आवर्स के हिसाब से सिलेक्शन पढ़ाई होती है और वैसे ही गिनी जाती है। उसको अगर बाहर जाता है तो उसको देखा जाएगा कि इसने कितने घंटे अंडर ग्रेजुएट में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है।
1: बिल्कुल, और ये लगभग जब आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तब से लेके अब तक कमोबेश उसी तरह का सिस्टम चल रहा है?
0: तकरीबन बिल्कुल,
1: मेडिकल साइंस जो है वो इतनी टेस्टेड साइंस हो चुकी है, इतनी मतलब प्रमाणित विज्ञान ये है कि जो पढ़ाई आज से 30, 40, 50 साल पहले चल रही थी सैद्धांतिक तौर पर उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। दवाइयाँ हो सकता आई हो, टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई हो,
0: नए ऑपरेशन, नई दवाइयाँ, नई तकनीक ईजाद होती रहती है जो इसमें जुड़ती रहती है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो अभी भी वही है जो पुराने साइंटिस्ट दे गए, बहुत मेहनत की है तो उसके अंदर कोई बदलाव नहीं है।
1: बिल्कुल, मेडिकल साइंस में पिछले 2-3 शताब्दियों से अभूतपूर्व प्रगति हुई है और जिन लोगों ने भी जो कह सकते हैं पायनियर्स थे उन्होंने अपना जीवन दिया है इसे दान, और अब जाकर के हम इस स्थिति में है कि बहुत मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का भी इलाज कर पा रहे हैं। सर कुछ बातें और करेंगे, और चूंकि आपने जिक्र किया है हिंदी माध्यम से जो स्टूडेंट्स आते हैं और जो प्रतिभाशाली हैं और चिकित्सा विज्ञान पढ़ना चाहते हैं उनकी सुविधा के लिए जो आप नवाचार कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हम चर्चा करना चाहेंगे आपके अपने जो कुल अनुभव है वो किस प्रकार का रहा और आप उस अनुभव के आधार पर जो

0: स्टूडेंट्स आप ही की तरह के, मतलब आप ही का एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अब जो 3-4 दशक के बाद में जो वर्जन आने वाला है, उन विद्यार्थियों के लिए आप अपनी कठिनाइयों को देखते हुए उनके लिए क्या आसानी करना चाहते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक गाना और हो जाए तो
1: जी
0: अगला गाना कौन सा है सर?
1: मैं डॉक्टर हूँ, लोगों के
0: हाँ
1: दर्द
0: जी
1: साझा करता हूँ, तो मेरा गाना भी यही है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार,
0: मुझे
1: जीना
0: लगता है
1: उसी का
0: शैलेंद्र
1: नाम
0: ने
1: है।
0: जब ये गीत लिखा होगा तो किसी डॉक्टर के लिए ही
1: हो
0: लिखा होगा, हो सकता है डॉक्टर को देख के ही
1: सकता
0: लिखा हो और वो किसी तकलीफ में और डॉक्टर ने उनका इलाज किया तो उनको लगा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो दर्द साझा करने वाला काम जो है वो डॉक्टर ही करता है। तो सुनते हैं ये गाना, उसके बाद हाजिर होते हैं ओपन शो प्रोग्राम में 102.1 FM पर, रेडियो सन सिटी, बने रहिए हमारे साथ।

0: लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहां कहां इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
5: स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में। आज हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी जोधपुर के सुपरिचित वार्ताकार और बहुत अनुभवी चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर महेंद्र कुमार आसेरी। आप वाइस चांसलर हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के और उससे पहले आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। तो चिकित्सा विज्ञान में अपने कार्य की दक्षता के अतिरिक्त आपको प्रशासनिक अनुभव भी बहुत अधिक है, इलस्ट्रियस करियर रहा है आपका। अगर मैं थोड़ा सा और रिवाइंड करना चाहूँ सर, तो आप चिकित्सा विज्ञान में मतलब जब आए तो क्या आपकी इच्छा थी शुरू से ही कि मुझे डॉक्टर बनना है, या घर वालों का भी थोड़ा सा रहता है कि भाई डॉक्टर बनते हैं वो कुछ दिमाग माइंड मेकअप करने की कोशिश करते हैं, क्या रहा?
6: नहीं, मुझे बचपन से ही था, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं।
5: अच्छा, आपके परिवार में पहले से ही डॉक्टर थे?
6: मेरे से 7 साल बड़े हैं। हाँ, तो उनको देखता था तो मुझे लगता था डॉक्टर बनना है। फिर जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो मेरे दादाजी का फ्रैक्चर हो गया, फाइनल MBBS में था। अच्छा। तो मैं ऑर्थोपेडिक वार्ड में जब जाता था, वहाँ के एडोपजी डिपार्टमेंट को देखा तो मुझे लगा मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है। उसी हिसाब से तैयारी की और फॉर्चुनेटली मुझे 1986 में ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का अवसर मिला। 89 में मैं डिग्री पूरी की और मेरी इच्छा थी, लोगों की होती वैसे तो गांव में सर्विस करने चाहते, लेकिन मैंने इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और काम भी करूं। और 91 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर या हो गया, जोधपुर में काम किया मैंने, R&T मेडिकल कॉलेज में भी काम किया, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा यहीं SN मेडिकल कॉलेज और इससे एसोसिएट हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी बना। 2018 में सरकार ने मुझे जो MDM हॉस्पिटल राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ का अधीक्षक नियुक्त किया। बहुत बड़ा चैलेंज था, 24 कोई भी अस्पताल, कोई भी ऑफिस देखा जाए तो हफ्ते में 5 दिन चलते हैं, 10 से 5
5: जी।
6: अस्पताल 24/7
5: 24 घंटे
6: चलता है, कोई रुकने का है नहीं, चाहे कुछ भी हो। बहुत बड़ा चैलेंज था और जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो स्वाइन फ्लू आ गया, उसे मैनेज करना था, बहुत मुश्किल आई, लेकिन हमेशा तत्कालीन सरकार का, अधिकारियों का, सीनियर्स का मेरा सहयोग रहा। और 2020 में जो महामारी थी वो कोविड, वो आ गई और MDM दूसरा सबसे बड़ा राजस्थान का सेंटर बना।
5: उस वक्त आप अधीक्षक थे MDM के? हाँ, जब कोविड का समय आया।
6: हाँ, मैं अधीक्षक था और उस वक्त MDM में 1300 बेड थे और 1300 में से करीब 1200, ऐसा भी वक्त आया कि 1300 से 1300 पेशेंट कोविड के थे। बहुत बड़ा चैलेंज हुआ उस पाल में, करीब 18,000 मरीज कोविड पॉजिटिव एडमिट हुए, उनमें से करीब 1000-1200 की मतलब less than 1% की डेथ भी हुई। सभी का, जनता का, सभी का सहयोग मुझे मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला, हमने सबने मिल के काम किया और इसकी सराहना राज्य स्तर पर भी हुई, सभी ने कहा कि यहाँ अच्छा काम चल रहा और किसी को कोई शिकायत नहीं। एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन भी मैंने बहुत काम किया, मेरा शुरू से दो था, एक तो ट्रॉमा, जो भी पॉलीट्रॉमा एक्सीडेंट होता उनको मैनेज करना शुरू से रहा, तो मैं ट्रॉमा में इमरजेंसी OT में बहुत काम करता था। इसके अलावा सभी का होता है जैसे रिप्लेसमेंट, वो भी था, स्पाइन सर्जरी, सभी कुछ काम, करीब 34 वर्ष मैंने काम किया है 91 से 2022 तक। तो ऑर्थोपेडिक्स तो बिना मुझे कुछ अच्छा लगता ही।
5: बिल्कुल,
6: मेरा जो मनोरंजन, मेरी खुशी ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा मिलती है। आज भी जैसे मैं वाइस चांसलर भले ही हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेशन करना याद आता है। मुझे खुशी सिर्फ अच्छे ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद जो मिलती है, बहुत अच्छा लगता है।
5: बिल्कुल, ये आपने बताया कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है ये एक तरह से ईश्वर ने जो एक रचना बनाई है उसी की पुनर्रचना करना है, तो एक अलग तरह का सेटिस्फेक्शन भी मिलता है।
6: जी,
5: तो आमतौर पर इसमें जो है वो जान का खतरा कम होता है, लेकिन इसमें ये है कि आपको पूरी तरह से व्यक्ति को प्राकृतिक स्थिति में जैसे चलना फिरना दौड़ना है उस स्थिति में लाने की चुनौती रहती है। ये अपने आप में
6: डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ना हो,
5: ना हो जी,
6: अयो क्या दिव्यांगता ना हो।
5: बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि आपने भाई साहब को देखा और डॉक्टर बनने की इच्छा की, फिर

0: है, दादाजी को चोट लगी तो आप ऑर्थोपेडिक इसमें ब्रांच में आए,
1: जी
0: तो बचपन से इच्छाएं तो हम बहुत सारी करते हैं। जैसे अब किसी को छोड़ने गए ट्रेन पे, तो हमें लगता है कि जो लोको पायलट है उसकी सबसे मज़ेदार नौकरी, क्योंकि उसको ट्रेन में बैठने का मौका मिलता है।
1: बिल्कुल
0: फिर कभी मिठाई की दुकान पे जाते हैं और कोई मिठाई अच्छी लगती है, घर वाले तो एक पीस देते हैं, तब इच्छा होती है कि हलवाई जो है वो चारों तरफ मिठाइयों से घिरा रहता है, तो ये वाली जो है वो जॉब सबसे अच्छी है। तो आपने अपनी इच्छाएं करना क्या वहां पर स्थगित रखा कि भाई डॉक्टर बनने और ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के बाद और कोई इच्छा नहीं है, गोल पोस्ट आपने ज्यादा चेंज नहीं की?
1: हाँ, बचपन में तो जैसे सभी कोई मूवी देखने जाते थे तो जो हीरो है तो अपन को भी बनना,
0: हाँ
1: या
0: सही है,
1: सबसे ज्यादा मुझे आसमान में हवाई जहाज देखते थे तो लगता था पायलट बने,
0: बिल्कुल
1: मुझे और कोई वकील या ऐसा कभी इंजीनियर का
0: नहीं
1: नहीं रहा,
0: लगा
1: पायलट का रहता था।
0: जी।
1: और लेकिन 9th में जब मैंने बायोलॉजी ली तो मुझे ये था कि डॉक्टर ही बनना है, उसके बाद
0: यानी
1: कभी
0: ये है कि
1: मैंने
0: पायलट
1: बदलाव नहीं।
0: बनने की जो इच्छाएं थी तो
1: हाँ
0: उसने आपको वो दृष्टि दी कि आपको देखना तो आसमान की तरफ है
1: ये आप कह सकते
0: और
1: हैं
0: कदम जो है वो आपको जमीन पर ग्राउंडेड रखना है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये रहा कि भाई आपको 9th में, जैसे उस वक्त बायोलॉजी वो
1: 9th में
0: 9th
1: लेते
0: में
1: थे।
0: लेना होता था
1: हाँ
0: और भाई साहब आपके पहले से ही डॉक्टर थे। अब ये स्थिति है कि सर मेडिकल की पढ़ाई जो है वो अपने आप चुनौतीपूर्ण है, यानी एक तो आपका एडमिशन होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, और मेडिकल में एडमिशन हो जाने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं होता, फिर पढ़ाई करनी है उसकी। तो हम देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं मेडिकल जो पढ़ रहे होते हैं, और कई तो बहुत चरम कदम भी स्टेप भी उठा देते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो क्या पढ़ाई इतनी मुश्किल है, वो मैनेज क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या दिक्कतें होती है?
1: नहीं, पढ़ाई मुश्किल तो नहीं है, पहले भी जैसे थी आज भी वैसी
0: पढ़ना तो
1: ही।
0: बहुत पड़ता है,
1: हाँ प्रॉब्लम, हाँ पढ़ना तो पड़ता है सर,
0: पड़ता है।
1: इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मेडिकल हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, हमेशा पढ़ना, अपडेट नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हर रोज एक नई दवाई आ जाती है, ऑपरेशन में बदलाव आते हैं। जैसे मैं कहूँ, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तो हमारे यहाँ भर्ती होते थे, हम वजन टांग देते, एक एक महीने भर्ती होते थे। अब इतनी एडवांस है कि आज पेशेंट आया, कल ऑपरेशन, परसों छुट्टी, 3 दिन में वो अपने घर चला जाता है, बदलाव आया। प्रॉब्लम ये हो रही कि स्टूडेंट्स स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहे हैं, रोजाना नहीं पढ़ते। मेरा सभी स्टूडेंट के कहूँगा, अगर आप डेली 2 घंटे दोगे तो 365 दिन में करीब 750 घंटे पढ़ लोगे। एग्जाम के टाइम आप पढ़ोगे तो रोज के 20 घंटे भी पढ़ेंगे, तो ये 700 घंटे में बहुत समय लगेगा। अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट थोड़ा सा करें, मेडिटेशन भी करना चाहिए, रिलैक्स होके पढ़ें, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। और ये बहुत मैंने देखा कि इस तरह प्रकरण मेडिकल में नहीं, दूसरों में भी आ रहे हैं। कई बार तो जब इसकी तैयारी करते हैं नीट वगैरह की, उसमें भी कुछ हादसे अब सुनते रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा योगदान उसके परिवार का भी होना चाहिए, उसको हौसला दे, ज़बरदस्ती ना करे। और उस ध्यान रखे उसके दोस्त कैसे हैं, एनर्जेटिक पॉजिटिव माइंड वाले दोस्त रखेंगे तो बच्चा अपने दोस्तों की बहुत सुनता है, चाहे वो कॉलेज में हो या कोई एग्जामिनेशन की तैयारी का, उनका प्रभाव बड़ा रहता है और माँ बाप का तो रहता ही है।
0: बिल्कुल, जो पीयर ग्रुप होता है वो उस पर बहुत असर
1: हाँ
0: डालता है।
1: बहुत असर डालता है,
0: तो आपके मामले में क्या था ऐसा, परिवार का सपोर्ट रहा आपको पूरा?
1: 100%। हाँ
0: बिल्कुल।
1: सभी का।
0: और दोस्त किस तरह के मिले जो आपके मतलब मेडिकल साइंस में ही दोस्त बने, या पहले से दोस्त थे जो मेडिकल में नहीं आ पाए, उस तरह के भी दोस्त हैं
1: दोस्त
0: अभी?
1: मेरे बहुत कम थे मेडिकल
0: कम
1: में,
0: थे,
1: तो अब हो
0: पढ़ने वाले
1: गए
0: जो बच्चे होते हैं वो दोस्त कम बना
1: बहुत
0: पाते
1: कम,
0: हैं।
1: बहुत कम। मैं आउटडोर स्पोर्ट्स तो नहीं खेलता था, बहुत ही कम, नहीं के बराबर खेलता था,
0: जी
1: तो दोस्त बन नहीं पाए बहुत
0: हाँ
1: लिमिटेड दोस्त है। लेकिन जो दोस्त हैं वो बरसों से लिमिट आ
0: मेडिकल
1: गए
0: कॉलेज
1: हैं।
0: में आने के बाद फिर
1: हाँ
0: आपकी
1: फिर दोस्त
0: स्थायी
1: बने।
0: दोस्तियां बननी शुरू हो
1: हाँ
0: गई
1: हाँ
0: होंगी,
1: बिल्कुल
0: तो वो आज भी संपर्क में रहते हैं अब तो,
1: बिल्कुल,
0: चूंकि
1: अभी भी
0: व्हाट्सएप
1: मिलते हैं।
0: वगैरह
1: हाँ अभी भी
0: कनेक्टेड
1: गॉसिप
0: रहते हैं
1: करते हैं,
0: आप?
1: हमारे आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है हमने हमारे बैच का, कभी कोई बाहर से आता है तो हम 4-5 लोग मिल के बैठ भी लेते हैं, बातचीत
0: बिल्कुल।
1: भी कर लेते हैं।
0: आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, चिकित्सा विज्ञान की आपने कहाँ पढ़ाई की?
1: मेरा जन्म भी जोधपुर में हुआ, SNMI
0: अच्छा
1: कॉलेज में ही पढ़ा, और यही मेरी 90% नौकरी भी यहीं
0: अच्छा
1: रही,
0: अच्छा बहुत बहुत सुंदर बात है ये। और
1: और यहीं मैं वाइस
0: जब
1: चांसलर भी बन गया
0: हाँ
1: उस
0: बिल्कुल,
1: वक्त।
0: और आपने ये एक दृष्टि रखी कि जैसे आपके दादाजी को चोट लगी तो आपने देखा कि उस वक्त जोधपुर में एक चलन ये भी था ना कि पहलवानों के पास लोग जाते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कहीं ना कहीं ये हमारी जागरूकता में कमी होती है, और कुछ उनके पास अपना एक नॉलेज होता है जो ठीक भी करता है, तो इन सब के बीच में समन्वय बनाने की आवश्यकता महसूस करते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हर एक कोई भी पद्धति हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, आयुष हो, होम्योपैथी, हमें क्रिटिसाइज करने का कोई अधिकार नहीं, हमें अपना
0: जी
1: काम करना
0: अच्छी बात
1: चाहिए।
0: है।
1: मैं मेरे जूनियर्स को यही कहता, आप किसी की क्रिटिसाइज न करें।

0: कोई मरीज आपके पास किसी चिकित्सा प्रणाली को छोड़ के आया तो आप अपना काम करें। उसने अपना काम किया, वो संतुष्ट नहीं है आपके पास आया, हो सकता है आपसे संतुष्ट नहीं उसके पास हो, किसी की हंसी नहीं उड़ाए, किसी की क्रिटिसाइज ना करें और अपना काम जरूर करें। बीच में मेरे पास आयुर्वेद विश्वविद्यालय का भी मैं वाइस चांसलर रहा कुछ महीनों तक,
1: अच्छा
0: एक्स्ट्रा चार्ज
1: जी
0: रहा था, तो मैंने देखा कि वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। अब उनके भी डॉक्यूमेंटेशन
1: जी
0: रिसर्च धीरे धीरे
1: जी
0: आगे आ रहे हैं, हमें
1: सर,
0: हर
1: एक चीज़ है
0: पद्धति
1: कि
0: का सम्मान
1: जैसे,
0: करना
1: हाँ
0: चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात आपने कही, और आयुर्वेद के बारे में जैसे आप जब आए तो आपने जानने का प्रयास किया और कई चीज़ें जो है वो आपको जानकारी में आई होंगी कि हो सकता है सिद्धांत जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के हैं वो अलग प्रकार के हैं और वो चूंकि पुरानी एक पद्धति है, बट जो एंड रिजल्ट होता है वो टाइम टेस्टेड होता है। जैसे घर में हम कई प्रकार के मसाले और हर्ब्स काम में लेते हैं तो वो कई पीढ़ियों से हमारी दादी नानियाँ जो हैं उनको टेस्ट करती है, उनके रिजल्ट देखने के बाद फिर वो वापस आगे बढ़ता है। तो जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं वो तो वैसे ही चलन से बाहर हो गई होंगी,
0: बिल्कुल
1: और जो काम कर रही हैं जो अभी भी चलन में है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो काम करती हैं तभी वो चलन में हैं। तो आयुर्वेद जो है वो उसकी जो औषधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं टाइम टेस्टेड हैं, बहुत बार ट्रायल हुए होंगे, कोई चीज़ बाहर हो गई होगी चलन से, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई होगी इस तरह से। तो इस प्रकार थोड़ा सा उदार दृष्टिकोण रखते हुए होलिस्टिक हेल्थ को मतलब हमें अपने उसमें रखना चाहिए, ये आप बात आप भी मानते हैं?
0: बिल्कुल। और मैं कहता हूँ आयुर्वेद की सत्य यह है कि हर एक कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक बन रहा है, जिसको भी दिखा ऑथेंटिक हो, जिसने डिग्री ले रखी उनके पास, जैसे हमारे भी कहते हैं वो झोला छाप डॉक्टर,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: पास जाओगे तो एलोपैथी की बदनामी होगी, वैसे ही वैसी अगर कोई क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है तो उसके पास नहीं जाए, जो क्वालिफाइड है उसके पास जाए। उसके अलावा मैंने अभी NMC में भी एक प्रपोज किया, लाइफ स्टाइल साइंस यानी जीवन पद्धति। मैंने अभी NMC में भी ये प्रपोजल रखा था कि हमारे एलोपैथी में भी ये इंक्लूड की जाए कि कैसे जीना चाहिए, किसी को स्वस्थ रहने के लिए क्या ये साइंस एलोपैथी में भी रह जाए, या किसी को शुगर हो गई उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, या किसी को घर में कोई बीमार है तो उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां हैं जो उसका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं अपनी जीवन पद्धति को सुधार के, अर्ली
1: बिल्कुल
0: टू बेड, अर्ली
1: बिल्कुल।
0: टू राइज,
1: तो ये
0: योगा,
1: हॉस्पिटल
0: खान
1: और
0: पान,
1: मॉल
0: सब
1: में ये
0: कुछ।
1: फ़र्क है कि मॉल जो है वो खुलने के बाद ये अपेक्षा करते हैं कि वो ग्राहकों से भर जाए, और हॉस्पिटल का जो उसकी जो स्थापना है वो इसी उद्देश्य से होती है कि हॉस्पिटल एक दिन खाली हो जाए, लोग बीमारी ना पड़े।
0: शहर
1: तो
0: स्वस्थ रहे।
1: सबसे अच्छी स्थिति यही हो सकती है किसी भी हॉस्पिटल के लिए कि उसमें एडमिशंस ना के बराबर हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं, क्योंकि तू डाल डाल मैं पात पात बीमारियां जो है वो नई नई आ जाती हैं और आदमी से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। तो सर इस पर हम और बातचीत करेंगे थोड़ी सी, और अब एक गाना और हमारे दोस्तों के लिए आपकी तरफ से हो जाए।
0: हाँ, मैं जीवन की तीन फिलॉसफी मेरी WWW यानी वर्शिप, वर्क एंड वॉक, पूजा करें, काम करें, चलते रहें, मैं हमेशा रुकना नहीं चाहता, तो इसी से जुड़ा हुआ गाना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में। आज हमारे विशेष अतिथि हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार आसेरी, कुलगुरु मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर। के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये होने जा रहा है विश्वविद्यालय, और आप इसके फाउंडर हैं, तो इस तरह से आप बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और आश्वस्त भी किया है कि ये तय समय में अपने सारे जो माइलस्टोन्स है वो कंप्लीट करती जाएंगी यूनिवर्सिटी। और आपने जैसे एक चीज़ और बताई सर कि आप जोधपुर के ही हैं और अधिकांश समय आपने जोधपुर में ही काम किया है, तो जोधपुर का आज स्थापना दिवस भी है सर
2: जी। आपको तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई
1: शुभकामनाएं। आपको
2: शुभकामनाएं।
1: जोधपुर शहर आपको बेशक पसंद ही आता होगा, तभी आपने यही काम करना पसंद किया है।
2: बहुत पसंद है बिल्कुल
1: जी।
2: पहले हम जैसे जोधपुर जब 1970 में आ गए, 76 में आ गए थे।
1: अच्छा।
2: उससे पहले फादर जब जॉब करते थे तो जहाँ उनकी नौकरी लगती थी तो आसपास गांव में।
1: अच्छा, मतलब आप मूलतः जोधपुर के ही हैं।
2: हाँ,
1: लेकिन काम के सिलसिले में आप बाहर जाते रहे।
2: नहीं, फादर की जहाँ पोस्टिंग होती थी वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे
1: जी, जी, जी।
2: तो कभी पाली ट्रांसफर, कभी जालोर, कभी कहीं, तो हम गए। जब 76 में मैं आ गया आए तो उन्होंने कहा नहीं अब इनको मेडिकल में जाना है, तो अब हमारी फैमिली को यहीं शिफ्ट कर दिया। उसके बाद 1976 से मैं यहीं हूँ।
1: बिल्कुल।
2: बहुत अच्छा लगता है जोधपुर में घूमना, गलियों में घूमना, मुख्य तौर से सिटी के अंदर जो अब ब्लू सिटी के नाम से विख्यात भी हो रहा है। कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनको घुमाने ले जाते हैं, तुलजी का धालरा, घंटाघर, बड़ा अच्छा लगता है। और ख़ास तौर से खान पान, यहाँ की मिठाई, नमकीन, सभी की यही डिमांड रहती है कि भेज दिया जाए।
1: ये बात तो सही है, लेकिन एक चीज़ है कि डॉक्टर होने के नाते आप कॉशन के साथ में खाने की सलाह देते होंगे।
2: बिल्कुल,
1: कि भाई जैसे मिर्ची बड़ा है जोधपुर का, अपने आप में ये एक मैं कहूँगा ब्रांड एम्बेसडर है जोधपुर का, जैसे मेहरानगढ़ ब्रांड एम्बेसडर है वैसे खान पान के मामले में मिर्ची बड़ा हुआ। लेकिन मिर्ची बड़ा एक डॉक्टर होने के नाते आप कहेंगे कि भाई आपको थोड़ा सा संयम के साथ
2: इस्तेमाल करना है। रोज नहीं खाएं, कभी कभी खाएं,
1: कभी कभी खाएं,
2: और मिर्ची बड़ा खाएं तो एक रोटी कम कर दें। बैलेंस लाइफ में जरूरी है, चाहे खान पान हो या सोना हो।
1: बिल्कुल सही है। और स्वास्थ्य के लिए भी सर बैलेंस्ड जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत जरूरी है।
2: बहुत जरूरी, संयमित आहार, संयमित जीवनचर्या, योग अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। मेडिटेशन भी करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जैसा आज आपने कहा कि वाकाथॉन, ये एक बड़ा अच्छा
1: कंसेप्ट है। हमें लगा कि रोज करना चाहिए,
2: डेली
1: करने से लगा कि रोज करना चाहिए,
2: सभी को करना चाहिए। आप विदेशों में जाएंगे, यूरोपियन कंट्री, मेरी बेटी रहती है तो वहाँ देखा मैंने 70-80 साल के व्यक्ति भी साइकिल चला रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं और फिट है। ये बड़ा राज है। हमें साइकिल का प्रयोग मुझे लगता है अगर ज़्यादा करना चाहिए, इसे प्रमोट करना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर तक ही जाना है तो पैदल जाए या साइकिल पे जाए, उसके लिए ये पेट्रोल या स्कूटी टाइप ना लें। इससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, सड़कों पर अनावश्यक भीड़ नहीं होगी, और सबसे अच्छा उसका स्वास्थ्य रहेगा, खुद के लिए अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल, साइकिल चलाने की जगहें थोड़ी सी कम हो गई है सर, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं तो साइकिल कहाँ चलाई जाए। लेकिन शहर में फिर भी कोशिश की जा सकती है, और अगर साइकिल चलाने वाले इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स बन जाएं जो

0: प्रेशर डाले हमारे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पे, तो इस तरह के डेडिकेटेड जो लेन्स हैं वो बन सकती है जहाँ केवल और केवल साइकिल चले,
1: बिल्कुल
0: इस तरह की
1: बाहर
0: चीजें
1: यूरोप
0: होनी
1: में है
0: चाहिए,
1: ऐसा,
0: है
1: साइकिल
0: इस
1: पाथ
0: तरह
1: बने
0: की।
1: हुए हैं।
0: जी
1: अगर यहाँ भी बन जाए, साइकिल प्रमोट करने से मुझे नहीं लगता एक भी नुकसान है।
0: बिल्कुल
1: खास तौर से स्टूडेंट्स जो कॉलेज आसपास अगर हैं वो साइकिल पे जाए या पैदल जाए तो सब तरफ से सही रहेगा।
0: बिल्कुल, जो जीवन है वो किस तरह से फुल सर्कल में चलता है कि जब हम पैदल चलते थे और हमारे पास आवागमन के साधन नहीं होते थे, फिर साइकिल का आविष्कार हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही गेम चेंजर साबित हुआ,
1: बिल्कुल
0: और फिर हम आए मतलब जैसे इंजन की तरफ, और उसके बाद सारी चीज़ें हुई, और अब हम पुनः साइकिल से होते हुए पैदल चलने के फायदों पर बात कर रहे हैं। तो एक तरह से जीवन जो है वो पूरा एक चक्र चलता है।
1: बिल्कुल चल रहा है।
0: आप सर देश दुनिया घूम चुके हैं,
1: हाँ कुछ
0: और बिल्कुल
1: कुछ कंट्री देखा, ज्यादा तो नहीं।
0: ज्यादा नहीं, तो फिर इच्छा होती है आपकी, क्योंकि आप महत्वपूर्ण पद पे होते हैं और आपके पास निर्णय का, नीति बनाने का अधिकार होता है, आपकी बात को सुना जाता है, तो कुछ ऐसा मन में है जो आपको लगता है कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के संदर्भ में कुछ ऐसा करना चाहिए जो बिल्कुल अलग हो? कुछ तो आपने हिंट्स दिए भी हैं कि आप इसको एक रोल मॉडल की तरह बनाना चाहते हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन जो वैश्विक स्तर पर जो बहुत हम जिसे कहते हैं कि माने हुए चिकित्सा विज्ञान के संस्थान हैं, उनकी टक्कर का आप बनाना चाहते हैं, और आपके
1: बिल्कुल
0: ध्यान में क्या है ऐसी, मतलब जिसको अमूर्त रूप से कहें कि ये आपके ध्यान में है?
1: बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत हो, अब जो विश्वविद्यालय बन रहे हैं जो बनेंगे हमें उसको ध्यान में रखते हैं कि एक विकसित देश का मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी होना चाहिए, उन मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये जयपुर से बढ़िया बने या कर्नाटक से बढ़िया, हमें ये देखना चाहिए हमारा कॉम्पिटिशन हो, ऑक्सफोर्ड से हो, कैम्ब्रिज से हो, स्टैनफोर्ड से, उनका स्तर हो। हम मैं ये जरूर चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में भी बाहर के स्टूडेंट आके यहाँ पढ़ाई करें। ये मेरा ड्रीम है कि इस विश्वविद्यालय
0: बिल्कुल
1: में बने बाहर के स्टूडेंट, जैसे हमारे स्टूडेंट बाहर जाते हैं, तो क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो उन्हें भारत की मेडिकल ग्रोथ के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा। सबसे बड़ी बात, पेशेंट लोड हमारे राजस्थान भारत में इतना ज़्यादा है कि दुनिया में कहीं नहीं है। हजारों MDM हॉस्पिटल है, ऐसे में हजारों में डेली पेशेंट आते हैं। इतने पेशेंट अगर बाहर से यहाँ आएंगे तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे, एक अच्छा अनुभव रहेगा और मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा। अगर बाहर से पढ़ने आएंगे तो नेचुरली कुछ इलाज कराने भी जब उनको पता चलेगा, क्योंकि इंडिया का इलाज बहुत सस्ता है यूरोपियन या अमेरिकन कंट्री के कंपेरिजन में, तो वो यहाँ आएंगे तो इलाज भी करेंगे तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा, भारत की आय भी बढ़ेगी।
0: जी, आपने कहा कि सस्ता इलाज है, लेकिन क्या वो विश्व स्तरीय या फिर गुणवत्ता वाला इलाज भी है सस्ता होने के साथ में?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप दिल्ली या ऐसे कई हैं जयपुर में मिलेंगे जो विदेशों से आके अपने यहाँ पर्टिकुलरली जॉइंट रिप्लेसमेंट या
0: जी
1: हार्ट सर्जरी करवाते हैं, जयपुर है, बेंगलोर है, दिल्ली है, मुंबई है, बाहर से आते हैं, क्योंकि बाहर वेटिंग लिस्ट बहुत, जो कोल्ड केसेज होते हैं जैसे किसी को घुटना बदलवाना है, जोड़ बदलवाना है, वहाँ 6-6 महीने बाद नंबर आता है, यहाँ उनके कंपेरिजन में मेरे ख्याल से 10 गुना सस्ता होगा।
0: जी इसका क्या कारण हो सकता है सर? क्योंकि पेशेंट लोड वहाँ उतना नहीं है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन यहाँ पर
1: वाह,
0: पेशेंट लोड भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम लोग मतलब उस तरह की वेटिंग नहीं रखते हैं,
1: हाँ हम यहाँ डॉक्टर्स काम बहुत ज़्यादा करते हैं।
0: काम
1: बाहर
0: ज़्यादा
1: आपका
0: करते
1: देखा
0: हैं।
1: होगा कि हर
0: अच्छा
1: एक डॉक्टर जो है दिन में 10 मरीज देखने तो 10 ही देखने हैं। मैं यहाँ OPD में बैठता हूँ तो 300 मरीज देख लेता था, तो यहाँ
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बाहर किसी स्पेशलिस्ट को, सुपर स्पेशलिस्ट को बुला दिखाना इतना आसान नहीं है जितना भारत में है, राजस्थान में है। चिकित्सा सस्ता है, बाहर सभी इंश्योर्ड हैं, वो पैसे के बारे में सोचते नहीं है, हम जेब से खर्च करते हैं, इंश्योरेंस का भी इतना बहुत ज़्यादा चलन नहीं है, तो डॉक्टर्स भी बार्गेनिंग करते हैं, सस्ता भी कर देते हैं, गरीब का फ्री भी कर देते हैं, सस्ता भी करते हैं, चाहे कई बार वो प्राइवेट में भी आपने सुना होगा,
0: बिल्कुल।
1: काइंड हार्टेड रहते हैं और दे हेल्प द पुअर पेशेंट ऑल्सो।
0: जोधपुर में जो पेशेंट्स हैं वो अभी भी एक जैसे पुराना चलन था कि अहमदाबाद या फिर जयपुर या दिल्ली जाना है, तो उस तरह की मानसिकता परिवर्तित होने में कितना समय लगेगा? क्या वाकई में, चूंकि लोग अभी भी जाते हैं सर, पैसा खर्च भी करते हैं, वहाँ रहने का भी अलग खर्चा आता है, तो जोधपुर अब हम दावा कर सकते हैं कि हमारे पास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं, अभी भी लोग जाते हैं, तो ये जो माइंडसेट है ये चेंज होने में कितना समय आपके हिसाब से लगेगा?
1: पहले के कंपैरिजन में मेरे ख्याल से आधा भी नहीं है। मैं बताऊं, जैसे
0: घुटना चेंज करवाने का काम अब यहाँ आराम से हो रहा है, लोग करवा रहे हैं,
1: रोज के 10-15 रोज होते होंगे, तो वो सारे तो समझिए आप रुक गए, पहले होता ही नहीं थे, अब तो बहुत कम जा रहे हैं। और एक कुछ 10% से 20% दुनिया के हर चिकित्सालय से मरीज दूसरे जगह जाते हैं, अहमदाबाद से बॉम्बे जाते होंगे, बॉम्बे से बेंगलोर, बेंगलोर से

0: अहमदाबाद, जोधपुर से जयपुर, जयपुर से, एक चलन रहता है कुछ, ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है कि 10% मरीज अपना हॉस्पिटल या चिकित्सक चेंज कर ले, तो ये तो रहेगा 10 से 20%, लेकिन पहले की तुलना में आज जोधपुर में मेरे ख्याल से 40-50 ऑर्थोपेडिक सर्जरी डेली होती होगी, प्राइवेट में भी होती है, MDM में 15-20 हो जाती है, गांधी में हो जाती है 10, तो नेचुरली रुका तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे बहुत कम हो गया, लोगों को विश्वास भी है, इतने एम्स आया गया उसके बाद भी लगा कि नहीं यहाँ भी इलाज होगा, और यहाँ भी आप MDM हो या गांधी हो या एसएन मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल, एम्स में सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी, एंडोक्राइनोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रिक सर्जरी, हिमेटोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट आ गए, तो अब जरूरत नहीं है, मुझे लगता है नहीं पैसा खर्च करना चाहिए, यहाँ जोधपुर के चिकित्सालय पे विश्वास रख के इलाज कराना चाहिए।
1: जी, विश्वास तो ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बनती है, लेकिन अब उस धीरे में भी समय हो गया है और लोग अब विश्वास करेंगे, ऐसी उम्मीद है। और सर एक चीज है, जैसे कि वो चीज क्या वापस आप देख रहे हैं कि वापस आएगी, जैसे आपने कहा सुपर स्पेशलिटी हमारे पास आ गई है एंडोक्राइन में, तो लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं उसके पास सीधे चले जाते हैं। पहले जैसे आप मूवीज के शौकीन भी हैं, गाने भी सुनते हैं, तो पहले पिंचू कपूर अमूमन एक फैमिली डॉक्टर जैसा बन के आते थे।
0: हाँ।
1: उनके हाथ में एक बैग होता था और वो जो कोई अमीर खानदान की बहू होती थी तो उसके बारे में उसको टेस्ट करके कहते थे कि भाई हाँ मिठाई विठाई खिलाइए और आपके घर में खुशखबरी आने वाली है। तो ये डॉक्टर को दिखाने के पीछे इतना ही होता था। अब डॉक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है। आप मानते हैं कि किसी भी आदमी को सबसे पहले अपने इलाज करवाने के लिए सीधे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की बजाय किसी फैमिली डॉक्टर पिंचू कपूर के पास जाना चाहिए ताकि वो आगे गाइड करे कि आप वहां जाइए?
0: जी, पूरी दुनिया में फैमिली डॉक्टर,
1: पूरी MBBS हमारे यहाँ, लेकिन नहीं है इस तरह से,
0: सीधा लोग करते हैं, वो मुझे लगता है सही नहीं है। जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए, अगर वहाँ ठीक हो जाए तो ठीक है, वो ओवरलोडेड भी नहीं होंगे। किसी भी सुपर स्पेशलिटी में 2 डॉक्टर 10 डॉक्टर होंगे शहर में, लेकिन फिजिशियन तो 500 है।
1: बिल्कुल, और तो सर 50% या कम से कम 30-35% तो बीमारी का इलाज वो खुद ही कर देंगे।
0: नहीं, ज्यादातर बीमारियां मौसमी बीमारियां होती है, सर्दी में सर्दी जुकाम, फिर निमोनिया, गर्मी में लूज मोशन टाइप, इस तरह की जो बीमारियां, या कहीं गिर गए, छोटी मोटी स्प्रेन हो गया, तो वो ठीक हो सकती है
1: जी। उसके लिए आपको वेट करने की और सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
0: पूरी दुनिया में यही है, चाहे यूरोप में जाओ तो वहां भी एक इमरजेंसी में एक MBBS डॉक्टर रहते हैं, उनको देखते हैं, उनको लगता है तो एक्सरे करवा के या जो भी इन्वेस्टिगेशन करा के आगे रेफर कर देते हैं।
1: तो मतलब ये है कि जैसे किसी को मोच लग गई है और वो ये करे कि भाई मैं घंटों लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करके फिर डॉक्टर महेंद्र कुमार आसरी के पास जाऊं, इससे अच्छा है कि फैमिली डॉक्टर के पास जाकर के और कोई मसल रिलैक्सेंट जो है वो लगा के और मैं ठीक हो सकता हूं।
0: जो भी डॉक्टर, वो भी MBBS तो है ही है, उसको सभी सब्जेक्ट का ज्ञान है
1: जी,
0: या कई बार वो फैमिली फिजिशियन वो MD भी होते हैं, कुछ MS भी होते हैं जो ये करते हैं, तो मुझे लगता है एक फैमिली फिजिशियन से उसको राहत मिलती है और वो सही गाइड करेगा। गलत, जैसे मरीज को तो पता नहीं ना कि एंडोक्राइनो में जाना है या गैस्ट्रो में जाना है, तो वो कम से कम एक सही भी तो बताएगा, आपको इस डॉक्टर से संपर्क करना चाहेगा, इससे उसका समय बचेगा, जल्दी ठीक होगा।
1: बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया सर कहेंगे। और आखिर में इस प्रोग्राम में जाते जाते आप हमारे दोस्तों के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं, बेहतर जीवन, स्वस्थ जीवन किस तरह से हम पा सकते हैं उसका?
0: बिल्कुल, सबसे लाइफ में जो एक अनुशासित जिंदगी रहे, संयमित रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 24 घंटे अनुशासन एंजॉय भी करें, उतना ही जरूरी है, स्ट्रेस फ्री, जो आजकल आप बहुत बड़ा है कि स्ट्रेस में रहते हैं, काम का स्ट्रेस, घर का, फैमिली लोड, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये एक हद तक तो रखें, कुछ ऊपर वाले पे भी छोड़ दें।
1: बिल्कुल,
0: कि वो मदद करेंगे।
1: पहले के जमाने में EMI नहीं होती थी, अब EMI का भी स्ट्रेस है।
0: हाँ,
1: लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो ऊपर वाले
0: पे भी छोड़ दें, जब देखें कि अब कुछ भी नहीं है तो अपनी तरफ से बेस्ट करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बी पॉजिटिव, वर्शिप, वॉक एंड वर्क, हमेशा चलते रहें, काम करते
1: आपके
0: रहें।
1: जो 3 W हैं वो काम आते हैं।
0: बिल्कुल, उसके ऊपर श्रद्धा रखें, विश्वास भी नहीं, श्रद्धा रखें उस पर, काम करते रहें, निरंतर चलते रहेंगे। अगर आप बैठ गए तो आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी, घुटने भी खराब होंगे, सब कुछ, मोटापा भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आए, तो चलते रहें, काम करते रहें,
1: कभी कभार, कभी कभार मिर्ची बड़ा खाएं।
0: हाँ,
1: जोधपुर की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में इस बार इतना ही, अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत,
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ओपन शो, बातें, मुलाकातें, गीत।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: सेंसिटी चैनल है FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन का रेडियो।

नमस्कार श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम मन का रेडियो, जहां हम बात करते हैं उन एहसासों की जो अक्सर शब्द नहीं ढूंढ पाते। और आज इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं, कविता सांखला। श्रोताओं, आज का सवाल मैं आपसे पूछूं कि आखिर हमारा मन जो है इतना सोचता क्यों है? कभी फ्यूचर की टेंशन, तो कभी पास्ट की यादें, कभी किसी एक छोटी सी बात दिल में अटक जाती है, तो कभी बिना वजह ही मन भारी हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं है। आज पूरे एक घंटे तक हम बात करेंगे इन्हीं मन की हलचल, ओवरथिंकिंग, अकेलापन, सपने, डर और उन छोटी छोटी खुशियों की जो हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है। तो चलिए पहले एक सुन लेते हैं प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, मन का रेडियो प्रोग्राम चल रहा है आकाशवाणी जोधपुर के FM सेंसिटी चैनल पर। और श्रोताओं, प्रोग्राम मन का रेडियो में हम बात करते हैं हमारे मन की, तो क्यों ना आज थोड़ी सी बात जोधपुर के मन की भी कर ली जाए। क्यों? क्योंकि श्रोताओं, आज जोधपुर का 568वां स्थापना दिवस है। जोधपुर मना रहा है अपना 568

66वां जन्म दिवस यानी आज ही के दिन 12 मई सन 1459 में जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। तो श्रोताओं, हमारे जोधपुर का मन क्या चाहता है, क्या कहता है हमसे हमारा जोधपुर? जी हाँ, जो श्रोताओं, सभी जोधपुर वासियों से जोधपुर की क्या आशा है, क्या हमने ये सोचा? तो श्रोताओं, हमारा जोधपुर हम सभी से बस यही आशा रखता है कि हम सभी मिलकर इस शहर को स्वच्छ बनाए रखें, सुव्यवस्थित बनाए रखें, प्रशासन की कमियों को ना देखते हुए उसे नजरअंदाज करते हुए खुद ही आगे आए हमारे शहर के विकास में। जी हाँ श्रोताओं, अगर ज्यादा नहीं तो बस अपने आसपास के क्षेत्र को हम स्वच्छ रख सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं और साथ ही पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जोधपुर की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी रक्षा हम कर सकते हैं। और जोधपुर की अपनायत, जो कि जोधपुर की सबसे बड़ी खासियत है या फिर हम इसे जोधपुर की एक विशेषता भी कह सकते हैं, इस अपनायत को हम बनाए रखें, इसका प्रेम हम बनाए रख सकते हैं, जिसे बनाए रखने की आशा जोधपुर हमसे करता है। तो श्रोताओं, आज के मन के रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं जोधपुर की मन की बात आपसे शेयर कर रही हूँ और आशा है कि हम सभी मिलकर हमारे जोधपुर को ये खुशी दे पाएंगे।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन, पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: श्रोताओं, जोधपुर के मन की बात तो हमने सुन ली, लेकिन आपका मन क्या चाहता है? तो श्रोताओं, मन भी बहुत अजीब सी चीज है। जब सब कुछ मिल जाए तब भी कुछ कमी महसूस होती है, और कभी तो एक छोटी सी तारीफ हमारा पूरा दिन अच्छा बना देती है। शायद मन जो है वो परफेक्शन नहीं चाहता है, बस समझा जाना चाहता है कि कोई हमें समझे। श्रोताओं, कभी आपने नोटिस किया है कि हम सब बाहर से तो स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं बस कोई ऐसा चाहिए होता है कि जो हमसे ये पूछे कि तू ठीक तो है ना। और मजेदार बात पता है क्या है अब दोस्तों, कई बार हम खुद से भी ये सवाल नहीं पूछते हैं। अगर इस वक्त आपके मन में भी बहुत शोर चल रहा है, बहुत हलचल चल रही है, तो थोड़ा सा रुक जाइए और एक बार खुद से पूछिए कि मैं सच में कैसा महसूस कर रहा हूं, मैं ठीक तो हूं।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल पर कार्यक्रम चल रहा है मन का रेडियो, और इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हमारे मन से जुड़ी। तो चलिए आगे की कड़ी में हम मन से जुड़ी एक बात बताते हैं, वो है ओवरथिंकिंग, जो कि आज की जनरेशन का सबसे कॉमन साथी बना हुआ है। आधी रात को भी पुरानी बातें याद आना, काश मैंने ऐसा कहा होता, अगर ऐसा हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये सभी बातें आधी रात तक भी हमारे माइंड में चलती रहती है। और फिर हमारा माइंड एक ऐसी मूवी चलाता है जिसका डायरेक्टर भी वही होता है और ऑडियंस भी वही होता है। लेकिन दोस्तों, हर सोच सच नहीं होती, कभी कभी हमारा मन डर को रियलिटी बना देता है। लेकिन याद रखिए, हर चीज का जवाब तुरंत मिलना ये जरूरी नहीं होता, कुछ सवालों को समय पर छोड़ देना भी जरूरी होता है। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं ना, तो आज रात एक काम कीजिए, जो आपकी पसंदीदा चीज है ना, जिसे सुबह उठते ही आपको देखना जरूरी होता है और रात को सोने से पहले उसको देखे बिना आपको नींद नहीं आती, यानी कि आपका फोन, जी हाँ, उससे थोड़ी दूरी बना लीजिए। आपकी मन को भी तसल्ली मिलेगी और साथ ही जुड़ जाइए हमारे एफएम सेंसिटिव चैनल से, जो आपको प्यारे प्यारे गीतों के माध्यम से आप तक, आपकी दिल तक पहुंच जाएगा।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी

श्रोताओं, मन के रेडियो कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं हमारे मन की, क्या सोचता है हमारा मन बैठे बैठे अकेले अकेले में। कुछ न कुछ तो उसके मन अंदर चलता ही रहता है। अकेलापन, अकेलापन सिर्फ श्रोताओं अकेले रहने का नाम नहीं है। कई बार लोग साथ होते हैं फिर भी दिल खाली लगता है, कुछ अधूरा सा लगता है। सोशल मीडिया पर सबकी लाइफ परफेक्ट लगती है, पर ये बात सच नहीं है। सच तो ये है कि हर इंसान अंदर से किसी ना किसी लड़ाई से गुजर ही रहा होता है। श्रोताओं, कभी कभी खुद का साथ सीखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है ना, तब अकेलापन धीरे धीरे सुकून बन जाता है। और खुद के अकेलेपन को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम उपाय खुद की चाह होना है। अगर हम चाहेंगे ना, तभी हमारा अकेलापन दूर हो सकता है। आइडियाज तो बहुत सारे कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन यदि हमारा मन चाहेगा ना, तभी ये सच हो पाएगा। अकेलापन दूर हम कैसे कर सकते हैं? किताबें, ये सबसे अच्छी साथी है हमारे अकेलेपन को दूर करने की, और सबसे उत्तम स्रोत है हमारा FM सेंसिटिव चैनल, जो हमेशा आपके साथ रहता है। प्यारे प्यारे गीतों के माध्यम से, नई नई जानकारियों के माध्यम से आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए। इसके अलावा स्वच्छता बनाकर, अपने आसपास किसी की मदद करके भी आप अपने अकेलेपन को दूर रख सकते हैं। और यदि आप किसी की मदद करेंगे तो मन में जो खुशी होगी ना, उसका तो कोई जवाब नहीं। और साथ ही जिसकी मदद आप करेंगे उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा। साथ ही ईश्वर की आराधना करके भी आप अपने आप को अकेलेपन से दूर कर सकते हैं।

पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

श्रोताओं, हर इंसान के अंदर कुछ सपने होते हैं और इन्हीं सपनों के साथ डर भी चलता रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। लेकिन श्रोताओं, जरा सोचिए, अगर इस डर की वजह से कोशिश ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम ये काम कर सकते थे या फिर नहीं। हमारी एबिलिटी हमें पता ही नहीं चलेगी। श्रोताओ, सपनों का रास्ता आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं होता है। सबसे खूबसूरत स्टोरीज भी वही बनती हैं जहां पर मुश्किलें आती हैं। तो इन मुश्किलों से घबराइए नहीं, अपने मन को समझाइए कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। और आप वो काम कर पाएंगे। गीता में भी लिखा है ना श्रोताओं, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।

श्रोताओं, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हमारा जो मन है ना, वो छोटी से छोटी खुशियों को भी अपना लेता है। कभी बारिश की खुशबू, तो कभी पुराने गाने, कभी किसी अपने का अचानक से मैसेज आ जाना। ये छोटी छोटी चीजें ही तो है श्रोताओं, जो जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। लेकिन हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते रहते हैं और ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज एक काम करते हैं, दिन की सिर्फ 3 अच्छी बातें याद रखते हैं, जो हमारे जिंदगी में आज तक की 3 अच्छी बातें हुई है, जो हमारी अच्छी यादें हैं, आज सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही याद करेंगे। देखिएगा, ये जो मन है ना, बहुत खुश हो जाएगा और इसकी खुशी से ही हमारे अंदर सकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो जाएंगे।

श्रोताओं, कभी कभी सबसे जरूरी बातचीत खुद से करनी चाहिए। हम सब दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को सुनना भूल जाते हैं। अगर आपका मन थका हुआ है ना, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। हर समय स्ट्रांग रहना जरूरी नहीं होता। मन हमारा समुद्र की तरह है, ऊपर से शांत अगर दिखाई दे तो जरूरी नहीं कि अंदर तूफान ना हो। इसलिए खुद के लिए थोड़ा नरम बनिए और दूसरों के लिए थोड़ा दयालु, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा जरूरी नहीं कि वो अंदर से खुश भी हो।

श्रोताओं, अगर आज की किसी भी बात ने यदि आपका दिल छुआ हो तो याद रखिए, आपकी फीलिंग्स मायने रखती है। अपने मन की आवाज को दबाइए मत, उसे समझिए। और फिलहाल मन के रेडियो कार्यक्रम को समाप्त करने की कविता सांखला को अनुमति दीजिए। इस गर्मी में अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी जरूर ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन का रेडियो। ये आकाशवाणी जोधपुर की विज्ञापन प्रसारण सेवा का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी

स्वामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में

0: बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यूनिंग किया है एफएम सनसिटी चैनल 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। श्रोताओं, अब राष्ट्रीय प्रसारण सेवा विविध भारती के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के कार्यक्रम यादों की महफिल में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और उषा मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ।

0: टैक्सी चोर फिल्म का ये गाना था। इसी गाने के साथ शुरुआत हुई आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की। किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। अनजान ने इस गाने को लिखा था, बप्पी लहरी का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। साथियों, बॉलीवुड गानों में हवाओं, पवन और फिजाओं का जिक्र बड़ी ही खूबसूरती से किया गया है, जो अक्सर रोमांस, उदासी या मौसम के मिजाज को दर्शाता है। तो आज हवाओं का जिक्र करने वाले कुछ प्यारे से गीतों को हमने शामिल किया है यादों की महफिल कार्यक्रम में। चलिए बढ़ते हैं लता मंगेशकर की आवाज की ओर।

0: संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने। चलिए अब हम भी हवा के साथ साथ आगे बढ़ते हैं।
1: अरे अरे ए,

सीता और गीता फिल्म से ये दो गाना आपने सुना। किशोर कुमार और आशा भोसले के जुगल स्वर थे, आनंद बख्शी की रचना थी, राहुल देव बर्मन का संगीत। साथियों, हवाओं का जिक्र करते गीत हर दौर में लिखे गए हैं। हर दौर के गीत की जो हवाओं का जिक्र करते गीत हैं उनकी अपनी ही कहानी है। अब ये गीत कौन सी कहानी कह रहा है, आइए सुने।

शंकर जय किशन के संगीत से सजा ये गाना रमेश शास्त्री ने लिखा था, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था बरसात। साथियों, ठंडी हवाएं और इंतजार, इनका रिश्ता भी बड़ा पुराना है। ठंडी हवाएं और इंतजार गीतों में जब ढलते हैं तो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं।

0: नौजवान फिल्म से ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। हवा का जिक्र करते कुछ और सुरीले गानों के साथ हाजिर होते हैं अभी, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा।

0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे शैलेंद्र की रचना, एस एन त्रिपाठी का संगीत, फिल्म का नाम था संगीत सम्राट तानसेन। अब बढ़ते हैं आशा भोसले की आवाज की ओर। रवि का संगीत, शकील बदायूनी के बोल, फिल्म का नाम दो बदन।

तो आपने ये गाना सुना आशा भोसले की आवाज में, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत और फिल्म थी दो बदन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज का ये कार्यक्रम सजा है हवाओं का जिक्र करते कुछ सुरीले गानों के साथ।

शांतनु मोइत्रा का संगीत आप सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे के बोल शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजें थी और अब हम बढ़ेंगे लता मंगेशकर की आवाज।

0: लिबास फिल्म से ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज है अगले गाने में, उस गाने को हम और आप सुनेंगे साथ साथ, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार,
2: हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
1: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर,
2: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
1: 18 मई शाम 7:45 पर।
0: तो चलिए अब उस गाने की ओर बढ़ते हैं जिसमें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है।

हाथी मेरे साथी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आखिरी गाने की बारी। तो भाई हवाओं का जिक्र करता ये गीत है और ये गीत ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता। हेमंत कुमार का संगीत, गुलजार की रचना, किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम दो दुनी चार।

तो साथियों, दो दुनी चार फिल्म का ये गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप बने रहिए विविध भारती के साथ, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, सुरीला सफर कार्यक्रम में हम रोजाना एक टेक्स्ट, एक इबारत पोस्ट करते हैं और उसी में से कुछ शब्द चुनते हैं और उन्हीं शब्दों के आसपास घूमते हैं कुछ गाने जो हम आप तक पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज का टेक्स्ट

तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं वो टेक्स्ट आपको फिर से पढ़कर बताती हूं। तो आज का टेक्स्ट है, आज की इबारत है, शाम की नरम चादर में जब रात अपने ख्वाब बुनती है तो आसमान पर टिमटिमाते तारे जैसे मोहब्बत के अफसाने लिखते हैं। चांद अपनी ठंडी रोशनी से दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है।

दिल के अंधेरों को सहलाता है और सूरज हर सुबह ये एहसास दिलाता है कि उम्मीद अब भी जिंदा है। इंसान सारी उम्र मोहब्बत, ख्वाब और सुकून की तलाश में भटकता रहता है, मगर जमाना अक्सर उसे अपने उसूलों में बांध देता है। फिर भी इस दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई यही है कि एक सच्चा दिल हर अंधेरी रात के बाद अपने लिए नया आसमान खोज ही लेता है। तो भाई ये तो था आज का टेक्स्ट और इसी में से कुछ शब्द हैं, और वैसे शब्द तो आपने ढूंढ ही लिए हैं और गानों के भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की पंक्तियां जीवन के अनवरत संघर्ष, प्रेम और आशा के बीच संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। तारों की टिमटिमाहट में छिपी मोहब्बत और चांद की शीतलता से अंधेरे को सहलाने का रूपक दिल के गहरे जख्मों पर मरहम जैसा सुकून देता है। और आगे लिखा है, सबसे मार्मिक बात यह है कि दुनिया की हकीकत इंसान को थका देती है, लेकिन सूरज की हर सुबह ये यकीन दिलाती है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, उम्मीद की किरण कभी नहीं बुझती। आज शब्दों के माध्यम से रचा गया एक ऐसा सुकून भरा मंजर है जो तारों की छांव में जीने और सूरज की रोशनी में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है। इन्होंने शब्द भी लिखकर भेजे हैं, शाम रात आसमान ख्वाब उम्मीद चांद टिमटिमाते तारे और सूरज। तो वैसे मैंने कहा ना कि शब्दों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं आप लोग।

कुछ और कमेंट हैं जिनमें बहुत ही बेहतरीन हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। बड़े सुकून से लिखा है आपने ये कमेंट। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वक्त की बहती नदी में जब यादों के दीप जलते हैं तो तन्हाई की खामोशी भी एक सुरीली नज्म सी लगने लगती है। सर्द रातों में ओस की बूंदे जैसे जमीन के कानों में सुकून के किस्से सुनाती है और ढलता हुआ सूरज जाते जाते ये वादा कर जाता है कि हर ढलती शाम एक नई शुरुआत की दहलीज होती है। वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरती से लिखा है आपने। आगे लिखा है कि इंसान अक्सर मंजिलों के शोर में रास्तों की खूबसूरती भूल जाता है और दुनिया की बंदिशों में अपने अरमानों को कैद कर लेता है, मगर हकीकत तो यही है कि जिस दिल में हौसलों की चमक और प्यार की गर्माहट होती है वो मुश्किलों की पथरीली जमीन को चीर कर भी अपनी खुशियों का गुलशन खिला ही लेता है। बहुत खूब। सच में साथियों, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि दिल अगर सच्चा हो तो मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तो भाई अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, यादों को मुस्कुरा के महसूस कीजिए और अगर कोई अपना दूर है तो चांद को देखकर उसे याद कर लीजिए, क्योंकि साथियों कुछ रिश्ते आवाजों से नहीं एहसासों से जिंदा रहते हैं। एक और कमेंट हमारे पास आया है कि सूरज और चंद्रमा केवल आकाशीय पिंड नहीं हैं, ये प्रकृति और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। कहीं ये जीवन की ऊर्जा, भावनाओं, समय और सौंदर्य के प्रतीक हैं। सूर्य को आत्मा का भी प्रतीक माना गया है जो आत्मविश्वास और यश प्रदान करता है, वहीं चंद्रमा को मन की शीतलता और शांति का और प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो भाई जब मोहब्बत सच बात है कि मोहब्बत न होती, प्यार मोहब्बत न होती, प्रेम न होता तो कुछ भी न होता। चांद, तारे, फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, साथियों ये झरने, नदियाँ कुदरत की सौगातें हैं, हमारे भीतर जीने की उम्मीद जगाती हैं। ये सच में हमें मोहब्बत है इनसे, अगर ये न होते तो ये जहाँ ही न होता। चलिए अब बात चल रही है प्यार मोहब्बत की, तो मोहब्बत का जिक्र करता एक गाना सुनते हैं और देखते हैं कि किस किस की पसंद मिलती है हमसे। वैसे अभी तक इस गाने का जिक्र मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया आपके इस कमेंट्स में।

आशा जी के गाए इस गाने के साथ हमने शुरुआत की आज के इस कार्यक्रम की। फिल्म का नाम था ये रात फिर न आएगी। बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि ये कम सुना गाना है। जी हाँ, ये आपने कम सुना है लेकिन बेहतरीन गाना है। और एक साथी लिखते हैं कि शानदार गीत है, कम सुना है फिल्म ये रात फिर न आएगी। और आशा जी की गायकी का तो अंदाज ही अलग है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि चांद जब भी आसमान में आता है तो सुनहरे सपने साथ मिलाता है, रात में सपनों के आगोश में गहरी नींद लेते हैं, सुबह की लाली पहनकर जब सूरज निकलता है तो सब सपने वास्तव लगते हैं। तो वहीं दूसरे साथी लिखते हैं कि आपने शाम की बात का जिक्र किया है, सच में शाम एक ऐसा वक्त है जहां उम्मीद खत्म होती है तो सुबह वो पल है जो हर एक उम्मीद का एक नया पल एक वक्त लेकर आती है, एक सुनहरी किरण के साथ सुबह के साथ। और एक साथी स्नेहिल नमस्कार के साथ लिखते हैं कि शब्दों को चुराकर गीतों में समा रहे हूं मैं, और शामे दिल की कसम आ भी जा, आसमान से आया फरिश्ता, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो मैंने कहा ना कि आप लोग भी गानों के कुछ कुछ करीब पहुंच चुके हैं। शब्दों को तो आपने ढूंढ लिया लेकिन गानों के बहुत करीब हैं। एक कमेंट में लिखते हैं कि हवा के धीमे झोंकों में जब यादें अपनी दस्तक देती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वक्त की किताब का कोई पुराना पन्ना फिर से मुस्कुरा उठा हो, ढलती शाम

0: अक्सर तन्हाई की सुर्खी ओढ़ लेती है, लेकिन वही तन्हाई हमें खुद से मिलने का मौका भी देती है। इंसान अक्सर मंजिलों की चाह में रास्तों के सुकून को भूल जाता है और जमाना उसे कामयाबियों के तराजू में तौलता रहता है, मगर हकीकत तो ये है कि दुनिया की भीड़ में खो जाने के बाद भी रूह की असली चमक वही पा सकता है जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर एक नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत गहरी और सच्ची बात आपने लिखी है कि टूटी हुई उम्मीदों को जोड़कर वो नई उड़ान भरने का हौसला रखता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। तो वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि सदियों से मानव जाति ने चंद्रमा को प्रेम और प्रेमियों से अटूट रूप से जोड़ रखा है। कहीं पर वो प्रेम करने वालों को आपस में एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में एक बात करने वाला साथी भी मानते हैं। वहीं एक साथ ही लिख रहे हैं कि आज की इबारत बड़ी दिलकश है। तो दूसरे साथी ने लिखा, आज शब्द गीतमाला में दोपहर में ही शाम रात और चांद की बात होगी तो शीतल चांदनी का अनुभव कराते हुए गाने इस चिलचिलाती धूप की तपिश में थोड़ा सुकून का एहसास जरूर कराएंगे। वैसे भी इतनी गर्मी है, गर्मियों में गाने बड़ा ही सुकून देते हैं साथियों। एक साथी ने ढेर सारे गानों की लिस्ट भेजी है हमारे पास। लिखते हैं, इबारत अनुरूप संभावित गाने हैं, टिम टिम तारों के बीच, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, चांद सी महबूबा हो, ठंडी हवाएं, गया अंधेरा हुआ उजाला, चमका सुबह का तारा, सच्चाई छुप नहीं सकती, वगैरह वगैरह। तो एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत दिल के अरमानों को ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है, शाम की रूमानी ख्याल रातों में अंगड़ाई लेती है, टिमटिमाते तारे चांद की ठंडक उन पर स्नेह की वर्षा करती है, सुबह जब ख्वाब टूटता है तो सूरज की रोशनी मानो पुकारती है, चलो अभी मंजिल दूर है, बहुत कुछ करना है, बहुत चलना है। ख्वाब और हकीकत का ताना बुना पर आधारित लाजवाब इबारत है, संगीत में सफर का इंतजार रहेगा। तो इंतजार खत्म हो चुका है।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 1:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की।
1: जी हाँ सखियों, किताबों की वो सौंधी सी खुशबू लेकर हाजिर हैं हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है नारी वाटिका। और आज की इस नारी वाटिका में हम हैं आपकी दो प्यारी सी सखियां। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
0: वंदना शर्मा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखियों, इस कार्यक्रम की थीम को तैयार किया है सफलता चारण ने। पूर्णिमा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर जो ये हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, इसकी वजह जान सकती हूँ मैं?
1: हाँ वरना तुम्हें पता है आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक दोस्त भी आई है।
0: नहीं पूर्णिमा, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा।
1: हाँ वो इसलिए क्योंकि वो दोस्त हमारे एहसासों में है, वो है हमारी किताबें जो बोलती नहीं है पर सब कुछ कह जाती है और जो हमें घर बैठे सदियों का सफर पर ले जाती है।
0: बिल्कुल पूर्णिमा, किसी ने सही कहा है, एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। कैसे पन्नों की ये दुनिया हमारी सोच, हमारे व्यक्तित्व को बदल कर रखती है, हमें पता ही नहीं चलता।
1: हाँ तो सखियों, किताबों की इस समुंदर में डूबने के लिए हो जाएं तैयार इस प्यारे से गीत के साथ।

0: किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने. हम सभी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं सखियों, लेकिन किताबें जो होती हैं वो सिर्फ कागज़ और शब्दों का संग्रह नहीं होती, ये है अनुभवों का खजाना. एक अच्छी किताब हमें हंसना भी सिखाती है और मुश्किल समय में रास्ता भी दिखाती है, और कई बार वो आत्मविश्वास देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है.
1: और कहते ना वरना कि जिस घर में किताबें रहती है वहाँ विचारों की रोशनी कभी कम नहीं होती. और हम आज बात करेंगे ऐसी प्रेरणादायक किताबों की जो हमारी सोच बदल सकती है, सपनों को नई उड़ान दे सकती है, हमारा जो जीवन है उसे बेहतर बनाने में हमारी बहुत मदद भी करती है.
0: और जो ये किताबें होती है ना पूर्णिमा, ये बिना किसी स्वार्थ के हमें सीख देती हैं, हमें एक नई दुनिया से मिलवाती हैं, नई सोच देती हैं और अंदर छुपी क्षमता को पहचानने में मदद करती हैं.
1: आज का जो हमारा टाइम है ना वो डिजिटल दौर हो चुका है, यहाँ पे मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारा आधा सा जो ज्यादा समय है उसमें चला जाता है. तो ये जो किताबें हैं हम वो हमें धैर्य, एकाग्रता और गहराई से सोचने की आदत सिखाती है.
0: बिल्कुल. और देखो ना, कई महान लोगों की सफलता के पीछे किताबों का ही बहुत बड़ा योगदान रहा है. चाहे हम बात करें स्वामी विवेकानंद की या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, सभी ने किताबों को अपना सबसे अच्छा मित्र माना है.
1: और अगर हम अपने जीवन में कुछ पॉजिटिव चेंज चाहते हैं तो हमें रोज कुछ मिनट किताबों के लिए जरूर निकालने चाहिए, क्योंकि एक अच्छी किताब कभी आपको समय बर्बाद नहीं करती है, वो हमेशा हमारा भविष्य बनाने में मदद करती है.
0: जी बिल्कुल.

0: सखियों, दोपहर का समय है या वही समय होता है जब हम बच्चों के आने का इंतजार करती हैं। एक माँ जब हाथों में किताब लेती है तो वो पूरे घर को संस्कारित करती है।
1: और वरना यही किताबें हमें भाषा सुधारने, अच्छे विचार अपनाना और धैर्य रखना सिखाती हैं। और जो बच्चे पढ़ने की आदत डालते हैं ना बचपन से, वे अक्सर पढ़ाई और जीवन दोनों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
0: अब हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन जैसी किताबें हमें सिखाती हैं कि बच्चों से संवाद कैसे किया जाए। जब हम उनके छोटे छोटे जज्बातों को समझने लगती हैं तो परवरिश एक बोझ नहीं लगती बल्कि एक आनंद बन जाती है।
1: और ऐसी ही भारतीय संस्कृति और की एक प्रसिद्ध किताब है जो कि प्रेरणादायक पुस्तक ही भी है बच्चों के लिए, वो है पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें जानवरों की रोचक कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा के और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाया जाता है। और इसके अंदर ये है कि जो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं तो उनको बहुत मजा भी आता है और साथ साथ उससे उनके अंदर अच्छे संस्कार, ईमानदारी की भावना, मित्रता, बुद्धिमानी और ये सारी जो महत्व है उनको वो समझते हैं। और ये जो पंचतंत्र की जो कहानियां है ना, वो बच्चों को सही और गलत के बीच का अंतर भी पहचानने में मदद करती है। और यही नहीं, कठिन जो परिस्थितियां होती हैं उसमें भी कैसे उनको निर्णय लेना है उसके अंदर वो डेवलप करती हैं।
0: बिल्कुल। और एक अंग्रेजी लेखिका जो जिन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन लिखी थी, जीके रॉलिंग, ये कहती हैं कि साहस और कठिन परिस्थितियों का सामना करना, इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि कैसे आप साहस और कठिन परिस्थितियां जब होती हैं तो हम उसका कैसे सामना कर सकते हैं। और सच्ची मित्रता, ईमानदारी और आत्मविश्वास जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पुस्तक बच्चों की कल्पना शक्ति को नई उड़ान देती है और उन्हें जादुई दुनिया के रोमांच से जोड़कर पढ़ने में रुचि पैदा करती है। साथ ही यह सिखाती है कि मुश्किल समय में डरने की बजाय हिम्मत और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। यही कारण है कि यह किताब बच्चों और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हुई और उन्हें सकारात्मक सोच व अच्छे मूल्यों की प्रेरणा भी देने लगी। और मेरे को लगता है पूर्णिमा, जो ये किताबें हैं और ये जो कहानियां होती है ना, ये सबसे अच्छा माध्यम है बच्चों को कोई भी चीज समझाने का, उनके अंदर अच्छे मूल्य पैदा करने का।
1: और ये बच्चों को बिजी भी रखती है। जब बच्चे फ्री होते हैं, खाली होते हैं, तो उनको लगता है कि यार हम टीवी चला लें या मोबाइल पे गेम खेल लें, पर अगर हम उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और वो उनको अपन बोलेंगे कि नहीं बुक्स पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने की जब उनकी हैबिट डेवलप होगी तो उनका जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो भी बहुत होता है।
0: और हमारी भी एक हैबिट है थोड़ी थोड़ी देर में एक गीत सुनने की।

0: कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: सखियों, बच्चों के लिए कहानी जो है, कहानी की जो किताबें हैं वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करने में बहुत मददगार साबित होती हैं, और ऐसी ही आर के नारायण के लेखन से जो लेखक की जो कहानी की जो बुक है वो है मालगुली डेज, जो बहुत प्रसिद्ध भी है बच्चों के बीच।
1: पूर्णिमा, याद आ रहा है बचपन में एक सीरियल आया करता था मालगुड़ी डेज के नाम से।
0: यह पुस्तक एक छोटे से शहर मालगुड़ी के लोगों की थी और इसमें बच्चों की सरल, मजेदार और जो इमोशनल स्टोरीज हैं उनको दर्शाया गया है, और इन कहानियों के माध्यम से सामान्य जीवन की छोटी छोटी जो खुशियां होती हैं, रिश्ते होते हैं और जो मानवीय भावनाएं होती हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और यह पुस्तक बच्चों और जो युवा हैं उनको बहुत मजा आता है इस बुक को पढ़ने में।
1: कहानियां जो होती हैं वो हमारे दिल और दिमाग पर एक अलग ही असर डालती हैं। इसीलिए तो पहले एक चलन था, हमेशा बच्चे सोने से पहले दादी नानी के पास में कहानियां सुना करते थे। और सुधा मूर्ति की जो एक किताब है दादी माँ के नुस्खे, उसमें जो अपनापन होता है उसकी कुछ अलग ही बात है। उनकी कहानियां बच्चों के चरित्र की अलग ही नींव रखती हैं। और सखियों, आपसे इतना ही कहेंगे कि जो आपके गोद में भविष्य पल रहा है उसे इन किताबों के जरिए आप एक मजबूत इंसान बना सकती हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम चाणक्य नीति जैसी किताबें भी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं।
0: ये जो चाणक्य नीति है ना, ये प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि जीवन, राजनीति, सफलता और व्यवहार से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षाएं प्रदान करती है बच्चों को। और इसमें ऐसे विचार और नीतियां बताई गई हैं जो व्यक्ति को सही निर्णय लेने और लोगों को समझने और जो भी उसकी सिचुएशन है उसके अनुसार उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए उसकी प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल, ये पुस्तक जो है वो नेतृत्व क्षमता विकसित करती है। एक बच्चा लीडर कैसे बने, वो उसमें आत्मविश्वास कैसे आए और जीवन में आगे सफलता कैसे प्राप्त करे, कैसा उसका व्यावहारिक ज्ञान आए, इस किताब में बहुत ही अच्छी तरह से कहानी के माध्यम से समझा।

बोलो क्या होता है?

0: बास ये क्या होता है?
1: बंदर।
2: बहादुर।
0: बनने के बाद

0: सखियों, हम अक्सर अपने घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते, अपने बच्चों को संभालते संभालते अपने अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देते हैं पूर्णिमा, है ना। ऐसे में डॉक्टर कलाम की अग्नि की उड़ान,
1: ये विंग्स ऑफ फायर जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम साहब की प्रेरणादायक आत्मकथा है, और यह पुस्तक एक साधारण परिवार से निकलकर भारत के मिसाइल मैन बनने तक की उनकी संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है।
0: बिल्कुल, और यह हमें बताती है कि मुश्किलें हमारी दुश्मन नहीं बल्कि हमारे पंखों को मजबूत करने का जरिया है। सखियों, अगर आप अभावों में भी हैं तो तब भी आपके हौसले आपको शिखर तक लेके जा सकते हैं।
1: और ये जो पुस्तक है वो छात्रों युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ाती है और उन्हें असफलता और हार न मानने की भी प्रेरणा देती है कि हमें कितनी भी बार गिरना पड़े तो हमें वापस उठ के आगे बढ़ के चल के उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिसके लिए हमने सोचा है, जो हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करना ही है।
0: देखो ना पूर्णिमा, जो विजेता होते हैं वो कोई अद्भुत लोग नहीं होते, वे बस अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, अपना जो लगन है उसे पक्की रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें भी खुद से एक वादा करने की जरूरत है कि हमें भी अपनी जिंदगी में एक विजेता बनना है, कभी नहीं हार माननी है। और ये किताबें हैं, ये जो हमारी सबसे प्यारी सखियां हैं, ये हमें हिम्मत ऐसे ही दिलाती रहेंगी।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
1: अरे?

0: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: वरना जीवन में धन और सफलता ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मानसिक शांति, संतुलन और खुशहाल जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही प्रेरणा मिलती है हमें द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी किताब से, जिसको लिखा है रॉबिन शर्मा ने। और इस पुस्तक के अंदर एक जो व्यक्ति होता है वो तनाव कम करने के लिए, अपना जीवन सरल और सकारात्मक बनाने के लिए अपना सारा कमाया हुआ पैसा वगैरह सब पीछे छोड़कर वो ऊपर एक यात्रा के लिए चला जाता है और वो सब पीछे छोड़ देता है और तब जाके उसको मन की शांति मिलती है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैंने इतना पैसा कमा लिया पर मुझे शांति नहीं मिल रही। पर जब वो उस सब कुछ छोड़ के जब वो पहाड़ों में शांति के लिए जाता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है और तब उसे एहसास होता है कि पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि मन की शांति और संतुष्टि भी जरूरी है।
5: अब हम अगर बात करें अमृता प्रीतम जी की,
4: हाँ,
5: तो उन्होंने सिर्फ कागज पर लकीरें नहीं खींची बल्कि समाज की बंदिशों को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी। वो एक कहते हैं ना कि अमृता जी किताबें सिर्फ कहानियां नहीं है, वे एक जीने का सलीका सिखाती हैं हमें। और उनकी मशहूर किताब रसीदी टिकट को ही ले लीजिए, दुनिया ने उनसे पूछा आपकी ज़िंदगी की बिसात क्या है, तो उन्होंने एक रसीदी के टिकट जितनी बिसात बताई। इस किताब से हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत ही, कि दुनिया चाहे आपको कितना भी छोटा समझे लेकिन आपकी पहचान आपकी सच्चाई होती है। अपनी कमियों और अपनी जो नाकामियां होती हैं उनको बेबाकी से कबूल करना, मतलब आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप क्या हैं, तो वो आपकी एक बहुत बड़ी जीत होती है।
4: और कहते हैं ना, जब हम एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं तो हम दुनिया जीत लेते हैं।
5: और बात करें उनके उपन्यास पिंजर की, तो उन्होंने पिंजर में भी काफी बंटवारे की बातें की और इसी तरह बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी
4: जिससे कुछ ना कुछ हमें जीवन में प्रेरणा ही मिलती है और हमसे सफल होने का रास्ता दिखाती है।
6: मैं तेनू फिर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं, शायद तेरे तखयल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जां खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमई लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी। मैं तेनू फिर मिलांगी, जां खौरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगां विच कुलांगी, या रंगां दियां बाहां विच बैठ के तेरे कैनवस नूं वलांगी। पता नहीं किस तरह कित्थे, पर तैनू जरूर मिलांगी। या खौरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी, एक ठंडक जी बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानती, पर इन्ना जानती हाँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे नाल तुरेगा, ये जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जाता है, पर चेतियां दे तागे कायनाती कणां दे हुंदे, मैं उन्हां कणां नूं चुणांगी।

0: ऐसी ही एक किताब है इकीगाई, यह पुस्तक हमें जीवन में उद्देश्य खोजना और हर दिन को खुशी और संतुलन के साथ जीना सिखाती है। और इसके ये जो किताब है ना वन्ना, वो हमें सिखाती है कि छोटी छोटी जो खुशियां है ना उसको अपनाकर अपने पसंद के कार्य को आनंद पूर्वक ढूंढ करें और उसके अंदर भी खुशी ढूंढे। तो जब तक हम अंदर से खुश नहीं होंगे, हम कोई भी काम कर लें, हमें वो मन की शांति मिलेगी ही नहीं। तो हमें अपने मन की शांति के लिए और अपने मन के अंदर जो तनाव चल रहा है उसको कम करने के लिए, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए इकीगाई हमें प्रेरणा देती है कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम करना चाहिए, उसके अंदर तभी हमें विकास और विस्तार मिल पाएगा।
1: और ऐसी एक किताब है वाइज

0: अदरवाइज वाइज एंड अदरवाइज की लेखिका जो है वो सुधा मूर्ति जी हैं। वो उनकी जो ये पुस्तक है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उनको समाज में अलग अलग लोगों के अनुभव मिले जिससे उन्होंने ये कहानियाँ लिखी, जो इंसानियत और सच्ची घटनाओं और रिश्तों और जीवन की जो वास्तविकता होती है उसको बहुत ही संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती हैं। किताब हमें लोगों को समझने की कला, दया और सहानुभूति का महत्व भी सिखाती है। साथ ही यह जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह पूर्णिमा जो किताबें इस तरह की जब हम किताबें पढ़ते हैं ना तो कई बार हमें पता ऐसा लगता है कि ये किताब, ये जो कहानी है ये हमसे बहुत जुड़ी हुई है। तब हमें ऐसा मतलब ऐसा अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं। ये जो चीज़ें हैं, जो वक्त है या जो भी मुश्किल है वो बहुत लोगों के साथ हो चुकी है। तो जब किताबें हम पढ़ते हैं तो उसको हम जीते हैं एक तरह से।
1: हाँ, और उससे हम अपने जब किताबें पढ़ते तो हम उससे अपने आप से लिंक करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं हमने भी फेस कहीं ना कहीं की है।
0: और जब किताब जो कहानी का जब अंत आता है तो कहीं ना कहीं हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ
1: कि इसके साथ अच्छा हुआ तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा।
0: बिल्कुल।

0: सखियों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब मन परेशान हो और हमें कोई भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो तो कोई अच्छी किताब पढ़ लें, और जब हम किताब पढ़ते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। किताब हमें तनाव से दूर जाकर सकारात्मक ऊर्जा देती है।
1: और कविताएं, आध्यात्मिक पुस्तकें और प्रेरणादायक कहानियां जो होती हैं वो हमारे मन को नई ताकत देती हैं, और जो पढ़ने की आदत है ना वरना, वो हमारे अकेलेपन को भी दूर करती हैं, क्योंकि किताबें हर समय हमारे साथ रहती हैं।
0: कभी जो ये जिंदगी है, कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी परेशानी की छांव, कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलता हमें निराश कर देती है। ऐसे ही जीवन के हर मोड़ पर हमें सही राह दिखाने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है भागवत गीता।
1: हाँ, और ये जो भागवत गीता है वो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य ग्रंथ है, जो जीवन के संघर्षों में धैर्य, सही कर्म और मानसिक संतुलन को बनाए रखने की शिक्षा देता है।
0: यह पुस्तक सिखाती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना भय और चिंता के करना चाहिए। गीता के विचार मन को शांत रखते हैं और शांति प्रदान करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय किस प्रकार लिया जाए।
1: और वरना ये चिंता, तनाव और डर को कम करने में मदद करती है और व्यक्ति को सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है।
0: ये किताबें की सबसे खास बात ये है पूर्णिमा, कि ये केवल जानकारी नहीं देती बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती हैं। हो सकता है ये किताब आपका पूरा जीवन बदल दे, इसलिए नई किताबों से दोस्ती कीजिए और सीखते रहिए।

0: वरना कई सारी पुस्तकें हमें मोटिवेट करती है, कई सारी पुस्तकें हमारे मनोरंजन करती है, पर कई सारी पुस्तकें ऐसी भी होती है जो हमें पैसे और निवेश की समझ भी देती है. और ऐसी ही पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, जो कि जिसके लेखक है रोबोट कियोस्की. उन्होंने अपनी पुस्तक में पैसे का सही समझ, उसको कैसे सेव किया जाना चाहिए और उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, उसके महत्व को बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में उसे समझाया है. और किताब बताती है कि केवल नौकरी करना ही आर्थिक सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि समझदारी से उसे इन्वेस्ट करना और नए आय के स्रोत बनाना भी बहुत जरूरी है. आज एक इनकम से काम नहीं चलता, आज हमको सेव करना है तो आपको दो जरिए ढूंढने हैं पड़ते हैं. और ये पाठकों को पैसों के प्रति सकारात्मक और व्यवहारिक सोच को भी विकसित करने की प्रेरणा देती है. और इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो व्यक्ति अपनी आर्थिक समझ को और मजबूत बना सकता है और भविष्य को बेहतर योजना बना सकता है भविष्य की, और उसे आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बनना है इसकी भी हमें उससे समझ मिलती है, और उससे हम प्रेरणा लेके अपने जीवन को बहुत तरीके से सुधार सकते हैं.
1: बिल्कुल, सकारात्मकता की आपने जो बात कही है उससे मुझे एक किताब का नाम याद आ रहा है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. यह सकारात्मक सोच की ताकत को बताती है, और यह पुस्तक हमें सकारात्मक सोच की शक्ति और कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखने का तरीका बताती है. यह किताब हमें सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक रखे तो वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता है. यह पुस्तक तनाव को कम भी करती है पूर्णिमा, और जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का आत्मविश्वास भी देती है, और साथ ही साथ यह हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखने का संदेश भी देती है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर और सफल बना सकता है.

0: छोटी सी आशा, छोटी बड़ी बड़ी हमारी जो उम्मीदें हैं और हमारा जो छोटा सा मन है वो सोचता है कि हम बहुत कुछ करें अपने जीवन में, और जो हमारा जो एटीट्यूड है, सकारात्मक जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो हमें कहीं ना कहीं लेकर जाता है ना पूर्णिमा?
1: हाँ, और ऐसी और हम जो किताबें हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, और उसी प्रेरणा से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता मिलती ही मिलती है। और ऐसी ही प्रेरणादायक किताब है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की द इग्नाइटेड माइंड्स, जिसमें उन्होंने युवाओं को एक बड़े सपने देखने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरणा दी गई है। किताब में कलाम साहब लिखते हैं कि हर युवा के अंदर अपार क्षमता होती है जिसे पॉजिटिव थिंकिंग, हार्ड वर्क और डेडिकेशन में बदला जा सकता है। यह पुस्तक जीवन में स्पष्ट लक्ष्य तय करना, चुनौतियों का सामना करना और जो उनके सपने हैं उनको कैसे साकार करना है उसके निरंतर प्रयास करना सिखाती है। और साथ ही साथ ये जो पुस्तक है वो युवाओं में देशभक्ति कैसे विकसित की जा सकती है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये किताब।
0: पूर्णिमा, आपने बात की युवाओं की, तो जब हम युवा हों या हमारा जीवन का कोई भी पड़ाव हो, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं हमसे, और जो गलतियां और संघर्ष और जो आत्म परिवर्तन, इस सब की जो बात है वो एक उपन्यास है द गाइड, जिसके लेखक हैं आर के नारायण। वो हमें बताते हैं कि जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और गलत फैसलों का सामना करता है वो, लेकिन अंत में आत्मचिंतन और अनुभवों से के माध्यम से वो स्वयं को समझने की कोशिश करता है। और ये किताब जो है वो पाठक को जीवन में के नए नज़रिए इसको देखने की और अपनी गलतियों से सीखने की और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। साथ ही यह हमारी जो है ना आत्मचिंतन की जो आदत होती है उसको विकसित भी करती है, और ये संदेश देती है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीख कर जीवन में बदलाव ला सकता है।

0: तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। याद रखिए, किताबें केवल शब्द नहीं होते, वे अनुभव, प्रेरणा और जीवन बदलने वाली सीख का खजाना होते हैं।
1: एक अच्छी किताब आपका

0: सबसे सच्चा दोस्त बन सकती है, वो आपको गिरने पर संभालती है, अंधेरे में रास्ता दिखाती है और सपनों को सच करने का हौसला देती है।
1: आज से ही एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, हर दिन कुछ पन्ने पढ़िए, क्योंकि पढ़ने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता।
0: तो आपसे विदा लेते हैं, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और किताबों से दोस्ती बनाए रखिए।
1: और आज के इस प्रोग्राम में HPT पे थे PK सेन और CL सोनी,
0: और कंट्रोल रूम से गजेंद्र सिंह डालसू,
1: जलसू,
0: राज सिंह राव,
1: और कंसोल पे हमारे आपको अच्छे अच्छे गाने सुनवाए कपिल चारण ने।
0: और इस कार्यक्रम की थीम को तैयार किया सफलता चारण ने।
1: तो हम दो सखियां लेते हैं आपसे विदा, मैं पुण्य और मेरे साथ
0: वंदना शर्मा,
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:15 हुए हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम

0: विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क

0: वर्क होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबूधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान

और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

0: नजर को दिल,
1: किसी नरगिसी नजर को दिल देंगे हम। मैं नशे में हूँ फिल्म का ये गाना आपने सुना, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने, और ये थी आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। तो भाई, दिल देने के बाद दीवानगी का आलम कुछ इस तरह।

0: बेजुबान फिल्म से ये बहुत ही मीठा सुरीला गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। प्रेम धवन की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत। ऐसे ही सुरीले नगमों का दौर जारी रहेगा, लेकिन अगला गाना सुनने से पहले ये संदेश।
1: एक बेमिसाल शायर।

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़े से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारत।

मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल, उषा खन्ना का संगीत, आपने सुना शबनम फिल्म का गाना। और प्यार में कुछ कस्में होती हैं, कुछ वादे होते हैं, ऐसा ही सुरीला गीत एक और आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु एनसीपीसीआर द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये गाना आप सुन रहे थे तेरे मेरे सपने फिल्म से। आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गाने को लिखा था गीतकार नीरज ने। तो ये तो थी बातें वादों की कस्मों की और मोहब्बत में फिर कहाँ का हिसाब रह जाता है। इश्क जब बेहिसाब हो जाए।

आशा भोसले की गायकी का ये अंदाज आप सुन रहे थे फागुन फिल्म के इस गाने में। कमर जलालाबादी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार ओपी नैयर ने। और अब अगले गाने में संगीत का जादू शंकर जयकिशन का, शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज में। क्या कहता है ये गाना दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म से, आइए।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए मेरे सनम फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सखियां आ चुकी हैं स्टूडियो में, सखी सहेली कार्यक्रम की तैयारी हो चुकी है और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली। बस कुछ ही पलों में मिलते हैं आपसे।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा महेश्वरी और
1: चंचल वर्मा का नमस्कार
0: और साथ में हेल्दी नमस्कार भी।
1: ये हेल्दी नमस्कार क्यों?
0: भाई देखो कितनी गर्मी है।
1: हाँ?
0: और बाहर गर्मी से तो जैसे कि ये हो रहा है कि आंख मिचोली का खेल हो रहा है, है ना इन दिनों। तो अपना सब ध्यान रखें, खूब अच्छे से ध्यान रखें, और खास तौर पे हमारी सखियां सबका तो स्वास्थ्य, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रख लेती हैं, लेकिन खुद को हम कहीं छोड़ देते हैं पीछे, तो ऐसा ना करें।
1: सबसे पहला ध्यान दीपा ने खींचा है स्वास्थ्य की तरफ।
0: जी
1: बहुत अच्छी बात है। और स्वास्थ्य से मुझे याद आया, जैसे उन्होंने कहा ना कि भाई महिलाएं जो है वो सबका ध्यान रखती है, और जब छुट्टियों में बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, और फिर जब मेहमान आते हैं तो बच्चे भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो जो महिलाओं की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है। खास तौर पर एक तो गर्मी के दिन ऊपर से रसोई का जो काम है वो बहुत बढ़ जाता है।
0: हाय हाय, ये तो पूछो ना, सच में देखो पसीना तो बहुत आता है, ऐसा लगता है कि कब बस ये बन जाए, जो भी व्यंजन बन रहा है ये बन जाए और हम बाहर जाए।

0: लेकिन ये बात भी है कहीं बच्चे नानी के घर आए होंगे, कहीं बच्चे दादी के घर आए होंगे, या कहीं बुआ किसी किसी के घर पे आई होगी, या हम कहीं गए होंगे। ये बात तो गर्मियों में, ये मई और ये जून का महीना है, इसमें ये सब चीजें चलती हैं। और देखो फिर यादें भी तो वहीं बनती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कितनी बातें हम संजोते हैं, कितनी हमारे जब यादों के गलियारे में जाते हैं, हम अपने दिनों में ही जाते हैं अगर चंचल।
1: हालांकि तो, समय बदल रहा है, पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकलकर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम

0: समय बदल रहा है। पहले एक एक पूरे दो दो महीने डेढ़ महीने के लिए हम नानी के घर चले जाया करते थे। आजकल क्योंकि समय बदल रहा है, हम लोग भी बहुत सारी बच्चों को एक्टिविटीज के लिए डाल देते हैं, तो समय कम होता है। लेकिन फिर भी लगता है कि छुट्टियां आई हैं बच्चों की, थोड़े बदलाव के लिए क्यों ना कहीं बाहर चला जाए। तो एक हफ्ता 10 दिन का समय निकल कर तो हम छुट्टी मनाने चले ही जाते हैं किसी न किसी रिश्तेदार के घर, या तो फिर किसी जगह पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं किसी रिश्तेदार के घर, तो वहां जब उनका काम बढ़ता है, तो मुझे लगता है कि हम लोग जो जाते हैं वहां, हमें भी थोड़ा हाथ बटाना चाहिए। इस पर हमारी सखियों के क्या अनुभव हैं? क्या उनके ऊपर भी कभी उन्हें लगता है कि काम का बोझ बहुत बढ़ गया है तो झुंझलाहट आती है, या आए मेहमानों के साथ में वो एक यादें बनाने के लिए बहुत खुश होती हैं? उनके अपने अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी तरह के जो भी अनुभव हैं वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं।
1: और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके घर में बच्चे आए हैं या आपके घर के बच्चे कहीं गए हैं, क्या चल रहा है इन दिनों घर में, खूब सारी जो चहलकदमी चल रही है, या अभी कहीं बच्चे गए हुए तो घर में शांति है। सब तरह की जो भी बातें आप चाहती हैं साझा जरूर करिएगा।
0: और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं ना, तो उनकी बातें जब हम सुनते हैं तो उसमें बहुत सारे कहावतें मुहावरे ये सुनने को मिलती हैं। और ये ऐसे मुहावरे या कहावतें जो होती थी ना, चार शब्दों में 40 लाइनों की कोई बड़ी बात कह जाते थे, ऐसे शब्द होते हैं।
1: यानी कि 100 सुनार की और एक लोहार की वाली बात कर रही हैं आप।
0: बिल्कुल, और यही आज का मुहावरा है जिस पर हम बातचीत करने वाले
1: जी।
0: हैं।
1: और महिलाओं ने उद्यम के क्षेत्र में
0: जी,
1: बिजनेस के क्षेत्र में बहुत सारा अपना नाम कमाया है पिछले कुछ वक्त में। कोरोना के बाद तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी महिलाएं अब काम कर रही हैं। हम बाहर निकलते हैं ना तो दुकानों पे भी बैठी मिलती हैं, ऑफिस में भी मिल रही हैं, घर का काम तो संभाल ही रही हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं।
0: घर से ही बैठकर वो अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर रही हैं, घर पर बैठकर कोई बैग बना रही है, कुछ खाना बना रही है, कुछ कहते ना घर को सजाने वाली चीजें बना रही है। तो इसी तरह से घर सजाने के साथ खुद को सजाने संवारने की बात अगर की जाए, तो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ी आज एक महिला की हम बात करेंगे। और फेसबुक पर हमारी सखियों ने देख ही लिया है, फिर भी हम नाम बता देते हैं। आज बात होगी विनीता सिंह के बारे में
1: जी,
0: जो कि एक महिला उद्यमी है, और इनके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन पहले और विषय बता देते हैं कि किन पर चर्चा होने वाली
1: जी
0: है।
1: आज बात करने वाले हैं हम डॉक्टर निशा सिक्वेरा से, लू लगने के जो लक्षण होते हैं और बचाव उसे कैसे किया जाए और किस तरह से ध्यान रखा जाए, तो वो हमें बहुत सारी जानकारियां देंगी।
0: इसके अलावा दो खास दिन आज हैं, एक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जिसे हम परिचारिका दिवस भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी आज है, इनकी बात भी होगी। और पेड़ पौधों को लेकर, उनके संरक्षण को लेकर ये चीजें क्यों जरूरी हैं, इस पर बात होने वाली है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि बातचीत को यहीं रोकें और पहले एक गीत सुन लें।
1: चलो चलते हैं।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: चंचल, जो गुलमोहर ये लाल पीले फूल जब सब तरफ फैले होते हैं कितने हाँ। सुंदर लगते हैं देखने।
1: और गर्मियों में खासतौर पर गुलमोहर का पेड़ जो है वो हरा भरा होता है और जो उसका लाल रंग की जो उसकी पत्तियां होती है ना, जब हम गुजरते हैं रास्तों से और जो रास्ते पर चादर सी बिछी हुई होती है, सच में
0: ऐसा लगता है लगता है इसके ऊपर चले नहीं है ना,
1: और लेट जाए बस, गर्मी से राहत दे जाती है। तो भाई ये सुकून तभी नसीब होगा ना जब हम इन पेड़ों की पौधों की सुरक्षा करेंगे, संरक्षण करेंगे।
0: सही बात है।
1: इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई का जो दिन है इसे अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में घोषित किया है, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। तो ये वैश्विक स्तर पर इस बात के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके ताकि जो भी छोटे पौधे हैं उनकी रक्षा हम करें, क्योंकि छोटे पौधे जो है ना यही आगे चलकर हमारी भूख समाप्त करने का जरिया बनते हैं, और पर्यावरण की रक्षा अगर हम करेंगे तो आर्थिक विकास को भी इससे बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल। और हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पौधे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो हम लेते हैं, तो लगभग सभी पेड़ों से ये काम होता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका भी करीब 80% पेड़ पौधों से ही हमें मिलता है, लेकिन हर साल कीट और बीमारियों के कारण लगभग 40% फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और फिर पोषण उपलब्ध करने के प्रयासों में भी रुकावटें आने लग जाती हैं।
1: और हम देख रहे हैं कि जब एक पौधा हम रोपते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है, तब उसे सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय उसने अपनी जड़ें नहीं पकड़ी है, वो बहुत नाजुक होता है
0: जी।
1: तो उस वक्त उसे देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, चाहे वो हमने खेत में कोई फसल लगाई है या घर पर कोई पौधा छोटा सा रोपा है, लेकिन उस वक्त उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। एक छोटे बच्चे की तरह उसकी देखभाल की जरूरत होती है।
0: जब हम घर में भी लगाते हैं तो हर दिन कैसे जा करके देखते हैं, और सिर्फ एक जो लगाता है घर में गमले में पौधा छोटा सा, पूरा घर फिर आके पूछता है ये ठीक से तो है ना, बढ़िया है ना, पानी डाला, सब पूछते हैं एक दूसरे से, और कितना बिल्कुल एकदम परिवार का एक हिस्सा बन चुका होता है वो गमला या वो पौधा। तो सब सोचिए, जब सब तरफ से लगे हों या आपके बागीचे में लगे हों या आप कहीं बाहर भी कहीं पे किसी ऐसी जगह पर जो कोई सार्वजनिक जगह है जहां पे आप लगा सकते हो, तो जरूर लगाना चाहिए पौधों को, पेड़ के।
1: पता है जब हम गर्मी में कहीं जाते हैं, कहीं बस स्टॉप पर खड़े हैं, किसी बस का या रेल का इंतजार कर रहे हैं, और जब वहां हमें कोई छांव नहीं मिलती तो कई बार यहां वहां जाकर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कोई पेड़ हो तो जिसके नीचे खड़े होकर थोड़ा सुस्ता लिया जाए, कहीं छांव मिल जाए हमें। और कई बार हम अपने वाहन से भी अगर जा रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा छांव में सुस्ता लें।
0: सही बात है। और कभी कभी तो पता है कैसा होता है कि वो रस्ते की निशानी बन जाता है।
1: हाँ।
0: भाई तुम आगे वो रस्ते तक जाओगे ना, बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस वहां से उल्टा दाएं मुड़ना या बाएं मुड़ना। हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है।
1: ये निशानियां बनाने के लिए या उस वो छांव लेने के लिए उन पेड़ों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है दीपा, और इसीलिए ये दिन हम मना रहे हैं ताकि जो छोटे पौधे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और पौधों की सुरक्षा उनके लिए सीमा नियंत्रण और स्वच्छता की तरह होती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो खतरनाक कीट हैं और उनमें लगने वाली जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए उनकी

0: जांच करना समय समय पर और उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। ये सुरक्षा कवच का काम करता है जिनसे हमें भोजन मिलता है और किसानों का रोजगार भी सुरक्षित रहता है। कई बार हम देखते हैं खेतों में बहुत सारी टिड्डियां घुस जाती हैं जो पूरी पूरी फसल को खा जाती है।
1: बिल्कुल मवेशी घुस जाते हैं तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बिल्कुल, है ना। और उस वक्त आप सोचो वो जो किसान है जिसने वो लगाया है पौधा उसके दिल पर क्या बीतती है और उनको आर्थिक भी बहुत नुकसान हो जाता है।
0: अरे लेकिन इसके अलावा हमारे पर्यावरण को प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है। ये जो हम देख रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है
1: जी,
0: जब हम गाड़ियां वाहन बहुत सारे बढ़ रहे हैं लेकिन वाहनों से जो निकलने वाला कार्बन है उसे पौधे क्योंकि अपनी तरफ खींच लेते हैं और हमें एकदम फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं,
1: सही के बाहर
0: ताजा सांस लेने के लिए वो जो सुविधाएं हैं वो कम हो रही हैं। हम मशीनों पर धीरे धीरे निर्भर होते जा रहे हैं लेकिन अगर हम पेड़ लगाएंगे और उनको संरक्षण भी देंगे तो ये जो समस्याएं हैं इनसे काफी हद तक हम निजात पा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो एक वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, अंतराल के बाद आते हैं और फिर इसी बारे में और बात करेंगे।

बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे हम एक बार फिल्म से, ये गीत हमने लिया था और पौधों और पत्तों की इस गीत में बात हो रही थी। ये पेड़ जो है ये हमें लू से बचाव में बहुत सहायक होते हैं, और इसी विषय पर डॉक्टर निशा सिकवेरा से जो बातचीत हमने की है अब वो सुनते हैं।

नमस्कार, सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निशा सिक्वेरा। आज आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं एक चिकित्सा विशेषज्ञ हूं और मेरा उद्देश्य यह है कि लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने में सहायता करना। आज

मैं हीट स्ट्रोक या लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। गर्मियों के दिनों में अपने देश के कई शहरों में तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। इन दिनों दोपहर के समय बाहर बहुत तेज गर्म हवाएं चलती है। इन गर्म हवाओं को ही लू यानी हीट स्ट्रोक कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी वाले लोग इन गर्म हवाओं को सहन कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग इन हवाओं को सहन नहीं कर पाते हैं और इनके संपर्क में आते ही बीमार पड़ जाते हैं। अपने देश में हर साल काफी बड़ी तादाद में लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। लू लगने के कारण ये गर्म हवाएं जब अपने शरीर के संपर्क में आती हैं, तो शरीर का तापमान बढ़ा देती हैं और इस वजह से कई समस्याएं होने लगती है। ज्यादा देर तक धूप में काम करना और शरीर में पानी की कमी होना लू लगने के प्रमुख कारण हैं। बच्चे और बूढ़े लोग लू की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। अधिकांश मामलों में लोगों को ये जल्दी पता ही नहीं चल पाता है कि उन्हें लू लग गई है। हालांकि इसका स्टीक अंदाज लू के लक्षणों को देखकर लगाया जा सकता है, इसीलिए हर किसी को लू के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। लू लगने के लक्षण: लू लगने पर सिर में तेज दर्द होना, चक्कर आना और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शुरुआत में इन लक्षणों की तीव्रता काफी कम होती है, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ते जाते हैं। लू लगने पर अचानक से तेज बुखार होने लगता है और शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। शरीर में गर्मी बढ़ने के बावजूद लू लगने के दौरान शरीर से पसीना नहीं निकलता है। लू लगने पर उल्टी आना और शरीर में तेज दर्द होना आम बात है। उल्टी होने के कारण शरीर में सोडियम और पोटेशियम का संतुलन बिगड़ जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले या शारीरिक रूप से कमजोर लोग लू लगने से बेहोश भी हो जाते हैं। लू लगने पर क्या करें? लू लगने पर मरीज को तुरंत छायादार जगह पर या ठंडी जगह पर लिटाएं। शरीर को ठंडा रखने के लिए शरीर पर ठंडे पानी का पट्टिया लगाएं। घर के खिड़की दरवाजे खोल दें और कूलर या एसी चालू कर दें। अगर मरीज लू लगने से बेहोश हो गए हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। लू से बचने के उपाय: ये सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि अगर गर्मी के मौसम में आप ठीक ढंग से अपना ख्याल रखें और कुछ जरूरी सावधानियां बरतें तो लू के प्रकोप से बच सकते हैं। आइए लू से बचने के कुछ प्रमुख उपाय मैं बता देती हूँ। गर्मियों के दिनों में हल्का भोजन करें। गर्मियों के दिनों में कभी भी खाली पेट पर घर से बाहर ना निकले। ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो छाते का इस्तेमाल करें। अधिक मात्रा में पानी पिए। बाहर जाते समय पानी की बोतल साथ में लेकर चले। हाइड्रेटेड रहें। प्यास ना लगने पर भी पानी, नारियल पानी और जूस पीते रहें। बाहर निकलने के समय पर टोपी, स्कार्फ या छाते का इस्तेमाल, जैसे मैंने बता दिया अभी, उस इस्तेमाल करें। हल्के और जल्दी पचने वाले भोजन करें। प्याज और दही का सेवन बढ़ाएं। आज हीट स्ट्रोक जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।

0: उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इस गर्मी में खुद को और अपने परिवार को बचाएं, अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
1: अभी हमने सुना डॉक्टर निशा सिक्वेरा से लू से बचने के कई तरीके, तो चलिए अब सुनते हैं गीत।

0: इस गीत के बाद फिर से हम अपनी बातचीत लेकर हाजिर हैं और हमने शुरुआत में कहा था कि दो खास दिवस आज हैं, तो 12 मई का दिन है, आज है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय परिचारिका दिवस, और ये स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है एक जो कि हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर इस पेशे के प्रभाव को मान्यता देना है और ये जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें पहुंचाई है।
1: चंचल, 1953 में अमेरिकी स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण विभाग की जो प्रतिनिधि थी डोरोथी सदरलैंड, उन्होंने नर्स को सम्मानित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का प्रस्ताव रखा। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद यानी कि ICN, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया। हालांकि उस समय ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था। फिर 1974 में फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्मदिन के साथ 12 मई को इस दिन यानी आज के दिन इस दिवस को मनाने के रूप में चुना गया, जिससे उनकी विरासत और वैश्विक स्तर पर नर्सिंग पेशे का महत्व और भी पुख्ता हो जाता है।
0: भाई, नर्सों का महत्व ये खास तौर पर वो जरूर समझते होंगे जब किसी के घर में कुछ ऐसी अवस्था आई हो, जब उनके परिवारजन अस्पताल में भर्ती रहे होंगे और जब हमें समय नहीं होता कि हम सारा सारा दिन या रात भर अस्पताल में रुक सकें, तो यही परिचय

0: तारिकाएं होती हैं जो हमारे परिवारजन का और उस रोगी का बड़ी शिद्दत से ध्यान रखती हैं। और इसी बात को लेते हुए हमारे जो श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह आधुनिक दिन नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पर नर्सों के निस्वार्थ समर्पण, उनकी कड़ी मेहनत, स्वास्थ्य सेवा में उनके अतुलनीय योगदान को सम्मानित करने के लिए एक समर्पित दिन है।
1: जी, और एक और संदेश है, कहता है कि नर्स चिकित्सा संबंधी एक विषय है जो मरीज के सेवा भाव के दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और आज के दिन ही हर साल की तरह इस साल भी वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। ये दिन नर्सों के हित, परख शिक्षा और समर्पण को ही समर्पित है।
0: एक अन्य संदेश में यही बात कही गई है कि इस दिन नर्सों को सम्मान देने के लिए दिन मनाया जाता है और उनका जो अग्रणी योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और अन्य संदेश है जिसमें लिखा गया है कि नर्स के प्रति जो उनका महत्व है, उनकी सेवा का जो भाव है, इस विषय को लेकर जागरूकता के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। अगर नर्स ना हो तो जो लोग हॉस्पिटल में अकेले रहते हैं बीमारी में, उनका उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नर्सों का जो योगदान है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है।
1: जी बिल्कुल, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त हो चला है एक संदेश का।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और हम फिर आ चुके हैं।
1: बिल्कुल, मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा
0: और मैं दीपा महेश्वरी
1: और अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
0: चलिए।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ओआरएस आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इस बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: भाई देखो चंचल, मौसम कोई भी हो, सुंदरता पे तो किसी भी चीज का कोई जोर नहीं चलता है कि नहीं।
3: बिल्कुल। और भी हर महिला को सजने संवरने का थोड़ा सा शौक तो होता ही है। वैसे आम दिनों में वो ना भी सजे, लेकिन कुछ खास मौका आता है तो थोड़ा सा श्रृंगार तो बनता भी है।
2: बिल्कुल।
3: और आज जिस सफल महिला की हम बात कर रहे हैं, जो एक महिला उद्यमी है, वो है विनीता सिंह। और इन्होंने शुगर कॉस्मेटिक की संस्थापक है, उनकी सीईओ है, और देश विदेश की महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत है। हालांकि उनकी असाधारण कहानी, मेकअप की जो जीवंत दुनिया है और ये जो फलता फूलता व्यवसाय है, इसमें तो इनकी प्रसिद्धि बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अपने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही जो अपनी असाधारण प्रतिभा है उसका प्रदर्शन इन्होंने शुरू कर दिया था।
2: जी, और उनकी इसी असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि ने उन्हें प्रतिष्ठित IIT मद्रास में प्रवेश दिलवाया, जहां उन्होंने बैडमिंटन के प्रति अपना जुनून दिखाया और पहचान एक बनाई। फिर कई टूर्नामेंट में वो जाती थी और वहां पे जीत भी उन्होंने हासिल की। बाद में IIM अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षा तो की ही, दौड़ में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया।
3: क्या बात है।
2: और अपने प्रयासों के रूप में कई सारे उन्होंने कठिन मैराथनों को भी पूरा किया था। तो ये जो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना थी और सीमाओं को पार करने की जो उनकी इच्छा थी, उनके आने वाले दिनों के उद्यमिता गुणों को स्पष्ट दिखाई दे रहा था सभी को कि ये ऐसे तो सीधे सीधे नहीं चलेगी, कुछ तो जरूर करेगी।
3: बिल्कुल, वो सीधे दौड़ लगाएगी और जीत भी हासिल करेगी। और निवेश बैंकिंग में एक बड़े पैकेज के साथ उन्हें एक प्रस्ताव मिला, लेकिन बिजनेस का चुनौती भरा माहौल लगातार उन्हें पुकार रहा था। और उनका जो पहला बिजनेस था, ये एक पृष्ठभूमि जांच पर आधारित उद्यम था, लेकिन ये जब उन्होंने किया तो उनको लगा कि कुछ खास सफलता नहीं मिली उन्हें।
2: जी, लेकिन यहाँ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर एक ब्यूटी सब्सक्रिप्शन सेवा की स्थापना की, जिसे कुछ हद तक तो सफलता मिली, लेकिन ये भी जो उनका असली जो जुनून था वहां से कहीं कुछ मेल नहीं खा रहा।

0: था, उनको ऐसा लग रहा था कहीं तो कुछ अभी बाकी है।
1: तो ये जो शुरुआत में असफलताएं उनको मिल रही थी, लेकिन ये सब चीजें थी ना उनके लिए एक सबक की जैसे रही, जिससे जो भी बाजार किस तरह का होता है या अपनी क्षमताएं किस तरह से उनको बाहर निकालनी चाहिए, ये चीजें जानने में उन्हें बड़ी मदद मिली।
0: जी, और बहुत सारे शोध के बाद विनीता ने ये समझा कि जो भारतीय सौंदर्य बाजार है, क्योंकि हम इंडियंस में अलग अलग त्वचा रंग होते हैं और अलग अलग टाइप्स होते हैं स्किन के, त्वचा के, तो उसके पसंद के अनुरूप उत्पादों की यहाँ कमी है, जो कि किफायती भी हो। और फिर बस क्या था, 2015 में उन्होंने अपने अनुभव और एक दृढ़ दृष्टिकोण के साथ, विनीता ने अपने पति कौशिक मुखर्जी के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक ब्रांड की शुरुआत की।
1: और ये जो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, काफी किफायती दामों पर और बहुत आकर्षक और उच्च गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधन वो लेकर आई, बाजार में उन्होंने पेश किए। और ये जो ब्रांड था, ये भारतीय युवा महिलाओं के लिए उनमें बिल्कुल लोकप्रिय हो गया और डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण ने तेजी से इसको अपना ग्राहक बना लिया।
0: जी, कंपनी का एक उत्पाद है चंचल, चटक और अलग अलग रंगों का काजल।
1: हाँ,
0: ये बहुत प्रसिद्ध हुआ लड़कियों में खास तौर पे, और देखते देखते शुगर कंपनी की कई उत्पाद एक प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्ध होने लगी।
1: और वो ऐसा मानती है कि हर महिला को सुंदर दिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार तक सारे सौंदर्य प्रसाधन पहुंच सकने के लिए उनका जो बजट है ना, कई बार वो उनको अलाउ नहीं करता। तो कम बजट में किस तरह से उनको ये सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध करवाया जाए, उनका ब्रांड इसी चीज पर काम कर रहा है।
0: और विनीता ने सफल होने के साथ साथ अपनी महिला सशक्तिकरण वाली प्रतिबद्धता का भी ध्यान रखा है। कंपनी में लगभग 75% कर्मचारी महिलाएं ही हैं और उनके नेतृत्व में शुगर कंपनी बदलते रुझान और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लगातार अलग अलग नवाचार करती चली आ रही है।
1: और वनिता ने अपने करियर को एक नया मोड़ तब दिया जब उन्होंने एक भारतीय रियलिटी शो में एक निवेशक और जज के रूप में अपनी भूमिका निभाई, और इस तरह से कहते ना कि वो आगे बढ़ती रही और अपनी मंजिलों को हासिल करती रही, और हमारी शुभकामना है कि वो और आगे बढ़ती रहे।
0: जी, और वक्त तो चला एक

0: बहुत सुंदर गीत सुनवाया दीपा तुमने, और मुझे लगता है हमारे जो सुनने वाले हैं ना उन्हें भी ये गाना पसंद आया होगा। और अब हम बात करें कुछ मुहावरों की, कुछ कहावतों की, और हमारे जो सुनने वाले हैं भाई वो भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स हमें लिखकर भेज रहे हैं। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि मुहावरे हमारे दैनिक जीवन में विनोद भी कराते हैं और मोटिवेशन भी हमें देते हैं। आम बोलचाल की कुछ बातों के बीच मुहावरे जोड़ देने से उस बातचीत में ताजगी आ जाती है, दम आ जाता है। तमाम मुहावरों में 100 सुनार की 1 लोहार की ये हम अक्सर सुनते हैं। जो किसी ना किसी काम में बहुत सारा प्रयास करते असफल सा लगने लगता है, लेकिन धमाके से उस काम के पूरा होने पर इस बात को अक्सर कहा जाता है।
1: बिल्कुल। एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि ये मुहावरा सुनार के गहने बनाने की शैली और हल्की हथौड़ी के सामने लोहार के खेत या अन्य बड़े औजार बनाने भारी भरकम हथौड़े के उपयोग की तुलना की गई है। मतलब कमजोर या छोटे प्रयासों के मुकाबले सटीक और करारा प्रहार अधिक प्रभावशाली होता है और कारगर साबित होता है। अगर कोई काम नहीं करने के 100 बहाने बना ले, लेकिन जब बॉस सामने आते हैं तब सच सामने आ ही जाता है।
0: क्या बात है, बिल्कुल मिलता जुलता। एक और संदेश है, 100 सुनार की 1 लोहार की का मतलब होता है कमजोर या छोटे प्रयासों की लंबी श्रृंखला की तुलना में एक शक्तिशाली सटीक प्रयास अधिक प्रभावशाली होता है। ये कहावत गुणवत्ता और मजबूती की मात्रा को बेहतरी से बताती है।
1: जी, और 100 सुनार की 1 लोहार की ये लोकोक्ति मुहावरे हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम अक्सर ही बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया करते हैं। उन्हीं में से एक ये मुहावरा अपने प्रयासों के तौर तरीकों के बारे में बताता है कि सुनार आभूषण बनाने के 100 प्रयासों से अच्छा लोहार का एक लेकिन अति उत्तम महत्वपूर्ण प्रयास सफल हो जाता है। उसके एक सटीक प्रयास से सामग्री के टुकड़े हो जाया करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह लोकोक्ति इस अर्थ में हमें सटीक प्रहार के तौर तरीकों पर एक सीख देती है।
0: क्या बात है। इसी तरह से एक अन्य संदेश है कि ये मुहावरा हमें बताता है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति या कार्य 100 साधारण लोगों या कार्यों से अधिक श्रेष्ठ होता है। जीवन में हमें अपनी ऊर्जा को बखेरने की बजाय उसे केंद्रित करके बड़ा परिणाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बारे में कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं और एक प्रसंग इस तरह से भी कुछ आता है कि महाभारत के समय जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मिलकर पांडवों को पछाड़ रहे थे और तब भीम ने अपनी गदा उठाई और एक ही साथ बहुत सारे कौरव यानी कि जो 100 कौरव थे उनको धाराशायी कर दिया और 100 कौरवों के बराबर शक्ति भीम के पास अकेले ही थी। इसलिए उस समय से इस मुहावरे को प्रयोग में लाया जाने लगा, कहा जाने लगा कि 100 सुनार की 1 लोहार की। इसी तरह से कुछ कथाएं भी इसको लेकर प्रचलित हैं।
1: तो गीत सुने अभी
0: जी।

0: दीपा, याद है गर्मियों की छुट्टियों के दिन?
1: बिल्कुल याद है। और देखो ना, नानी के घर जाते थे, खूब सारे आम खाते थे, और शाम को फिर हमारे नाना जी लेके जाते थे हमें गार्डन।
0: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं। मुझे याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में ददीहाल जाया करते थे। हमारे पिताजी के चार भाई थे, जो कि सब उस वक्त वहां जमा हो जाया करते थे, और कुल मिलाकर हम 15 बच्चे थे, जो कि अलग ही मजा आता था। हमारी चाचियां और मम्मी सब मिलकर रसोई संभालते थे। हम सब बच्चे दादी के ही साथ हमारा आना जाना होता था। हमारा बगीचा भी बहुत बड़ा है, जिसमें दादाजी ने बहुत बड़े बड़े फलदार पेड़ लगा रखे हैं। और अब तो ये सिर्फ यादें ही रह गई हैं, क्योंकि सब भाई बहन बड़े हो गए और सब अपने अपने काम में लग गए हैं। तो सच बात है, ये जो बचपन के दिन होते हैं ना, ये यादें बनकर रह जाते हैं। और जो नानी दादी के घर जाने के, या बुआ मौसी के घर जाने के, और वहाँ इकट्ठे होकर खूब हंगामा करने के, मस्ती करने के, यादें बनाने के जो दिन थे ना, वो अब हमारी खूबसूरत यादों में है, सिर्फ एल्बम्स में वो दिन हमारे पास रह गए हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही कही चंचल। देखो, एक संदेश ये कहता है कि गर्मियों में आना जाना तो लगा ही रहता है बच्चों और परिवार का, कोई नानी के घर, कोई दादी के घर। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही कही आप लोगों ने कि जो मेहमान होते हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए। इतनी गर्मी होती है, अगर वो लोग हाथ नहीं बटाएंगे तो एक बड़े काम का बोझ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही कहा आप, अगर जा रहे हैं किसी के घर तो हाथ जरूर बटाइए।
0: इसके अलावा बच्चों को भी थोड़ा सा हम व्यस्त रख सकते हैं, उन्हें बच्चों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि दोपहर में वो यहाँ वहाँ ना भटके, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत तेज होती है। और जब हम बच्चों को कहते हैं ना कि दोपहर में थोड़ा सो जाओ, तो वो सोना भी पसंद नहीं करते। तो उन्हें कोई एक्टिविटी करने के लिए आप दे सकते हैं, कुछ भी उन्हें मतलब कशीदाकारी करने को दे दीजिए, उनको सिलाई कढ़ाई सिखा सकते हैं उस समय
1: वो भी। और अगर वो बैठना नहीं चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं चंचल कि आप, वो कहते हैं ना इंडोर ट्रेजर हंट, हाँ। जब उनको ऐसे बड़े बड़े से नाम बता दो ना, तो बच्चे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ भी एक चीज को आप छुपा दीजिए कहीं, हाँ। और फिर उनको बोलना है कि अगले आधे घंटे में हमें ये चीज ढूंढ कर देनी है। तो सच में उन्हें इतना मजा आता है, सारे के सारे लग जाते हैं। हाँ, छुपाना ऐसी जगह है जहां उन्हें तुरंत उनके हाथ में न वो आए।
0: और घर में अगर कोई ऐसा हो जिसे किससे कहानियां सुनाना बड़े मजे से आता हो, तो बच्चे उसे घेरे बैठे रहते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे एक मामा थे, जो कोई मतलब पौराणिक कहानियां नहीं होती थी, बस वो मनगढ़ंत वो कहानी बनाए सुनाए जाते थे हमें। और वो कहानियां उनकी चार चार दिन, पांच पांच दिन खत्म ही नहीं होती थी। हम इंतजार करते थे कि ये इसके आगे क्या हुआ होगा, और वो मन से कुछ भी जोड़कर वो कहानी बनाकर सुनाते थे। इस तरह से बच्चों को आप व्यस्त रख सकते हैं। और या फिर जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती हैं, तो कोई छोटे मोटे काम बच्चों को दीजिए, तो उन्हें घर में काम में हाथ कैसे बटाया जाता है इसकी आदत भी होगी।
1: वो जो पुरानी छुरी जो होती है ना घर में, पुरानी छुरी जिसमें ज्यादा तेज धार नहीं होती, वो हम उनको दे सकते हैं। उनको भिंडी काटने के लिए दीजिए, आलू काटने के लिए दीजिए, बहुत मजा आता है उनको। वो आड़े टेढ़े तिरछे

0: तरीके से काटते हैं, लेकिन जब हमको बना के उनको बताते हैं ना, देखो ये आपकी कटी हुई सब्जी है, तो बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा हमने काटी, वो सब बताते हैं, ये वाले देखो, ये वाला शेप का मेरा है, ये उसका है, इस तरह से बड़े खेल खेलते हैं वो लोग।
1: आप छत का छिड़काव करने को उन्हें कहिए, आंगन में छिड़काव करने कहिए, कूलर में पानी भरने को कहिए, तो छोटे मोटे काम बता सकते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ हरियाणा में 1 जून से बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, और इन छुट्टियों का हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि हमें जाना होता है अपने नाना और मामा के घर पर।
0: हाँ बिल्कुल। और एक और संदेश कह रहा है कि भाई बच्चों की छुट्टियों में तो सच में हम सब माताओं पर तो बड़े भारी पड़ जाते हैं ये दिन। और अभी हमारे बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई हैं, मई के अंत में होने वाली है। रसोई और गर्मी का दोनों का जो है ये जुड़ाव बिल्कुल ऐसा है, उससे तो हम अलग कर ही नहीं सकते, और हम सभी महिलाओं को इसकी कुछ ज्यादा ही हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि गर्मी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप बेशक बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बच्चों को बना के खिलाती होंगी, और ऐसे ही अगर सब महिलाएं सोचने लगें तो फिर क्या ही बात है। तो देखो उनके बच्चों को, जो आप बात कर रही थी ना कि बच्चों से आप कुछ उनसे खाने की तैयारी करा सकते हैं, किचन गार्डन भी लगवा सकते हैं।
1: हाँ
0: उनके हाथ की उगी हुई जब चीजें होंगी ना, तो बड़े वो भी बड़े चाव से देखते हैं कि कैसे
1: और
0: बड़ा
1: इसी
0: हो रहा
1: तरह
0: है।
1: से वो पौधों का संरक्षण करना भी सीख जाएंगे। जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसे किस तरह से बचाना है, और बढ़ते हुए हर दिन देखेंगे उसको, तो उन्हें भी एक अलग आनंद का अनुभव होगा। और गानों में भी कहीं ना कहीं आनंद होता है, तो सुन ले गाना।
0: चलिए

0: कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा और बस इतना ही समय है कि सखियों से ले लें हम इजाजत।
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, मैं उनका परिचय कराती हूं, लेकिन उनके बारे में मैं ये कहूंगी कि वो फिल्म लाइन में स्क्रीन पर एक बहुत ही बुरे इंसान है, बहुत बहुत बुरे इंसान है। लेकिन देखिए कितनी खुशनुमा हंसी है उनकी। मेरे सामने बैठे हैं, बहुत ही उम्दा इंसान है और उनका नाम है सदाशिव अमरापुरकर। सदाशिव जी, मैं खुद अपनी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की तरफ से आपका यहाँ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से आपको कहती हूँ कि नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।
0: और अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
1: अच्छा।
0: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
1: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
0: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
1: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारी पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में,
0: शरारतों में,
1: हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
0: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
1: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे तो छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे।

गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई थी। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में

0: और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांदबीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांदबीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी। इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: और उसके बोल है मेरे दिल में है एक बार।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो हमारा वर्ग है उनको लेकर, कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटियर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा
0: जी,
1: धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आई, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी। और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी
0: जी।
1: प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग।
0: तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया
0: जी।
1: हमारे अंदर, हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना कि थिएटर की जो बात है वो वहां से आपकी शुरुआत हो गई
2: जी।
1: और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई

0: नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है? कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और थिएटर करने लगा। तो फिर उसके बाद उसी वक्त एक साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
0: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
1: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
0: आपको कैसा लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
1: नहीं नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
0: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
1: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड, और वो हम सुनाते थे,
0: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, जी, होता है हेलो फरमाइश।
1: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो।
0: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
1: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
0: पुरानी
1: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
0: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत बहुत अच्छा लगा?
1: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
0: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
1: जी।
0: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
1: जी।

0: पूना पहुंच गए, पूना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, लेकिन पूना से बंबई की तरफ कब आए और कैसे आना हुआ था?
1: नहीं, पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चेत, वो नाटक उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। और नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक जो परीक्षक थे उनका नाम था भिकुपई आंगले, उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहां जाकर मिलो, वहां एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहां फोन किया तो वहां पर रामकृष्ण नाइक करके थे, आज भी है
0: जी,
1: उन्होंने कहा कि आप आइए और मैं वहां गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूंगा लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी उनका नाम शांता भाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है।
0: उन्होंने मेरे अनंत जोक कर रहे हैं।
1: जी जी जी, उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, बड़ा नर्वस हुआ। फिर दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया, बोले
0: उसी रोल के लिए
1: नहीं, हाँ। हमारे पास एक नाटक है जयवंत दलवी ने लिखा है, नाम है बैरिस्टर।
0: वाह, हाँ।

0: विजया मेहता जी डायरेक्ट करने वाली है। अब अच्छे एक्टर हो तो चलो हम विजया जी के पास जाते हैं। मुझे उनके घर ले गए लेकिन वो मिली नहीं। फिर दूसरे दिन हमको गोवा हिंदू एसोसिएशन के ऑफिस में मिली और उन्होंने मुझे कह दिया कि देखो सदाशिव, मैंने इस रोल के लिए पहले ही चुन लिया है एक्टर को और विक्रम गोखले वो काम करने वाला है, तो इस बार हम कुछ नहीं कर सकते। हम फिर मैं वापस आया और दो अच्छे नाटक मेरे हाथ से चले गए, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी, दिल में एक आवाज बज रही थी, आंखों में एक सपना था कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फोन मुझे आया, दूरवांची जोड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आइए।
1: जी
0: मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया था।
1: अरे वाह।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमलापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
0: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
1: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
0: जी
1: जरूर सुनेंगे।

0: उसके बाद मैं ऊपर गया, धारवकर जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिठाया, वो बातें करने लगे। अब वो उनसे कहने लगे कि मैंने जो आपको कहा था वो नगर में रहता है वो आदमी सदाशिव, उनको लेकर आओ ना, आप किसी इन जवान लड़के को लाएंगे तो कैसा होगा, वो तो प्रोफेसर का रोल है। तो उन्होंने कहा कि सर ये वही है सदाशिव अमरापुरकर जी। तो वो दो मिनट तक मुझे घूरते रहे, बोले आपने वो मास्टर का रोल किया था उस नाटक में और आप तो बूढ़े लग रहे थे उसमें और आप तो इतने जवान हैं, ये कैसे हुआ। तो मैंने मन में कहा ये दाद है या क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं वही हूँ। अरे बाप रे, फिर उन्होंने जो मेरी तारीफ की है बहुत तारीफ की। फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं आप, ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे उनका ही वो स्क्रिप्ट था, अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गाँव आया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे आइए आइए बैठिए, लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बार जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ?
0: कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था, वो दो रोल मैंने। और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरे जी के साथ काम किया और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था। और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी।
1: अर्ध सत्य।

0: कारामा शेट्टी।
1: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी फिट्टी का रोल दे रहे, ढाई तीन सीन गए हैं, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है, मैंने छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो, स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
0: जी।
1: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था, मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। दो ढाई दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
0: भूल भी गया
1: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया,
0: क्योंकि आपके अर्धसत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं।
1: जी, जी।
0: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया और आप भूल गए।
1: जी जी, मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था। और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ, मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है, आप आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है, मैंने एक फिल्म में काम किया है। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे, वहां भी नाचने लगे, कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले, अभी इधर ही रहो, खुद उधर जाने की जरूरत नहीं, अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया,
0: प्रीमियर में नहीं गया,
1: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात यह हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी। और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी, कागज के फूल, और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी। और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घोंट दूं। ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डालें। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: उस फिल्म में एक बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहां के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है
0: जी।
1: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी तो कैसे, मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे
0: जी।
1: तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था, और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
0: जी।
1: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
0: जी।
1: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था, और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
0: जी।
1: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
0: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं कहीं पे? मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
1: नहीं, मैं एक्टर हूँ, और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है। इसीलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है, लेकिन हमें तालियां मिलती है
0: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
1: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
0: जी,
1: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का यूनिक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
0: महारानी
1: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी यूनिक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
0: जी।
1: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़ी है। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
0: जी।
1: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए, और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का

0: का अच्छा काम करेगा और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले।
1: जी जी,
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है, तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था। हाँ,
1: कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो वहाँ एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है, लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी, वो जो यादगार है वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी,
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत, देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग, हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह, लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है, मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता
1: हूँ। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था, मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया, शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ।

0: उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहां मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर इक्की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: इक्की माया ही हो गई जैसे।
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: उसको काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी,
1: ये
0: जी। बहुत दिया देने वाले ने तुझको,

0: आप विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा। और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे जाती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे।

ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली. और आज यहाँ मेरे साथ हैं
1: जी बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और बड़ा ही मज़ेदार सा प्रोग्राम आज की शाम आप एंजॉय करेंगे। मंगलवार की शाम और क्विज प्रोग्राम आज राहुल और डॉली के साथ एंजॉय करने वाले हैं प्रोग्राम युवाणी में। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अतरंगी मज़ेदार, कल्चर को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत मज़ेदार से सवाल जो है वो आपसे पूछ रहेंगे और आपको उनका जवाब देना है।
0: बिल्कुल. और इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस फन मस्ती भरे प्रोग्राम की इस पहली गीत के साथ.

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से इस मजेदार सी शाम में, जहाँ प्रोग्राम युवाने को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इस आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और डॉली। आज की शाम पहला सवाल मैं तुमसे ही पूछ लेता हूँ। हमारे श्रोताओं को बताओ कि भैया आज जो हमारे श्रोता हमें कॉल कर सकते हैं वो नंबर क्या है?
1: बिल्कुल, ये जवाब तो मैं बिना ऑप्शंस के दे सकती हूँ, और वो जवाब ये है कि 02912553300 या फिर 02912554300।
0: जी हाँ बिल्कुल, 02915253300 या फिर 02915254300 पर आप हमारे साथ यूथ क्विज प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जहाँ कुछ मजेदार से सवाल आपको पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब आपको देना है। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे और हमारे साथ जरूर चुनिन रहिएगा।

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से इस मजेदार शाम मेरे प्रोग्राम युवाणी में और यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल सुन रहे हैं और हमारे साथ आज के पहले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं। चलिए जी इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले में सबसे पहले आपका नाम बताइए जी, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300, 02915254300 पर। यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुका है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम निर्मा है।
0: निर्मा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: सोमेश्वर से।
0: अच्छा, आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं कक्षा 1 में पढ़ती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए जी, यूथ क्विज प्रोग्राम में आज का आपका पहला सवाल।
2: बिल्कुल, और पहला सवाल है, सबसे तेज ग्रह कौन सा है? विच इज द फास्टेस्ट प्लैनेट अराउंड द सन? आपके ऑप्शंस हैं जी
1: फिर से बोलो तो सुनाई नहीं दिया।
2: जी, सबसे तेज ग्रह यानी सबसे तेज फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बुध यानी मर्क्यूरी, पृथ्वी यानी अर्थ, शनि यानी सैटर्न और मंगल यानी कि मार्स।
0: क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
1: सोच रही हूँ।
0: सोच रहे हो? चलो सोचो सोचो, जल्दी सोचो थोड़ा।
2: आपका टाइमर स्टार्ट होने वाला है।
0: फाइव,
2: फोर,
0: थ्री,
2: टू। बृहस्पति। बृहस्पति तो ऑप्शन में ही नहीं है।
0: एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, कनेक्ट हुए, अगली बार फिर से जुड़िएगा यूथ क्विज प्रोग्राम में।
2: बिल्कुल, और इस सवाल का सही जवाब मैं आपको बताते चलूंगी। इसका सही जवाब है मर्क्यूरी यानी कि बुध, जो कि है सबसे तेज ग्रह।
0: क्या बात है, फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे मजेदार से गाने। आपके लिए अगला गाना पेश है।

0: वेलकम बैक है जी। गाने के बीच में हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं और अगले कॉलर भी फिर से हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: सर मेरा नाम रवि है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: अरे रवि, और 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं आप?
1: राजस्थान जोधपुर बूढ़ा विष्णु यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। यूथ क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की शाम आपके लिए ये रहा आपका पहला सवाल।
2: पहला सवाल है, गति की एसआई इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। आपके ऑप्शंस है मीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर या न्यूटन।
1: किलोमीटर।
2: क्या आप श्योर हैं अपने जवाब को लेकर?
1: हाँ।
2: ओके, तो आपका जवाब है किलोमीटर, जो कि गलत है। इसका सही जवाब है मीटर पर सेकंड।
0: क्या बात रवि, आपने बहुत अच्छी कोशिश करी। आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते तो जुड़ सकते हैं 02915353000, 02915353000 पर।

0: वेलकम बैक टू युवाणी दोस्तों. जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी चल रहा है युवाओं का क्विज प्रोग्राम, तो हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं. हेलो,
1: नमस्कार मैडम.
0: नमस्ते. आपका नाम क्या है?
1: कृष्णा राजपुरोहित.
0: क्या बात है कृष्णा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
1: मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ.
0: ओके, 7th क्लास में पढ़ते हो, तो आपके लिए हमारे पास आपका आज का सवाल है ये. सवाल है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? बाय विच प्रोसेस डू प्लांट

0: प्लांट्स मेक देयर फूड। आपके ऑप्शंस है श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, पाचन यानी कि डाइजेशन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, और उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन।
1: प्रकाश।
0: प्रकाश, क्या आप श्योर हैं इस बारे में?
1: हाँ
0: बिल्कुल सही जवाब है।
2: क्या बात है, आपने बहुत और सही तरीके से आज की शाम आपका दूसरा सवाल।
0: आपका दूसरा सवाल है, मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है? विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? आपके ऑप्शंस है फेफड़े यानी कि लंग्स, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, हृदय, हार्ट, गुर्दा, किडनी। क्या आप श्योर हैं?
1: हाँ
0: बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी सिलसिले में चलो आज का आपका ये आखिरी सवाल, कौन सा ग्रह रेड प्लैनेट कहलाता है? और आपके ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस है पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि।
1: मंगल।
0: बिल्कुल सही जवाब।
2: क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, आपने इस सही तरीके से यूथ क्विज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और सारे ही सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300, 02915253300 पर।

बस तुमसे मिलने की, हमारे हमारे कॉलर से मिलने की देर थी और कॉलर ने भी कहा बिल्कुल हम भी तैयार हैं जी आपके लिए, और अगले कॉलर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और स्वागत है आपका जी। नमस्कार, क्या नाम है? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02-91-25-53-300 पर, 02-91-25-54-300 पर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: क्या बात है जी, वेलकम बैक आपका एक बार फिर से। और हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ते चले जा रहे हैं, अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: जी सर, मेरा नाम जतिन है।
0: अच्छा जतिन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जोधपुर
0: जोधपुर से
1: जोधपुर
0: ही?
1: सुल्तान नगर
0: अच्छा, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: से। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्या अच्छा लगता है आपको पढ़ना, पढ़ाई करने में?
1: वैसे तो सारी सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, पर संगीत और हिंदी बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, संगीत और हिंदी बहुत अच्छा लगता है आपको।
1: जी सर।
0: तो कोई आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या फिर कोई गाना गाते हैं, आप क्या करते हैं?
1: नहीं, मैं गाना नहीं गाता, मैं तो बजाता हूँ ढोलक, तबला,
0: अरे
1: हारमोनियम,
0: वाह, अरे
1: बांसुरी।
0: वाह, क्या बात है, आप एक स्टूडेंट होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी हैं, कलाकार भी हैं। बहुत खूब,
1: हाँ
0: बहुत
1: सर,
0: बढ़िया,
1: सीख ही रहा हूँ
0: चलिए,
1: सर।
0: क्या बात है, बहुत खूब। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए ये रहा आपका पहला सवाल।
2: बिल्कुल, आपका पहला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, यानी हु डिस्कवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। आपके ऑप्शंस है आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो और एडिसन।
1: मैम, न्यूटन।
2: क्या आप श्योर हैं इसके लिए?
1: जी मैम।
2: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
0: तो बिल्कुल, आज की शाम आपके लिए ये रहा आपका दूसरा सवाल। आपको बताना है जोधपुर की स्थापना किस राजा ने करी। आपके पास ऑप्शन है राव बीका, अमर सिंह, राव जोधा या फिर समय सिंह।
1: सर, राव जो था।
0: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं?

0: सर।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज ही के दिन 12 मई 1459 को राठौड़ वंश के मुखिया जो कि राव जोधा हैं, उन्होंने इसकी स्थापना करी। संस्थापक राव जोधा, मारवाड़ के जो शासक, और स्थापना की तिथि आपको जैसे कि बताई गई 12 मई 1459, और ये शहर जो है वो मंडोर के स्थान पर बसाया गया था। आज की शाम
0: जी
1: आपके लिए तीसरा सवाल ये रहा।
2: बिल्कुल। आपका तीसरा सवाल है, तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है? हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन तीन ताल? आपके ऑप्शंस है 8, 10, 12, 16।
0: सोलह
2: क्या आप श्योर हैं?
0: जी मैम।
2: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की शाम तो जुड़ सकते हैं यूथ क्विज प्रोग्राम में, जो कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 02-9125-53-300, 02-9125-53-300 पर। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने आज की शाम। आपके लिए अगला गाना ये रहा था।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
6: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
6: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे
6: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
6: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
6: तो पैसे गवाओगे,
8: RBI कहता है।
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
11: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
10: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: पैपॉन के दिलकश आवाज में बेहतरीन सब म्यूजिकल ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अनीता है।
0: अनीता, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: सुमित्र से कर रहे हैं
0: जी। कहाँ से बात
1: मेरा नाम सुमित्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं 8 क्लास में पढ़ रही हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये रहा,
2: सवाल है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका है? Approximately how much of earth is covered with water? आपके ऑप्शंस है 21%, 51%, 61% और 71%।
1: 71%।
2: क्या आप श्योर हैं?
1: हाँ।
2: ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
0: क्या बात है। चलिए जी, आज की शाम आपके लिए ये रहा आपका दूसरा सवाल। आपको बताना है कुंभलगढ़ जो किला है वो कहां पर बना हुआ है, कहां पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा ऑप्शन राजसमंद, तीसरा ऑप्शन अलवर या फिर चौथा ऑप्शन कोटा।
1: शायद अलवर हो सकता है।
0: कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है?

0: जी हाँ, काउंटडाउन शुरू होने वाला है, जल्दी बताइए।
1: जोधपुर।
0: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं? चलिए जी, आपका ये जो जवाब है वो गलत है। इस सवाल का सही जवाब है कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजसमंद में स्थित है। बहुत ही शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोतो एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूथ क्विज प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम योर्नी को इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आपको लेकर चलते एक खास बातचीत की तरफ। वर्ल्ड नर्सिंग डे के मौके पर नर्सिंग ऑफिसर सुमन, जो कि एम्स जोधपुर में कार्यरत है, से अदिति मराड़िया की बातचीत।
1: सेवा जिनका धर्म है, केयर जिनकी पहचान है और डेडिकेशन जिनकी ताकत है। आज हम बात करने वाले हैं उन रियल लाइफ हीरोज की जो हर मुश्किल वक्त में पेशेंट्स के साथ खड़े रहते हैं, और वो हैं नर्सेस। और इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नर्सिंग ऑफिसर सुमन जी, जो कई सालों से हेल्थ केयर फील्ड में अपनी सेवा दे रही हैं। सुमन जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: थैंक यू मैडम।
1: आपके बारे में हम जानना चाहेंगे थोड़ा, ताकि हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो बेटर आपको समझ पाए।
2: जी, मैं सुमन, नर्सिंग ऑफिसर, अभी एम्स जोधपुर में कार्यरत हूँ। और आज नर्सेस डे पे मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुमन जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आज वर्ल्ड नर्सेस डे है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं?
2: सबसे पहले तो मैं जितने भी नर्सिंग कैडियर के लोग हैं उनको आज नर्सेस डे पे, नर्सिंग डे की बहुत सारी शुभकामना देना चाहूँगी। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को नर्सेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि नर्सेस डे सबसे पहले तो क्यों मनाया जाता है, क्यों, किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जो नर्सेस है पूरे साल अपने डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से जो काम करते हैं, उनको आज के दिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि अप्रिशिएशन का दिन है ये। नर्सेस के लिए आज अप्रिशिएशन का दिन है, इसलिए नर्सेस डे ये मनाया क्यों जाता है। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, इन्होंने डिसाइड किया है कि जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, बहुत सारे लोग हैं जो नर्सिंग से नहीं है, वो इस बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक लेडी थे जिसको लेडी विद लैम्प भी कहते हैं। वो जब क्रीमियन वॉर हुआ था, उस टाइम जो सोल्जर्स को, जिस सोल्जर्स जो अफेक्टेड हुए थे, जिनको घाव लगे, तो उनका सेवा करने के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, वो नाइट में उनका सबका सेवा करते थे, उनके वुंड का केयर करते थे, उन्होंने सैनिटेशन को और हाइजीन को बहुत प्रमोट किया था।
1: अच्छा,
2: तो उन्होंने उनके वुंड की केयर करते थे, और नाइट में जो है वो लैंप के साथ जा जाके और वर्क करते थे, इसलिए उनको लेडी विथ लैंप भी कहते हैं। और आज जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डेट के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ के रूप में।
1: अच्छा,
2: है ना। और उसके साथ ही जो है वो ये मतलब मैसेज देता है, और जो हार्ड वर्किंग नर्सेस है जो कंटिन्यू पूरे साल काम करते हैं, उनको अप्रिशिएशन के लिए भी नर्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है।
1: ओह, काफ़ी इंस्पायरिंग डे है ये आज के लिए, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है, और अभी तक आप सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस डेट को इतनी इम्पोर्टेंस मिली है, तो वो काफ़ी अच्छी है। हर बार इसकी एक थीम होती है, तो इस बार की जो थीम है वो क्या है?
2: जी मैम, बिल्कुल, जो अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो नर्सेस डे पे एक थीम रखते हैं, जैसे कि हर बार अलग अलग थीम होता है, इस बार जो थीम रखी है वो है आवर नर्सेस, आवर नर्सेस, आवर फ्यूचर, एम्पावर नर्सेस, सेव लाइव्स। तो इसका मतलब ये है कि जो अपनी नर्सेस है उनको अगर एम्पावर्ड किया जाएगा,

0: उन्हें सेफ वर्क प्लेस दिया जाएगा, उन्हें लीडरशिप का मौका दिया जाएगा, तो वो एम्पावर्ड होंगी, वो लाइफ को सेव कर पाएंगी और जो हेल्थ प्रोफेशन है उनको और स्ट्रेंथन अप कर पाएंगी. तो इसलिए इस बार का ये जो थीम रखा है वो है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेस सेव द लाइफ.
1: इसका डीप मीनिंग है काफी.
0: बिल्कुल.
1: और
0: बिल्कुल.
1: इस थीम को सेलिब्रेट करना भी एक बड़ी बात है. तो सुमन जी, ये वर्ल्ड नर्सेस डे को कैसे सेलिब्रेट करा जाता है पूरे दुनिया भर में, और अगर इसके फंक्शंस होते हैं तो कैसे फंक्शंस रहते हैं?
0: बिल्कुल मैडम, इसको सेलिब्रेट करना भी जरूरी है इसलिए क्योंकि ये मोटिवेशन देगा, ये अप्रिसिएशन देगा, और पूरे साल जो काम करते हैं उनके लिए अप्रिसिएशन भी जरूरी है जो कि आगे काम में भी हेल्प करेगा, नहीं तो रोज काम करते रहेंगे और कुछ मोटिवेशन. तो ये एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है या वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे को 12 मई को, जो कि जैसे कि देखा जाए तो इसमें जो भी नर्सेस है, जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, और भी जिन जिन का जैसे नर्सेस है वो अपना वो तो दिखा, जो भी मेडिकल प्रोफेशन है, हेल्थ प्रोफेशन है, वो वहाँ तो अपना टैलेंट दिखा पाते हैं, जो उनका जो पर्सनल हॉबीज है, पर्सनल टैलेंट है. बहुत सारी नर्सेस है जो कि अपने प्रोफेशन के अलावा भी टैलेंटेड है, तो वो टैलेंट देखने का भी मौका मिलता है सबको कि हाँ अपने प्रोफेशन के साथ साथ कैसे तो कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए जाते हैं, स्किट्स होती है ना, तो उसमें अलग अलग लेवल पे. और ये जो होता है एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है, नर्सेस वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. तो एवरी डे कुछ ना कुछ होता है, प्रोग्राम्स रखे जाते हैं और 12 मई को मेन प्रोग्राम रखा जाता है. वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन है जो कि बहुत जरूरी भी है.
1: बिल्कुल. और ये एक मी टाइम की तरह आप सेलिब्रेट करते हैं इस पूरे वीक को. ये अवेयरनेस क्या फैलाती है हमारे पब्लिक के लिए?
0: बिल्कुल. ये जो है जैसे कि सारे लोग जो सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है वो नर्सिंग प्रोफेशन से हो, वो विदाउट नर्सिंग प्रोफेशन से भी है, तो वो अवेयरनेस यही फैलाती है कि किस जो नर्सेस है वो अपने समाज के लिए क्यों जरूरी है और क्या रोल है उनका हमारे समाज में, हॉस्पिटल्स में. तो कह सकते हैं जो नर्सेस होती हैं, वैसे एक ही लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि नर्सेस जो है वो बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल है. और पब्लिक को मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी आम जनता मेरे को सुन रही है, कि आप जब भी हॉस्पिटल आएँ, हर कोई ना कोई इंसान अपनी लाइफ में एवरीडे में फेस करता है नर्सेस को, डॉक्टर्स को, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब भी आएँ उनको रेस्पेक्ट दें, उनके काम को, उनके डेडिकेशन को आप अप्रिशिएट करें, और उन्हें डिसरेस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि आज वो हैं तो आज हेल्थ प्रोफेशन है, उनकी स्ट्रेंथ है. आप उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, तो एक हेल्थ प्रोफेशन स्ट्रेंथन अप होगा और अपने समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल और एक हॉस्पिटल ये एक बहुत इमरजेंसी है जो कि स्ट्रेंथन अप होना जरूरी है, समाज के लिए बहुत जरूरी है, और नर्सेस एम्पावर्ड होंगी तो हेल्थ प्रोफेशन वो स्ट्रेंथन अप होगा. तो इसलिए रेस्पेक्ट करें सब लोग.
1: नर्सेस जो हैं उनको इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, और जैसा कि हम सब देखते हैं कि डॉक्टर्स हेड पोजीशन में हैं तो वो ही सारा काम संभालते होंगे, पर नहीं, जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं तब वो नर्सेस ही जो हैं सारा केस हैंडल करती हैं, और उनको बेटर जो फैमिली है उनको संभालती भी हैं. इमरजेंसी केसेस होते हैं तो उसमें आपका कैसा रोल रहता है वो थोड़ा सा बताइए.
0: बिल्कुल बिल्कुल. ये देखते हैं बहुत जगह, अभी तो काफ़ी फिर भी कम हो गया है, जैसे जैसे पब्लिक अवेयर हुई है और आजकल एजुकेशन बढ़ गई है लोगों को, तो लोगों को पता है कि नर्सिंग प्रोफेशन भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग प्रोफेशन है, तो अब तो रेस्पेक्ट का लेवल काफ़ी हाई हो गया है. पर कुछ अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसा देखने को मिलता है, सुनते हैं कि इमरजेंसी केसेस होते हैं, फैमिली आती है, उनमें एक्सेप्टेंस नहीं होती अपनी फैमिली को लेके कि ये सब कैसे हो गया, वो डिनाइल करते हैं, कुछ फैमिली के साथ गलत होता है तो वो नहीं अग्रेसिव होते हैं, तो वो अपना अग्रेशन जो होता है वो नर्सेस पे, डॉक्टर पे कहीं ना कहीं उनका निकलता है. तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी जो आम जनता सुनती है, कितनी भी इमरजेंसी हो तो आप लोग कामली हैंडल करें चीज़ों को, थोड़ा सा पेशेंस रखें, रेस्पेक्ट के साथ डील करें, और डॉक्टर्स का जितना इम्पोर्टेंट रोल है उतना भी नर्सेस का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल है. अगर वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो उन्हें फॉलो कौन करेगा? डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए नर्सेस हैं, और वो डॉक्टर्स जो है वो कुछ टाइम के लिए पेशेंट को देख पाते हैं, तो नर्सेस जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट बेड साइड पेशेंट को केयर देती है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, अपना डेडिकेशन दिखाती है, तो थोड़ा सब लोग रेस्पेक्ट के साथ डील करें.
1: बिल्कुल.
0: कहना चाहूंगी
1: ये जरूरी है कि हम नर्सेस को भी उतना ही सपोर्ट दें, उतना ही पावर दें जितना डॉक्टर का होता है. आप जैसे नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो जो हमारे जो लिसनर्स हैं जो इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं?
0: बिल्कुल. जो बच्चे हाल ही में 12th पास्ट है या फिर जो आना चाहते हैं और तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जिसके पास 12th से बायोलॉजी सब्जेक्ट हो वो एंट्रेंस

0: एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसके बाद भी जो है वो अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जहाँ से भी करना चाहें उसके थ्रू वो ज्वाइन कर सकते हैं. और उसका भी पोस्ट एग्जाम भी होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन भी जो एग्जाम होता है उसके बाद में आपको जो है वो कम्प्लीट प्रोफेशन मिलता है.
1: अच्छा, इस सब का पूरा टाइमलाइन क्या है?
0: टाइमलाइन यही है कि आप ट्वेल्थ के बाद पहले तो आपको प्रिपरेशन चाहिए, ट्वेल्थ की भी, इलेवन ट्वेल्थ की आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए. जो भी बच्चे इलेवन ट्वेल्थ को थोड़ा डीपली पढ़े, क्योंकि उससे बाहर तो नहीं पूछेंगे, उसको अच्छे से डीपली पढ़े तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाते हैं. जो भी नर्सिंग का एग्जाम देते हैं, जैसे कि अपने राजस्थान में है तो राजस्थान पे भी होता है, RUHS से होते हैं, अपने स्टेट लेवल के होते हैं और सेंट्रल लेवल के होते हैं एंट्रेंस एग्जाम होते हैं. तो आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें, उसके लिए जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद में आपका 4 ईयर का कोर्स होता है, बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है. वो कंप्लीट होने के बाद में आप पूरा ग्रेजुएट होते हैं नर्सिंग के अंडर में. और उसके बाद में जो नॉर्सेट अभी आया है, अभी नॉर्सेट चल रहा है, हमारे स्टेट के लेवल पे भी चलते हैं और सेंट्रल के लेवल पे नॉर्सेट चलता है, जो कि साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो देके आप ज्वाइन कर सकते हैं.
1: जो नॉन नर्सिंग प्रोफेशन जो है, जो नर्स और डॉक्टर और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि उनको सपोर्ट देने के लिए कि ये प्रोफेशन भी एक प्रोफेशन है, उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे?
0: यस मैडम, बिल्कुल. लोग जो है वो करियर को लेके थोड़ा ऐसा लगता है, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको, पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी, हर पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, उनमें एक्सेप्टेंस कम होती है कि आप नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन करें. जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था तब हो सकता है मेरे पेरेंट्स को भी लग रहा था कि नहीं, आप नर्सिंग ना ज्वाइन करके आप MBBS करें या फिर आप कुछ इससे अप करें, पर अब मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं लगता है, क्योंकि जो एम्पावरमेंट उन्हें दिखती है, जो एक अलग चीज़ दिखती है, और मुझे भी अब ऐसा लगता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेंथ अप है और एक इनफ सफिशिएंट प्रोफेशन है. और अपने आप में जैसे कि ये एक दो अलग अलग ब्रांच है, तो ये जैसे कि डॉक्टर्स के बिना नर्सेस नहीं है, नर्सेस के बिना डॉक्टर नहीं है, तो बिल्कुल आप बहुत ही स्ट्रांग प्रोफेशन है, आप एक बार जाके देखें. और मैं तो समाज के लिए तो ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने प्रोफेशन के साथ साथ आप जो है वो समाज की सेवा का, मानवता का और लोगों की ब्लेसिंग का यहाँ मौका मिलता है आपको, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत स्ट्रांग प्रोफेशन है और बिल्कुल जाना चाहिए जो इंटरेस्टेड है उनको तो, और पेरेंट्स को तो भेजना चाहिए अपने बच्चों को.
1: हर चीज का पॉजिटिव साइड भी होता है, उतना ही नेगेटिव साइड भी होता है. तो आपके इस प्रोफेशन में आपको क्या लगता है कि नेगेटिव साइड क्या है और आपको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ा?
0: मैं मेरा पर्सनली नहीं बता कह सकती मैडम, पर जो भी नर्सिंग प्रोफेशन के लोग हैं, हाँ उनको मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कंटिन्यूटी ड्यूटी की कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ती है, और काफ़ी बार जो होता है आपको इमरजेंसी सिचुएशन में थोड़ा सा दिक्कत होती है. इमरजेंसी सिचुएशन में आपको पेशेंट को भी संभालना होता है और उस सिचुएशन में आपको उनकी फैमिली को भी संभालना होता है, तो थोड़ा सा उस टाइम दिक्कत आती है. और एक दिक्कत ये आती है मैडम कि हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इमोशंस है, पर जब आप फैमिली को, जो यंग पेशेंट होते हैं या फिर कुछ अनहैपनिंग ऐसा हो जाती है फैमिली के साथ जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हमें हमारे इमोशन कंट्रोल करना उस टाइम बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करके पेशेंट की लाइफ को सेव करना और उनकी फैमिली को उस टाइम समझाना, सपोर्ट करना, ये सबसे ज़रूरी है. पर ये सबसे मुश्किल भी है क्योंकि हर एक इंसान इमोशनल भी होता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में जब खुद खड़े रहते हैं तो खुद को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इमरजेंसी के साथ साथ पेशेंट को भी देखना और कुछ फैमिली अग्रेसिव भी हो जाए तब उनको भी कंट्रोल करना, तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है.
1: आप सब मेंटल हेल्थ को कैसे आप रेगुलेट करते हैं, कैसे आप उसको हेल्दी रखते हैं?
0: बिल्कुल, अपनी हेल्थ को भी, क्या हम हेल्दी होंगे तभी हम दूसरों को सपोर्ट कर पाएंगे, दूसरों को मेंटली सपोर्ट कर पाएंगे या फिर उनको हेल्थ ट्रीट कर पाएंगे. तो वो यही है कि मैडम पहले तो हमारा काम होना बहुत ज़रूरी है, पीस में रहना बहुत ज़रूरी है. तो हम पहले चाहे कैसी भी सिचुएशन आए अग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि हम अग्रेसिव होंगे तो सिचुएशन और पैनिक हो जाएगी, तो हमें पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल काम रहना है और हर सिचुएशन चाहे वो कितनी भी टफ हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, खुद को काम रखते हुए उसे हैंडल करना है और फैमिली को भी समझाना है. और एज ए टीम वर्क काम करते हैं तो जो भी आपका लोड है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. डॉक्टर्स के साथ मिलकर आप टीम वर्क से काम करते हो, अपने हेल्थ प्रोफेशंस के लोगों के साथ टीम वर्क करते हो तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपका वर्क, तो थोड़ा इस हिसाब से हम लोग अपना मेंटल स्ट्रेस जो है वो मैनेज कर पाते हैं.
1: सुमन जी आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, आपने काफी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। आज हमें नर्सिंग प्रोफेशन की असली वैल्यू और डेडिकेशन के बारे में पता चला और बहुत कुछ जानने को भी मिला। वर्ल्ड

0: नर्सेस डे के इस स्पेशल ओकेजन पर हम सभी नर्सेस को सैल्यूट करते हैं और उनके हार्ड वर्क के लिए दिल से थैंक यू भी कहते हैं. सुमन जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड नर्सिंग डे के मौके पर नर्सिंग ऑफिसर सुमन से अदिति मरडिया की बातचीत.

0: क्या बात है, ठीक, क्या बात है। बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, और इसी बीच हमारे साथ अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं। चलिए जी, इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले में सबसे पहले अपना नाम बताइए साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
1: इकरामुद्दीन बोल रहा हूँ, ज्योति नगर चांदना बाकर से। सभी जोधपुर वासियों को जोधपुर स्थापना दिवस की हार्दिक।
0: बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब।
1: और
0: आपकी
1: आपको तो इतनी ज्यादा मुबारकबाद कि आप इतनी गर्मी के अंदर हमारा हौसला अफजाई करने के लिए बैठे हैं।
0: अरे साहब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूथ कुछ प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: सुन रहा था इतनी देर से प्रोग्राम आपका सुन रहा था, और इतनी मतलब कम से कोशिश कर रहा था सर आपसे बात करने की।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की शाम यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका ये रहा पहला सवाल।
2: आपका पहला सवाल है, डॉग स्टार किसे कहा जाता है? विच स्टार इज कॉल्ड द डॉग स्टार? आपके ऑप्शंस है पोल स्टार, सीरियस, अल्बडेरन, वेगा।
1: वेगा,
2: क्या आप श्योर हैं?
1: जी।
2: आपका ये जवाब गलत है, इसका सही जवाब है सीरियस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अगर और भी कॉलर अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300, 02915253300 पर।

0: तो श्रोताओं, आज हमने सुने प्यारे प्यारे से गाने और की आपसे प्यारी प्यारी सी बातें और पूछे अतरंगी अतरंगी से सवाल, जहां मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर डॉली और मेरे साथ
1: जो है बिल्कुल इस आवाज का नाम राहुल। और आज के इस यूथ क्विज प्रोग्राम में बड़ी मजेदार सी बातचीत रही। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन मनीष कुमार सोलंकी और राजेश लामरोड, और हमारे साथ कंसोल पे मुस्कान। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ
0: आपकी रेडियो हम सफर डॉली।
1: चलिए नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो बड़ी मोनिका, प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर के साथ। सिर्फ और सिर्फ एफएम सन सिटी पर। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार आज के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम की थीम थोड़ी सीरियस है पर बेहद ज़रूरी है। तो जानेंगे क्या है आज की थीम, लेकिन पहले आप इंजॉय कीजिए ये म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6। उम्मीद है मेहरानगढ़ की ओट में सूरज के ढलने के साथ ही आपकी चाय की चुस्की एकदम कड़क होगी। पर आज चाय की चुस्की के साथ आप अपनी खिड़की के बाहर जरा झांक के देखिए। वो जो हमारे जोधपुर की सतरंगी शाम हुआ करती थी, वो अब थोड़ी सी धुंधली लग रही है। आज हम सिर्फ गानों की धुनों में ही नहीं खोएंगे, बल्कि आज बात करेंगे उस हवा की जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और उस गर्मी की जो आजकल सिर्फ हमारी मारवाड़ी मिजाज में नहीं बल्कि हमारे पूरे ग्लोब में बढ़ रही है। तो बात करेंगे आज के थीम पर इस म्यूजिकल के ट्रैक के बाद।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: किसी शायर ने क्या खूब लिखा है दोस्तों, पेड़ काट कर जब थक गया वो शख्स तो जरा सी धूप देखकर फिर रोने लगा। भूल गया था शायद कि जो साया कल था उसे उसने अपने ही हाथों से खो दिया। बिल्कुल सही। आज का टॉपिक वैसे तो आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा गैस कर लिया होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आज का टॉपिक है पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और हमारी प्यारी सी कुदरत यानी नेचर। चले शाम को थोड़ा अवेयर बनाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ यानी आपकी अपनी रेडियो बड़ी मोहनिका के साथ सिर्फ FM सन सिटी पर।

वेलकम बैक जोधपुर, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर। और अभी जो गाना हमने सुना उसमें ठंडी हवाओं की, पंछियों की और नदियों का जिक्र हो रहा था, पर सच तो ये है कि ये ठंडी हवाएं अब स्मॉग और डस्ट का कॉकटेल बनती जा रही है। पता है दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। हमने इस कुदरत से सिर्फ लेना सीखा है। हमने सोचा गाड़ियाँ बढ़ेगी तो टशन बढ़ेगा, फैक्ट्रियाँ लगेगी तो पैसा बरसेगा, पर इस तरक्की के चक्कर में हमने अपनी जड़ें ही दाव पर लगा दी। आज हालात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम का रिदम बिगड़ गया है। कभी बेमौसम बरसात की मावट का पता नहीं चलता, तो कभी इतनी गर्मी कि कायलाना का पानी भी खौलने लगता है। प्रकृति हमसे बदला नहीं लेती, वो तो बस बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। अगर हम उसे कचरा और धुआं देंगे तो रिटर्न गिफ्ट में साफ हवा तो मिलने नहीं वाली है दोस्तों।

0: अपना सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमराही मोनिका। दोस्तों, कल मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली और वो बोलने लगी कि मोनिका, आजकल पुरानी वाली इम्यूनिटी नहीं रही, बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, कभी उनको जुखाम खांसी होती है तो कभी उनको कोई ना कोई स्किन एलर्जी। तो बात तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब हवा में जहर होगा तो फेफड़े गरबा तो नहीं करेंगे। पुराने लोग कहते थे ना, जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन आजकल तो अन्न, जल और वायु तीनों में ही मिलावट है। हम विटामिन की गोलियां तो खा रहे हैं, पर वो ताज़ी हवा भूल ही गए हैं जो कभी बेफिक्र होकर फ्री में मिलती थी। कंक्रीट के जंगल बनाने की होड़ में हमने असली जंगल काट दिए हैं, और सिर्फ हवा ही क्यों, हमारा पानी। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, पर क्या हम अपने ही जल स्रोत को साफ रख रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बर्फ नहीं पिघला रही है, वो हमारे कुओं तालाबों को सूखा कर रही है दोस्तों।

दोस्तों, प्रॉब्लम तो है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर, कुछ टिप्स को फॉलो करकर इस प्रॉब्लम को थोड़ा कम किया जा सकता है। जैसे कि हफ्ते में एक दिन नो कार्ड डे ट्राई करें, कि पास की दुकान तक जाने के लिए पैदल जाओ, थोड़ी बातें बातें करते करते रास्ता भी निकल जाएगा और हम जो सामान लेने के लिए गए हैं वो सामान भी आ जाएगा। और उससे होगा ये कि हम जो फ्यूल जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है, तो उसमें थोड़ा सा हम हेल्प कर पाएंगे नेचर को। और अपने बर्थडे के दिन या फिर कोई भी स्पेशल डे आप जो सेलिब्रेट करते हो केक के साथ, तो केक के साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि एक खिजड़ी का या नीम का या कोई भी पेड़ या पौधा ज़रूर लगाओ। तो दोस्तों, हम और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अलविदा कहें। पानी की हर बूंद कीमती है, तो इस हर एक बूंद को बचाने की कोशिश करें। गीला और सूखा कचरा जो हमारे घरों में होता है उनको अलग अलग रखें और उनको डस्टबिन में ही डालें। बिजली जो हम यूज़ करते हैं उसको भी जहाँ तक हो सके हम उसको सेव करें, ताकि हमारी जो अर्थ है वो भी खुश रह सके। और जो हमारे पंछी हैं उनके लिए अभी गर्मी के दिनों में पानी की व्यवस्था आप करें। पंछी हो, पक्षी हो या फिर पशु, सबके लिए पानी की जो भी आप कर सकते हैं कि छोटी सी प्याली रख दें जिसमें आप पानी भर के रख सकते हैं, या एक कुंडी बनाएं जिसके अंदर आप पानी डाल के रखें, ताकि जो रास्ते में चलते हुए जानवर है, पालतू जानवर या फिर गाय भैंस कोई भी, वो पानी पी सके। दोस्तों, हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कुदरत है तो हम हैं।

मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।

घड़ी की सुइयां सात की तरफ भाग रही है और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। जाते जाते बस एक बात दिल से कहना चाहती हूँ कि हम इस धरती के मालिक नहीं हैं, बस किराएदार हैं। और एक अच्छे किराएदार का फ़र्ज है कि वो घर को संभाल कर रखे ताकि अगला जो भी आए वो रहने लायक जगह पा सके। तो वो कहावत है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी नींद खुले तब तक सुधारने के लिए कुछ बचे ही ना। आज ही एक छोटा सा हम संकल्प ले सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय बाय कहेंगे, बाल्टी से नहाएंगे, शावर को थोड़ा सा छोड़ दीजिए और जितना हो सके हरियाली बढ़ाएंगे। कल फिर मिलूंगी ठीक शाम 6 बजे इसी फ्रिक्वेंसी पर, इसी अंदाज में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और नीले आसमान को नीला रहने दीजिए। शुभ रात्रि जोधपुर, शब्बा खैर।

अभी आपने सुना कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला।

0: सुखविंदर सिंह को सुना। समीर के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी ए आर रहमान ने। लीजिए प्रस्तुत है भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अगम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये बॉबी फिल्म में लता मंगेशकर और शैलेंद्र को बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

फौजी भाइयों को अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर फिल्म का गीत। आवाज दी है रूप कुमार राठौर ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने, बोल जावेद अख्तर के।

धुरंधर द रिवेंज। अब सुनिए इस फिल्म का गीत, आवाज और संगीत खास साहब और शाश्वत सचदेव की, बोल नुसरत फतेह अली खां के।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने विक्की चंदेल का लिखा और संगीत बद्ध किया गीत सुना, आवाजें कनिका कपूर और विक्की चंदेल की थी। इसी के साथ ही पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: श्रोताओं, आज हवा महल में आपको सुनवाते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी, विश्व प्रेमी सम्मेलन। निर्देशक दीना नाथ।
1: अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अरे अरे अरे अरे हैं? अरे सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ तो एक शानदार पंडाल भी खड़ा हो गया। तो क्या यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है? लेकिन लहरों के मेले में सम्मेलन जैसी गंभीर चीज का क्या काम? लेकिन ठहरिए, पंडाल के बाहर लगे इस बोर्ड को जरा पढ़कर तो देख लूं। मोटे मोटे अक्षरों में हमारे मित्र मदन मोहन खन्ना लिख रहे हैं, विश्व प्रेमी सम्मेलन।
2: विश्व प्रेमियों के सम्मेलन में

0: मैं आप सब डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, ये पहला अवसर है कि संसार भर के प्रसिद्ध प्रेमी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। हर प्रेमी को इजाजत है कि वो दिल खोलकर अपनी दास्तान गम सुनाए, ताकि संसार सुने और देखे कि उसने दो दिलों को ना मिलाकर क्या जुल्म किया है। प्रेमियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, वो बड़े भावुक होते हैं, इसलिए जो प्रेमी दूसरे प्रेमियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर या अपनी प्रेमिका को याद करके रोना चाहे, वो कृपा करके पंडाल से बाहर चले जाएं, क्योंकि प्रेमियों के आंसू कोई मामूली आंसू नहीं होते, एक एक किलो का आंसू होता है जनाब। रोने पे आए तो नदियां बहा दें, पंडाल में कहीं बाढ़ ना आ जाए इसलिए पंडाल के बाहर आंसू खाने यानी वीपिंग बूथ लगाए गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर प्रेमी स्वयं स्टेज पर आकर अपना परिचय दे। आप आइए आइए, पधारिए पधारिए पधारिए।
1: जी मैं फरहाद हूँ।
2: फरहाद
0: प्रेमियों, भाइयों, आपके सामने विश्व के प्रसिद्ध प्रेमी फरहाद खड़े हैं।
3: खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ।
4: आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ भी न मिला, पहाड़ खोद कर उसमें मैंने नहर बनाई।
5: अकेले?
4: जी हाँ बिल्कुल अकेले। और साहब अंदाजा लगाइए, मेरे पास तेशे यानी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था।
5: है? क्या पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट या बुलडोजर अवेलेबल नहीं थे?
4: अजी साहब छोड़िए, कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं था।
5: ओहो हो, इतना बड़ा डैम बनाने के लिए कोई एड भी नहीं मिला आपको?
4: एड? आप सहायता की बात करते हैं। खैर साहब, 20 साल की मेहनत के बाद नहर तो बन गई, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
5: वो क्या मिस्टर?
4: मुझे हुक्म हुआ कि मैं नहर में पानी की जगह दूध डालूं।
5: वो किस लिए मिस्टर?
4: ताकि शर्त के मुताबिक वो मेरी बनाई हुई नहर में नहा सके।
5: ओ आई सी, दूध में नहाए।
3: हाँ, ताकि दूधो नहाए और पूतो फले।
5: मिस्टर फरहाद, शीरी के डैडी ने आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा?
4: मैं क्या बताऊं साहब, मैं शीरी का प्रेमी हूँ, शीरी का डैडी नहीं।
5: आई एम सॉरी। अच्छा साहब, फिर क्या हुआ?
4: अब और कुछ नहीं कहा जाता, कलेजा मुंह को आता है, बेसाख्ता मेरी जबान से शेर निकला ही चाहता है। मर जाएंगे पर हम कभी शिकवा न करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुसवा न करेंगे, हम हश्र में इस खून का चर्चा न करेंगे।
0: आप कहाँ चले आ रहे हैं? आप नहीं जानते ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है?
6: जी मैं भी एक प्रेमी हूँ।
0: आप और प्रेमी?
6: वैसे और प्रेमियाँ तो कोई खास मोर लगी होती है, मैं महिवाल हूँ।
0: महिवाल?
5: ऐसी सोनी के अलावा?
6: जी
0: सोनी के दीवाने महिवाल।
3: भाई इन्हें मंच पर आने दिया जाए।
7: भैया भारतवर्ष से डेलीगेट
5: आने।
6: प्रेमियों, मैं भी आपकी तरह सताया हुआ एक प्रेमी हूं, मैंने भी सोनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरी सोनी नु कबाब खान का बहुत शौक थी, पर एक दिन जब मुझे उसको मिलना था, मैं कोई मछली ना पकड़ सका, बस चला मैंने अपनी जांग काट कर कबाब बनाया और अपने हाथों से सोनी की नजर की।
5: लेकिन मिस्टर महिवाल, जब सोनी आपकी दीवानी थी तो फिर आपको समाज के खिलाफ क्या शिकायत?
6: आप सुनिए तो सही, सोनी की ननद को हमारा मिलना ग्वारा ना था। उसने हमारे खिलाफ एक बड़ी खतरनाक चाल चल ली। सोनी के दरिया पार करने वाले पक्के कड़े की जगह और उस कमबख्त ने कच्चा कड़ा रख देता।
5: मिस्टर महिवाल, क्या मिस सोनी को तैरना नहीं आता था?
6: जी नहीं।
5: वॉट ए पिटी, तो उसके पास स्विमिंग बेल्ट भी नहीं था,
6: बोट
5: का इंतजाम कर लिया होता मैन। फिर क्या हुआ?
6: फिर वही होया जो हम जैसे प्रेमियों के साथ होंदा आया है, वो डूब गई। मैंने दूसरे किनारे से छलांग भी लगाई पर उस ताई पहुंच ना सकिया और हम दोनों कट्ठे इस जालिम समाज के पंजों से आजाद हो गए।

सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम है अनुरोध।

0: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जागने,
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे मेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में,
2: याद रहे ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।
4: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
5: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
4: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
5: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
4: अब दोनों एक ही ऐप पर। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मदन मोहन के ही संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए, चिराग फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके लिए। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: चंद्रमा।
1: भारतीय सिनेमा आज जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण गढ़ रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था अभिनेता महिपाल।

भारत में हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। महिपाल पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नामचीन अभिनेता थे।

सन 1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सोहराब मोदी और वी शांताराम जैसे उस दौर के दिग्गज फिल्मकारों के साथ काम किया था।

0: फिल्म नवरंग में अभिनेता महिपाल की भूमिका अभिनय कला के विविध रंगों में रंगी नजर आती है।
1: अटक अटक झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली बुरी बुरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली पनी हरी भोली

नवरंग महिपाल की एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, माला सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म पारस मणि भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अभिनेता महिपाल के अभिनय से सजी यूं तो अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, माया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहां तक धरती है वहां तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती हैं यादें, हर्फ हर्फ झड़ते हैं ख्वाबों के नूर, मीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

तेज रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। घिराई घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

आज मन की नोटबुक में लिखे हैं कुछ गुलाबी शब्द, कुछ सुर, सप्तक, आरो औरो और गुनगुनाया है प्रेम गीत। लिखा है खामोश अफसाना, पर शोर के इस दौर में कौन सुनता है खामोशी की सदा।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। न रहा अब अपने पास वो दिल का खजाना जिससे रोशन होते थे अपने ख्वाब, जब पूरी कायनात अपनी सी लगती थी, जब हर सुबह हरे रंग के कोपल खिलते थे, खिले हुए गुलाब को देखकर मुस्कुराकर बतकही चढ़ती थी। सब कुछ तो है पर नहीं है बहुत कुछ जिसकी है चाहत।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत इबादत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में वो नफरत के चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित TVK सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TVK सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान TVK सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा।

0: गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK legislature party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as